सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 और 51 सेकेंड हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी विचार।
1: आजादी की लड़ाई में बुनकरों का अहम योगदान रहा है। जब अंग्रेजों ने आर्थिक गुलामी की शुरुआत की थी, उस वक्त भारत की आबादी 30 करोड़ की थी। स्थानीय बुनकरों की मेहनत से अपने देश के लोगों का तन अच्छे से ढक रहा था। अंग्रेजों ने सबसे पहले हस्तकरघा शैली पर कुठाराघात किया। इंग्लैंड से कपड़ा तैयार कर उसे भारतीयों पर थोपा जाने लगा। तब महात्मा गांधी ने बुनकरों को आगे किया। उनके सूत के धागों से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया। बुनकरों की तैयार खादी राष्ट्रीय पोशाक बन गई। वे बुनकरों के योगदान को पूरी तरह

0: ही भूले थे। 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के दौरान सबसे ज्यादा मार भारतीय बुनकरों और शिल्पकारों पर ही पड़ी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हथकरघा को उद्योग बनाकर युवाओं को स्वावलंबी बनाने का सपना देखा था। हथकरघा क्षेत्र देश की शानदार संस्कृति विरासत का प्रतीक है और देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गांधी जी का मानना था कि हथकरघा क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 70% हथकरघा बुनकर और संबद्ध श्रमिक महिलाएं हैं। बापू का कहना था कि चरखा संघ कपास से शुरू करके धुनाई, कताई, कपड़ा बुनाई वगैरह सारी क्रियाएं सिखाता है। हस्तकरघा का काम सभी लोग करें तो करोड़ों को धंधा मिल जाता है और देहातों में मुफ्त कपड़ा बन जाता है। यहाँ मुफ्त का अर्थ है अपनी मेहनत से। अगर अपनी कपास भी पैदा कर ली जाए तो करीब करीब कुछ खर्च ही नहीं पड़ता, जिससे दो फायदे होते हैं, कपड़े के पैसे बचते हैं और उद्यम होता है। यह उद्यम भी कलामय उद्यम होता है। बापू ने कहा था, अगर मिल भी ना रहे तो हम अपनी जरूरत का कपड़ा तैयार कर सकते हैं। चरखे को अहिंसा का प्रतीक कहा है। देहात में हथकरघा उद्योग हो जाते और चरखे द्वारा समृद्ध एवं खुशहाल बनते। बापू का समग्र चिंतन एवं दर्शन का केंद्र गांव ही रहा है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बापू ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया था। गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने खादी तथा हस्तकरघा से बने वस्त्र को अपनाने का बढ़ावा दिया था और विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के बजाय लोग अपनी जरूरत के लिए खुद कपड़े तैयार करें। ऐसा करने से गांव के लोग आजीविका के लिए खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे। खुद को एक प्रतीक और दूसरों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण के रूप में गढ़कर गांधी जी ने एक समरूपता और पारदर्शिता बनाई, जिसके साथ अन्य लोग उन्हें एक उदाहरण के रूप में देखते थे। हथकरघा से बनने वाले वस्त्र रेशम को भी मात देते हैं। अनेक महिलाएं, खासकर जनजाति बहनें, हथकरघा के माध्यम से रोजगार बना रही हैं। हस्तकरघा ने आर्थिक स्वावलंबन का नया मार्ग दिखाया है। उसने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई दिशा तैयार कर दी है। आज चरखे से निकली खादी स्वदेशी होने का स्वाभिमान जगा रही है। कभी बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं में आत्मनिर्भर का गुमान दिखाई देने लगा है। हस्तकरघा केंद्र में युवाओं के हाथ में काम है। आज बापू का सपना सच होता प्रतीत हो रहा है। जब गाँव में ही काम मिलने से युवाओं को सही दिशा मिल रही है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी विचार। अब कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए पशुओं में एंथ्रेक्स विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता।
2: किसान भाइयों नमस्कार। पशुओं में कभी कभी एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। इस रोग को जहरी बुखार, पीलिया का बुखार, बिसहरी आदि नामों से भी जाना जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में यह बैक्टीरिया से होने वाला छूतदार रोग है। प्रायः यह रोग गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़ तथा बकरियों को हुआ करता है। हमारे देश में भेड़ों में यह बहुत ही ज्यादा और उग्र हुआ करता है। एंथ्रेक्स रोग में पशु कांप कर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरता है। उसे तेज श्वास प्रश्वास आती है। मुंह, नाक और मलाशय से रक्त मिला हुआ झागदार स्राव गिरता है और कुछ ही क्षणों में पशु मर जाता है। कभी कभी बिना लक्षण प्रकट किए ही पशु एकाएक मरने लगते हैं। शाम को स्वस्थ रूप से बंधे हुए पशु सवेरे बाड़ों में मरे हुए मिलते हैं। ये लक्षण अति तीव्र अवस्था में होते हैं। तीव्र अवस्था में पशु अत्यंत बेचैनी का अनुभव करता है। पैर लड़खड़ाते हैं। 106 डिग्री फॉरेनहाइट तक बुखार हो जाता है। वेग युक्त श्वास प्रश्वास, तीव्र नाड़ी चलकर चलना, पशु का चक्कर काटना प्रमुख लक्षण है। इस रोग में पेट गुम्ब हो जाता है। शरीर को थोड़े थोड़े भागों में पसीना आता है। खोंचा मारने वाला तेज दर्द होता है। कूंख, गले और सीने पर कभी कभी तेज सूजन होती है। बाद में खून मिले हुए दस्त होकर पशु 24 से 48 घंटों में मर जाता है। पशु के शरीर के

0: लिए प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार जैसा चमकदार झाग युक्त स्राव निकलना और उसका न जमना इस अवस्था के प्रधान लक्षण हैं। इसमें मृत्यु एकाएक नहीं होती है। कुछ पशुओं के मुंह तथा जीभ में छाले भी पड़ते देखे गए हैं और उनके मुंह से रक्त युक्त लार बहती है। पशु का प्लीहा कई गुना बढ़ जाता है, जिस कारण इसे प्लीहा का बुखार भी कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग के लक्षण प्रकट होने पर इसका कोई भी विशेष इलाज नहीं है। यदि प्रारंभ काल में ही रोग का पता लग जाए तो 100 से 150 घंटे सेंटीमीटर एंटी एंथ्रेक्स सीरम का अंतः सीरा का इंजेक्शन देना चाहिए। आजकल इस बीमारी के इलाज में ओस्नामाइसिन, इम्यूनोमाइसिन, एम्पिसिलिन, टेरामाइसिन तथा होस्टासाइक्लिन नामक इंजेक्शन काफी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। एंथ्रेक्स रोग हो जाने पर पशु को स्वस्थ पशुओं के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। इस रोग के प्रति प्रतिरोधक टीका भी उपलब्ध है, इसे लगाना चाहिए। मरे हुए पशुओं को जलाने या गड्ढे में गाड़ने के लिए ले जाने से पूर्व उनके शरीर के सभी प्राकृतिक छिद्र आप मर्क्यूर पर क्लोराइड के घोल या फिनाइल से भिंगोई हुई रुई को निचोड़ करके उसे बंद कर दें, ताकि उसका कोई भी स्राव धरती पर नहीं गिरे और अन्य पशुओं को यह रोग नहीं हो। एंथ्रेक्स रोग बहुत ही भयानक रोग है पशुओं में। यदि बिना लक्षण प्रकट किए पशु मर जाते हैं, शाम को पशु को आप बांधते हैं और सुबह पशु मरे हुए पाए जाते हैं, तो आप समझ लें कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग हुआ है। यह रोग पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है, इसलिए इस रोग से ग्रसित पशु से मनुष्य को छूत नहीं लगे, इसका उपाय करना चाहिए। जो ही इस रोग से कोई पशु मरे, उसे गांव से दूर ले जाकर के उसके छिद्र जो है प्राकृतिक छिद्र, उन्हें आप बंद करके उसको जमीन के अंदर गाड़ दें। ध्यान रखें कि उसे बाहर नहीं फेंके, अन्यथा एंथ्रेक्स रोग आपके या आपके गांव के अन्य पशुओं में भी हो सकता है। तो बचाव बहुत जरूरी है, और जो भी व्यक्ति पशुशाला में काम कर रहे हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि रोगग्रस्त पशु के पास जाने से पहले सफाई कर लें और आने के बाद पूरा साफ सुथरा हो लें, तभी इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। और
1: पशुओं में एंथ्रेक्स रोग, इस विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। इसमें स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
3: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देश

0: देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

गुरु नानक देव जी कहते हैं, संसार में प्रेम स्वार्थपूर्ण है। अपने सुख के लिए हर कोई जुड़ा रहता है और अंत में केवल ईश्वर ही सच्चा साथी है।

हम सुख में मगन रहते हैं, लेकिन जब वे पत्तियों से घिर जाते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं और बार बार यही कहते हैं, नाथ मोहे अब की बेर उबारो।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। श्रोता अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस से पाठ, मुख्य सर ए हरि हरण का है।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर ए हरे हरण का था। अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर कौशल कुमार से भेंट वार्ता। विषय है दांत निकालने के समय होने वाली परेशानियां और समाधान। भेंट करते हैं चंद्रमणि भारती।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित मेहमान हैं डॉक्टर कौशल कुमार। आप पटना के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ हैं। आज का हमारा विषय है दांत निकालने के वक्त होने वाली परेशानियाँ और ध्यान देने योग्य बातें। तो डॉक्टर साहब, ये विषय ही बहुत कुछ बता देता है, तो आप कृपया

0: हमारी श्रोताओं के लिए इन परेशानियों के बारे में बताएं और उसका समाधान कैसे
1: जी
0: हो।
1: बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ कि इस विषय में क्या करना है। देखिए, दांत नॉर्मली, पहला सवाल तो ये कि दांत निकालना है, तो दांत क्यों निकालना है? कोशिश ये करें कि ना निकालें, ज़रूरत ना पड़े। तो दांतों की सफाई, इस विषय को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आपने दांत निकाल लिया है, किसी वजह से आप दांत निकाल चुके हैं, और अब उसके बाद की जो प्रक्रिया देख रेख की है, उसके विषय में ये है कि सबसे पहला चीज़ कि उसके मसूड़े से जो ब्लड, जहाँ से दांत निकाला गया है, वहाँ पर खून आ रहा होता है, तो उसे हम क्या करते हैं कि गौज यानी कॉटन पैक दे करके 1 से 1.5 घंटे तक दबाकर रखने की सलाह देते हैं। और 1-1.5 घंटे के बाद जब रुई को फेंक देना होता है, तो हम पेशेंट को, मरीज को ये ज़रूर कहते हैं कि आप आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करें। वो इसलिए कि टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि आपके जो खून आने की प्रक्रिया, वहाँ थक्का बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जिससे कि खून आना बंद हो जाएगा। और अगले 24 घंटे तक हमारी कोशिश रहती है कि मरीज़ ठंडा और नरम खाने का सेवन दूसरी तरफ से करें, जिधर से दांत न निकाला गया हो। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ दी गई रहती हैं, जिसमें कि कुछ पेन किलर्स होते हैं दर्द के लिए, क्योंकि निकालने के बाद वो एक तरह का ट्रॉमा होता है, एक तरह की इंजुरी होती है, तो पेन होने की पूरी संभावना रहती है। तो उस कंडीशंस में पेन किलर्स ज़रूर खाना होता है, साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स चलती हैं, और 24 घंटे तक ठंडा और नरम खाना होता है। 24 घंटे के बाद हम पेशेंट को ज़रूर कहते हैं कि फास्टर हीलिंग के लिए और पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाने के लिए उस ओरल कैविटी में सुषुम पानी में नमक देकर के दिन भर में 3 से 4 दफे गुलगुला करना होता है। तो ये बेसिक है
0: जी
1: जो आफ्टर एक्सट्रैक्शन आपको केयर करना है। अगर आप इतना केयर करते हैं, तो नॉर्मली आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। और मैं अभी आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि जब आपने एक बार दांत एक्सट्रैक्ट करवा लिया है, और अगर आपको लगता है कि वो जगह खाली हो गई है, तो खाली छोड़ना नहीं है, वहां फिर से वापस री कुछ ना कुछ प्रोस्थेसिस करा लेनी है। प्रोस्थेसिस मतलब दांत लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो या तो जो भी सस्ता से महंगा हर तरह का दांत अवेलेबल है, ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपका वो आर्च डिस्टर्ब हो जाता है, और एक बार आर्च डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके अगल बगल के दांत फिर से ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, और पता चला कि आप काफ़ी अच्छे वाले डेंटल पेशेंट हो गए हैं।
0: जी यहाँ पर एक प्रश्न यह मैं पूछना चाहूँगा
1: सर
0: कि जो बच्चे होते हैं विशेषकर,
1: जी
0: तो उनके खेल कूद के दौरान
1: जी
0: कई मरतबा ऐसा देखा जाता है कि दांत टूट जाता है,
1: जी
0: तो उस समय क्या सावधानियों को बरता जाए?
1: जी जी अमूमन सामने के दांतों में, मैंने भी कई पेशेंट्स में देखा है, अक्सर हाँ मैं देखता रहता हूँ कि सामने के दांत में बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं या किसी बैट से चोट लग गई, तो उस तरह के चोट में अगर सामने का दांत टूटता है, तो देखिए दो तरह के दांत होते हैं, एक तो दूध वाला दांत होता है, एक परमानेंट दांत होता है। तो अगर 9 साल की उम्र के बाद, नॉर्मली 9 साल की उम्र के बाद लगभग परमानेंट आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे तो 6 साल में शुरू हो जाते हैं। तो अगर परमानेंट टूथ है, तो जैसे परमानेंट टूथ टूटता है, तो कोशिश करें तुरंत नज़दीकी किसी दंत चिकित्सक से संपर्क करें। अभी हमारी मॉडर्न डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस ज़रूर है कि उस टूटे हुए टुकड़े को भी जोड़ा जा सकता है।
0: जी, ये
1: जी
0: बहुत अच्छी बात आपने
1: जी
0: बताई।
1: और अगर डेसिड्यूस यानी दूध वाला दांत टूटता है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दांत चूंकि दूध का है, और वापस 2-3 साल के अंदर में टूट करके वो नया फ्रेश निकलना होता है, तो उस दांत के लिए ध्यान रखना तो ऑब्वियस है, नहायत ज़रूरी है, चूंकि एस्थेटिक हर उम्र में कंसर्न होता है, और साथ में उसे कोई तकलीफ खाने के दौरान ना हो। तो इस दोनों विषयों को ध्यान में रखकर किसी भी दंत चिकित्सक से मिलें, उसकी सुविधा उपलब्ध है, बहुत आराम से वो इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं।
0: अच्छा, अब बुजुर्गों में भी कई बार होता है कि दांत टूट जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: ज़्यादातर दांत
1: जी
0: टूट
1: जी
0: जाते हैं तो उन्हें दांत लगवाना होता है,
1: बिल्कुल
0: और कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिना दांत लगाए ही,
1: जी
0: जो कृत्रिम दांत होते हैं,
1: जी
0: बिना
1: जी
0: उनके उपयोग के ही वो खाना
1: जी
0: खाना
1: जी
0: स्टार्ट कर देते हैं,
1: जी जी
0: तो उससे मसूड़ों पर भी मेरे विचार से दुष्प्रभाव तो ज़रूर पड़ता
1: बिल्कुल
0: होगा,
1: बिल्कुल
0: तो उससे क्या मतलब कि बचा जाए,
1: मैं
0: कैसे
1: बता रहा
0: किया
1: हूँ,
0: जाए?
1: उम्र बढ़ने के साथ में शरीर थकता है, बड़ा मुख्य विषय है। पेट भी कमज़ोर होता है, जो कि हमारे पूरे शरीर का मुख्य मशीन है, और उस वक्त हमें खाना को चबा कर खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसी दौरान में अगर हमारा दांत सहयोग छोड़ देता है, तो हमारे पेट पर ठीक उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। पेट को जहाँ आराम चाहिए होता है, उल्टा वो डबल काम शुरू कर देता है। तो दांत का होना एक ख़ास उम्र के बाद निहायत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ ये कि दांत ज़रूर लगवाएं। दूसरी चीज़, अगर दांत टूट जाता है किसी वजह से, तो कोशिश करें कि आप नज़दीकी दंत चिकित्सक से मिलें। निकालने लगाने वाला दांत यानी कि रिमूवेबल प्रोस्थेसिस भी होती है, फिक्स दांतों की भी प्रक्रिया होती है, जिसमें आपकी सक्षमता हो उस दांत को आप लगवा ज़रूर लें, ताकि खाने में सहूलियत रहे, चबाने में सहूलियत रहे, और उससे आपके

0: आपकी उम्र पे बहुत ज्यादा और आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है।
1: जी डॉक्टर कौशल कुमार, आप हमारे स्टूडियो आए और दांतों के निकालने के वक्त होने वाली परेशानियाँ और उससे संबंधित बातों को आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू।
2: दांत निकालते समय होने वाली परेशानियां और समाधान, इस विषय पर डॉक्टर कौशल कुमार से भेंट वार्ता भी आप सुन रहे थे। भेंट करता थे चंद्रमणि भारती। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुखदेव थापर के बारे में। साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे और 7:15 पर नसीम रूही और साथियों की आवाज़ों में बज़्म में कव्वाली सुनेंगे।

प्रातः 7:25 का समय कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का है। इसके अंतर्गत आज सुनेंगे पंडित रामचतुर मलिक का गायन और प्रातः 10:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत पेश होगा बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज में कुछ भजन। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं 12:00। इसके अंतर्गत आज संस्कार गीत की तीसरी कड़ी सुनेंगे और 12:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण होगा। विषय है बच्चों में कटे होंठ नाक और दांत की समस्या और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अभिनीत कुमार लाल।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। रात 9:30 पर शब्द शिल्प, 10 बजे थीम पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज की रात, और कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद लेंगे रात 10:30 से। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नार्वे इटलीति देशानां षड्दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हित

0: क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदानप्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जासुरक्षाविषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं सततविकासं प्रवर्धयितुं आर्थिकशक्तिं प्रवर्धयितुं अधिकसमावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डलप्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विकदक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्णमञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तम् असंस्कृततैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिलेन्धनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभाविपदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम् प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीन सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रिय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं गृहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत 36 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुर मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतम् आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।

0: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी

गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हालचाल के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और सुखदेव की जयंती पर विशेष रूप से। सबसे पहले जानिए इतिहास में आज के दिन का महत्व की बात करें तो 15 मई का भारतीय और विश्व इतिहास में विशेष महत्व है, जिसमें मुख्य रूप से 1993 से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की शुरुआत के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका उद्देश्य है हम परिवार के महत्व को समझें और इसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें, क्योंकि परिवार हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, परिवार ही वो आधार है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। इसके अलावा 15 मई की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। 1756 में इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिससे 7 वर्ष युद्ध की शुरुआत हुई। 1930 में एलेन चर्च पहली एयरलाइन एयर होस्टेस बनी, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान में अपनी सेवा दी। 1949 में रामपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, रियासत का आधिकारिक रूप से भारत संघ में विलय हुआ। 1952 में लोकसभा में नंदलाल शर्मा द्वारा पहला हिंदी भाषण दिया गया। अब 15 मई को जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें तो 1907 में शहीद सुखदेव, जो भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ। 1817 में देवेंद्रनाथ टैगोर समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के नेता थे। वे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता और 19वीं सदी के बंगाल पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। और 1967 में माधुरी दीक्षित, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। वही निधन की बात करें तो 1970 में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थल सेनाध्यक्ष कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा का निधन आज ही के दिन हुआ। कार्यक्रम में आगे और भी बातें होगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

अब बात भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक सुखदेव की। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। अपने बचपन से ही उन्होंने भारत में ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों को देखा और इसी के चलते वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्रांतिकारी बन गए। बचपन से ही सुखदेव के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवाओं में देशभक्ति की भावना भरते और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने के लिए प्रेरित करते थे। एक कुशल नेता के रूप में वो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बताया करते थे। सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर लाहौर में नौजवान भारत सभा शुरू की। ये एक ऐसा संगठन था जो युवकों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। सुखदेव ने युवाओं में न सिर्फ देशभक्ति का जज्बा भरने का काम किया बल्कि खुद भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1928 की उस घटना के लिए सुखदेव का नाम प्रमुखता से जाना जाता है जब क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के पुलिस उपाधीक्षक जेपी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और पूरे देश में क्रांतिकारियों की जय जयकार हुई थी। सैंडर्स की हत्या के मामले में लाहौर षड्यंत्र के रूप में जाना गया। ब्रिटिश हुकूमत को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से दहला देने वाले राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और देश के युवाओं के मन में आज़ादी पाने की नई ललक पैदा कर गए। सुखदेव मात्र

24 साल की उम्र में जब इस दुनिया को अलविदा कह गए, तब युवाओं में उनके जोश दिख रहे थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सुखदेव थापर एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपनी देशभक्ति, साहस और मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि शहीद आजम भगत सिंह के करीबी मित्र के रूप में भी उनका नाम इतिहास में दर्ज है।

नया दौर इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। बोल थे साहिर लुधियानवी के और संगीत ओपी नैयर का। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही कार्यक्रम हाल चाल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता अब आइए सुनते हैं नसीम रूही और साथियों की आवाज़ों में बज़्मे कव्वाली। सबसे पहले सुनिए।

अब लीजिए सुनिए। जिंदगी से तो वफा कभी करते भी नहीं, शायर है असहर भागलपुरी।

नसीम रूही और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे बज़्म ए कव्वाली। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए पंडित रामचतुर मल्लिक का शास्त्रीय गायन राग देसी।

0: पंडित रामचतुर मलिक का गायन अभी आप सुन रहे थे, राग देसी। इनके साथ संगीत कलाकार थे पखावज पर राम अवतार ठाकुर और सारंगी किशोरी प्रसाद मिश्रा। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद।

0: खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
6: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294।
7: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। इसमें स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
9: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि

0: से विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार

0: इस समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध

0: इस मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए UDF मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: VD सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। UDF सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर UDF के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और UDF के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट PM डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सारना में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: भारत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है

0: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य, जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए, सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's 4th largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE sovereign sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेर सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सैंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इकतसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकत दारी की पेशरफ के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% जरूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू जहबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों ममालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तजदीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इम्कान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तिजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकत दारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूजहबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साल मुआहदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहदे से भारत को कीमतों में ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा।

0: से स्पॉट मार्केट पर उसका इन्हिसार कम हो जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात के सॉवरन वेल्थ फंड्स भारत के शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे में फाल तौर पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि भारत का शांति एक्ट जौहरी तवानाई के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए इम्कान पैदा करता है, जिनमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं। इस तरह इन शोबों में भी इश्तराक के नए मौके पैदा हो रहे हैं। तरफेन तवानाई से मुतालिक लेन देन को रुपये और दिरहम में भी फरोग दे रहे हैं, जिससे बाहमी तजारत का इन्हिसार डॉलर पर कम से कम हो सके। तेल से LNG तक और माहौल के लिए साजगार तवानाई से जौहरी तवानाई तक भारत UAE शराकतदारी बाहमी इश्तराक के नए मौके पैदा कर रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इकतसादी इस्तेकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वजराए खारजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए, जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान तावुन को फरोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वजराए खारजा की मीटिंग के दौरान हुई, जो कि नई दिल्ली में जारी है। इससे पहले ब्रिक्स वजराए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही खिताब में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अमनो सलामती आलमी इस्तेकाम के लिए मरकजी हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात भी बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत को ही उजागर करते हैं। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106.68 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की 93.14 रुपये फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108.74 रुपये, जबकि फी लीटर डीजल 95.13 रुपये हो गया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर 100 किलोग्राम की हद मुकर्रर की है, जो जेवरात के बरामद कुनिंदकान को सिफर ड्यूटी पर खाम या इनपुट मटेरियल दरामद करने की इजाजत देती है। एक अवामी नोटिस में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने कहा है कि सोने की दरामद के लिए पेशगी इजाजत नामा जारी किया जाएगा, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम पर छूट मिल सकेगी। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
2: DGFT ने पहली दफा दरख्वास्त देने वालों के लिए उनकी ऑपरेशनल हैसियत और सलाहियत की तस्दीक के लिए मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का फिजिकल मुआयना लाजमी करार दिया है। इसमें मजीद कहा गया है कि सोने की दरामद के लिए किसी भी तरह का पेशगी तस्दीक नामा उसी वक्त जारी किया जाएगा जब बरामदात का 50% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया हो। DGFT ने कहा है कि डायरेक्टरेट का मुतल्लिका अफसर DGFT को एक माहाना रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें पेशगी तस्दीक नामा जारी करने से मुतल्लिक तमाम मालूमात होंगी। इससे पहले इस स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर कोई हद मुकर्रर नहीं थी। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: यूरोपीय यूनियन के बाजारों में एक्वाकल्चर से मुतालिक मसनूआत की मुसलसल बरामद के लिए नजरसानी शुदा मुसव्वदे की फहरिस्त में भारत को शामिल किया गया है। सनत व तिजारत की वजारत ने कहा है कि इससे पहले के कवानीन में जवाबित में भारत को उन 3 ममालिक में शामिल नहीं किया गया था, जो सितंबर 2026 से जानवरों से बनाई जाने वाली मसनूआत, जिन्हें इंसान इस्तेमाल करते हैं, यूरोपीय यूनियन को बरामद करने के मजाज थे। इन जवाबित के तहत बरामद कुनिंदा ममालिक पर लाजिमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यूरोपीय यूनियन को भेजी जाने वाली अफजाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मखसूस अदविया एंटी माइक्रोबियल से पाक हों। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जबरन पैसे वसूल करने का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कल से कोलकाता में CGO कॉम्प्लेक्स में शांतनु से उस वक्त से पूछताछ कर रही है जब वो एजेंसी के एहलकारों के सामने पेश हुए थे। उन्हें 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया।

0: और आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज को दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और ये भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा पांचवें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयारा प्रोग्राम के फरोग तैयारी और आजमाइशी परवाज के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज पर 15,803 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इम्कान है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 7,500 बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहायशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मुअस्सर इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया गया। आला तालीम के सेक्रेटरी, स्कूल तालीम के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और CBSE के चेयरपर्सन समेत कई आला हुक्काम मजकूरा मीटिंग में शामिल हुए। केरलम में पीर के रोज नई UDF हुकूमत हलफ लेगी। इस दौरान नई हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान पर भी तबादला ख्याल जारी है। पीर के रोज VD सतीशन केरलम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। UDF के जराए ने खबर दी है कि वजीर आला के साथ पूरी काबीना हलफ लेगी। सालाना 3 रोजा तारीखी मोंगरी मेला, जिसे शिव पार्वती मेला भी कहा जाता है, उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आज से शुरू हो रहा है। इस तारीखी मेले के तई अकीदतमंदों के जोशो खरोश को देखते हुए उधमपुर जिला इंतजामिया ने मोंगरी के सर डाबर में मुनासिब इंतजाम किए हैं। मोंगरी मेला उधमपुर जिले का मशहूर मेला है, जिसे पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ हर साल ज्येष्ठ माह के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक, जो उमूमन मई और जून के दरमियान होता है, सर डाबर में मनाया जाता है, जो कि उधमपुर से 51 किलोमीटर दूर है और इसमें हजारों अफराद शिरकत करते हैं। भारत के महकमाए मौसमियात ने अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, माहे और जनूबी कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में 11वें सैंडा आलमी कप में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गागो को सीधे सेटों में शिकस्त दी। 12 मई को शुरू हुए इस मुकाबले में भारत का सोने का ये पहला तमगा है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
2: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारिजा इजलास को सफ़ेद गुल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स ममालिक इस्तेहकाम और आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के लिए कदम उठाएं, एस जयशंकर। मुल्क में SIR के तीसरे मरहले के ऐलान को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि इंतखाबी कमीशन ने 16 रियासतों और 3 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में खसूसी जामे नज़रसानी कराने का फैसला किया। अखबारात ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग शोबे में खुद इन्हसारी पर जोर

0: देने के वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारों ने मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के मुअस्सर इकदामात को भी नुमाया जगह दी है। अखबारात में शाया होने वाली बैनुल अक्वामी खबरें कुछ इस तरह हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा, शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका और चीन के तल्लुकात आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम हैं।
1: और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत की जेर सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के निर्देश दिए। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु

0: से अगले 15 दिनों में हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारतीय क्रिकेट की एक टीम में शामिल। और मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। श्री चौधरी ने इसके लिए अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और एम्स की समीक्षात्मक बैठक के दौरान श्री चौधरी ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अत्यंत जरूरी होने पर ही मरीजों को बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दरभंगा एम्स और DMCH विस्तार का काम तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित करते हुए कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा है कि विक्रमशिला सेतु से अगले 15 दिनों में हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शैलेंद्र ने बताया कि इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की टीम देश के पहले बेली ब्रिज बनाने का काम करेगी।
1: अगले 15 दिन के अंदर में उसको लाइट व्हीकल को हम लोग शुरू करेंगे और वो वैली ब्रिज है जो देश का पहला वैली ब्रिज है बनने जा रहा है और उस पर जो स्ट्रक्चर फिर बाद में बनेगा वो ट्रस के माध्यम से उस पर कास्टिंग होगा जो कि 35 साल की गारंटी होगी। पूरे पारदर्शिता के साथ प्रामाणिकता के साथ वो कार्य हो रहा है।
0: पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुलों की निगरानी के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी। इसके लिए एक एक वरीय अभियंता को प्रमंडलवार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
1: 9 कमिश्नरी को बांटे और उसमें अलग अलग हर कमिश्नरी में एक इंजीनियर रहेगा और उसका पूरा रूपरेखा तैयार करेगा कि उसमें कितने सड़क हैं, कितने पुल हैं, कब बना है, कब शुरू हुआ, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसका लाइफ है, इस सारी जानकारी हमारे कार्यालय से होगी। विशेष तौर पर हमारी टीम महाराष्ट्र जाएगी, गुजरात जाएगी, तमिलनाडु जाएगी और वहाँ की जो तकनीक है उसको देखेगी। उसके बाद यदि यहाँ से बेहतर तकनीक होगा तो अब उसका जो तकनीक बेहतर होगा उसको यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे।
0: सूचना और प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है। पटना में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि AI आधारित तकनीकों के प्रयोग से शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, तकनीकी गुणवत्ता और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, CBSE के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश के सभी विद्यालयों की निगरानी बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग प्लस ऐप के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा विभाग ने 1 से 12 तक के विद्यालयों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 21 मई से प्रदेश के सभी विद्यालयों सतत और प्रभावी निरीक्षण BEST+ ऐप के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति 60% से कम पाई जाती है तो शिक्षकों

0: और प्रधानाध्यापकों को अभिभावकों से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों को स्मार्ट पीडीएस सिस्टम से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राशन कार्ड से जुड़ी पुरानी डिजिटल प्रणालियों और आवेदन सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू की जा रही है। सचिव ने बताया कि नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया के तहत राज्य में स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था से राशन कार्ड सेवाओं में एक बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 15 से 20 दिनों तक नए राशन के आवेदन की प्रक्रिया बंद रहेगी। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर ₹3.14 जबकि डीजल की कीमतों में ₹3.11 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी एक्स हैंडल @EIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश की सभी पंचायतों में 19 मई से नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर पंचायत सरकार भवन और उनके निकट किसी सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 दिन पहले से शुरू होगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 19 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इस अवधि में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है।
2: दिनांक 15 मई को राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन बटा वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को नाव पर अस्पताल चलाने के निर्देश दिए हैं। इन नाव अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारी, ANM और पारा मेडिकल कर्मी तैनात रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह चलंत अस्पताल बाढ़ और जल जमाव से घिरे क्षेत्रों में घूम घूम कर मरीजों का उपचार करेंगे। सरकार ने सभी जिला पदाधिकारियों को नाव और नाविक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों से दवाओं की उपलब्धता का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना, आपराधिक घटनाओं और यातायात नियमों की निगरानी के लिए पटना सहित 16 जिलों में 750 से अधिक नाइट कैमरे लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार पटना के अलावा गया, भागलपुर, जहानाबाद, बेगूसराय, किशनगंज, पूर्णिया, बांका, जमुई, अन्य जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य सड़कों और गली मोहल्लों के कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आज से असिस्टेंट लोको पायलट के 11,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन की तिथि 18 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले नामांकन की अंतिम तिथि 12 मई निर्धारित थी। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं की कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन 2 जून से शुरू होगा। यह परीक्षा 15 जुलाई को होगी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लोगों को

ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेशवासियों से गैर जरूरी विदेश यात्राओं को 1 वर्ष तक टालने का आग्रह किया है। साथ ही खाद्य तेल का उपयोग कम करने और प्राकृतिक खेती को अपनाने पर भी जोर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने राजगीर में लगने वाली मलमास मेले को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए राजगीर और हावड़ा के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बिहार शरीफ, अस्थावा, बरबीघा, शेखपुरा, किउल और भागलपुर के रास्ते चलेगी। हावड़ा राजगीर स्पेशल ट्रेन कल से 17 जून तक तथा राजगीर हावड़ा स्पेशल ट्रेन 17 मई से 18 जून तक प्रतिदिन संचालित होगी। इधर रेलवे ने पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जमुई स्टेशन पर देने का फैसला किया है। यह व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय क्रिकेट की ए टीम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वैभव को आगामी श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ होने वाली एक दिवसीय त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय ए टीम में जगह दी है। गौरतलब है कि आईपीएल क्रिकेट समेत अन्य प्रतियोगिताओं में वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया है। इधर आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार की हवाई संपर्कता 5 वर्ष में 10 गुना बढ़ेगी। अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा CISF को सौंपी। दैनिक जागरण लिखता है, पेट्रोल में 3.14 रुपए और डीजल में प्रति लीटर 3.11 रुपए की हुई वृद्धि। दैनिक भास्कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखता है, बिहार में खेती से लेकर फैक्ट्री तक हर क्षेत्र में AI का जोर दिखेगा। प्रभात खबर ने बिहार कोचिंग संस्थान विधेयक की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। आज अखबार का शीर्षक है, बिहार विधान परिषद उपचुनाव में राजद उम्मीदवार जीता। राष्ट्रीय सागर लिखता है, VD सतीशन केरल के होंगे नए मुख्यमंत्री, 18 को लेंगे शपथ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के निर्देश दिए। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से अगले 15 दिनों में हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारतीय क्रिकेट की ए टीम में शामिल। और मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इधर आइए, इधर
1: इधर।
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी।

0: दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
7: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
8: अनजान ऐप से बचें।
9: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
8: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
9: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: और दूसरों के साथ रहने के आदाब सीखता है। एक मजबूत ख़ानदान बच्चे को जज्बाती सहारा, अखलाकी रहनुमाई और माली तहफ़ुज़ फ्राहम करता है, लेकिन जब ख़ानदान के अंदर ही अदम मुसावात पैदा हो जाए तो सबसे ज़्यादा बुरा असर बच्चे के मुस्तकबिल पर पड़ता है। सामईन इससे मुतल्लिक और भी बातें करेंगे। आइए अब समाअत फरमाएँ बातें जिनसे ज़िंदगी संवरती है के तहत ख़वातीन और तालीम के मौजू पर यह मकाला पेश कर रहे हैं मोहम्मद यहिया फ़हीम।
1: तालीम दिलकश दास्तान और बेमिसाल कहानी है। ये लामहदूद मौजू है, एक जामे मज़मून है जो हर शय के हर पहलू का अहाता किए हुए है। तालीम एक लाजवाल दौलत है जो तकसीम करने से घटने या कम होने की बजाय बढ़ती है। ये वो रोशनी है जो जहालत की तारीकी को मिटाती है। ये वो जरखेज़ ज़मीन है जिसके फूलों और फलों की कोई गिनती कोई शुमार नहीं। ये वो समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। ये वो ताकत है जो इंसान को खुद शनासी और खुदा शनासी सिखाती है। तालीम इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। हुसूल तालीम के बग़ैर एक सालेह और पुरअमन माशरे का तसव्वुर महाल है। मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली का दारोमदार तालीम पर है, और तालीम ही के ज़रिए बनी नौ इंसान शऊर व फ़हम की बुलंदी में परवाज़ करता है। तालीम ही खा मजहबी हो या असरी, दोनों ही किरदार साजी में अहम रोल अदा करते हैं। तालीम इंसान के लिए एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया की सारी जंगों में फतह हासिल की जा सकती है। तालीम का हुसूल मर्द और औरत दोनों के लिए नागजीर है। मर्द और औरत माशरे का लाजिम व मलजूम हिस्सा हैं। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस तरह गाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकती, उसी तरह सिर्फ एक के तालीम याफ्ता होने पर हम साले और तरक्की याफ्ता मुल्क व माशरा का तसव्वुर नहीं कर सकते। समाज में मर्द और औरत दोनों की अहमियत यकसा है। जब तक दोनों तालीम याफ्ता नहीं होंगे, हम किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकते। कायनात औरत के वजूद के बगैर नामुकम्मल है। औरत इस कायनात का जमाल व शाहकार और दिलकश वजूद है। औरत के बगैर इंसानी नस्ल का इस्तेहकाम और नश्व व नुमा नामुमकिन है। एक मोतबर समाज के लिए मर्दों के साथ साथ औरतों का भी तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कौम की तरक्की व खुशहाली का इन्हिसार मर्द व औरत दोनों की तालीम पर मबनी है। मुल्क व कौम और समाज व माशरा की तरक्की और खुशहाली के लिए जहाँ मर्द हजरात का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, वहीं औरतों का भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता होना लाजमी है। तभी हमारा माशरा तरक्की याफ्ता हो सकता है और हम एक बावक़ार समाज व माशरा की तश्कील में कामयाब हो सकते हैं। मौजूदा दौर में तालीम निस्वा की अहमियत व अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ख़वातीन माशरे का निसफ हिस्सा हैं, लिहाजा उनकी तालीम व तरबियत कौम और माशरे दोनों की तरक्की और भलाई के लिए नहायत ज़रूरी है। तालीम औरत को खुद एतमादी अता करती है, उसे खुद पर भरोसा करना सिखाती है, उसमें खुद शनासी की लहर पैदा करती है जिससे वो माशरे में अपनी बका की जंग लड़ती है और अपने वजूद को बरकरार रखती है। तालीम औरत को हुकूक व फ़राइज़ की पहचान सिखाती है और उन्हें बहुसन खूबी अंजाम देने का हुनर अता करती है। औरत और मर्द दुनिया के वो अहम सुतून हैं जिन पर यह माशरा कायम है। उनमें से किसी एक के बगैर ये माशरा कायम नहीं रह सकता और न फल फूल सकता है। इस माशरे की फलाह व बहबूद के लिए दोनों का किरदार अहम है। तालीम जिस तरह मर्द के जहन के बंद दरीचों को खोलती है, उसी तरह औरत के लिए भी तालीम ज़रूरी है ताकि वो भी शऊर की मंजिलों को तय कर सके। तालीम से औरत को माशरे में सरबुलंदी व सुरखरुई हासिल होती है, उन्हें समाज में इज्जत का मकाम मिलता है। औरत की तालीम क्यों ज़रूरी है? लोग अक्सर कहते हैं लड़कियों को तालीम क्यों दिलवाएं और उस पर इतना खर्च क्यों करें, जबकि उसे आगे जाकर घर ही संभालना है, खानादारी ही निभानी है। हम ये नहीं कहते कि औरत घर नहीं संभाले, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि उसे तालीम मिले ताकि वो घर के साथ साथ नस्लों को भी अच्छे से संभाले। औरत के दम से ये माशरा कायम है जो अपनी गोद में नस्लों को परवान चढ़ाती है। हकीकत तो ये है कि तालीम के लिए इब्तदाई और सबसे बेहतरीन दरसगाह माँ की गोद ही है। तारीख गवाह है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे उसकी माँ की बेशुमार तरबियत होती है।

जो वो बचपन से देती है। आदिल माँ का बेटा अमूमन आदिल ही होता है, क्योंकि अदल उसकी घुट्टी में होता है। अगर वो बहक भी जाए तो माँ की तरबियत उसकी रहनुमाई करती है। तालीम याफ्ता माँ अपने बच्चों की परवरिश अनपढ़ माँ के मुकाबले बेहतर अंदाज में कर सकती है और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनकी ढाल बन सकती है। किसी दाना का कौल है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। बच्चा जो कुछ इस दरसगाह में सीखता है वो उसकी आइंदा ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होता है। बच्चे की बेहतरीन तरबियत के लिए माँ का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। मुफक्किरीन की राय में मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, जबकि औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। फ्रांस के मशहूर बादशाह निपोलियन बोनापार्ट का कौल है, आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको बेहतरीन कौम दूंगा। नीज़ बेहतरीन कौमें बेहतरीन माएँ ही बना सकती हैं। अल्लामा इकबाल के फ़ारसी शेर का मफहूम है, कौमों को क्या पेश आ चुका है, क्या पेश आ सकता है और क्या पेश आने वाला है, ये सब माओं की जबीनों यानी पेशानी पे देखा जा सकता है। तालीम निस्वा से किसी भी मुल्क में माशी व इकतसादी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं और माशरा तरक्की की राह पर गामजन होता है। औरतों की तालीम का मकसद उन्हें इल्म से आगाही और उनकी अच्छी सलाहियतों को उजागर करना है। तालीम तो जहन के बंद दरीचों को खोलती है और उसे रोशनी अता करती है ताकि वह दुरुस्त सिमत का तायुन कर सके। कोई माशरा तालीम के बगैर कायम नहीं रह सकता और न ही तालीम की मंजिलों को पा सकता है। जिस माशरे में औरतें तालीम याफ्ता होती हैं वो माशरा तरक्की की राह पर गामजन हैं। औरतों और बच्चियों के लिए स्कूलों में प्राइमरी तालीम और कॉलेजों में आला तालीम के साथ वोकेशनल और पेशावराना तालीम का हुसूल यकीनी बनाना चाहिए। औरतों की तालीम अदबी व गैर अदबी तालीमी सरगर्मियों का अहाता करती है, लिहाजा एक तालीम याफ्ता माँ अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत कर सकती है और माशरे को अमन का गहवारा बना सकती है, अपने ये जरिया माश पैदा कर सकती है, अपनी और अपने बच्चों की बखूबी कफालत कर सकती है, गुर्बत का डटकर मुकाबला कर सकती है, किसी भी किस्म के हालात को चैलेंज कर सकती है। तालीम याफ्ता औरत अपने खानदान की माशी हालत को सुधारने के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है और ये सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को भी तब्दील कर सकती है और मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। एक तालीम याफ्ता औरत अपने माफी ज़मीर यानी अपनी बातों को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकती है। वो अपनी राय का इजहार बेहतर तरीके से कर सकती है। एक तालीम याफ्ता औरत मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार बेहतर तरीके से निभा सकती है। वो अपने ख़ानदान और माशरती जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ होती है। तालीम ख्वातीन को अपने पैरों पर खड़े होने और उन्हें खुद पर इन्हिसार में मदद करती है। अगर औरत तालीम याफ्ता होगी तो मुलाजमत करके अपने घर का खर्च उठा सकती है और घर के बाहर की ज़िंदगी में अपने शौहर का सहारा बनकर भी ज़िंदगी गुजार सकती है। तालीम न सिर्फ माशरे में ख्वातीन का मेयार बुलंद करती है बल्कि माशरे की तंग सोच को भी ख़त्म करती है। तालीम निस्वा के बगैर हम तरक्की याफ्ता समाज का ख्वाब नहीं देख सकते। ख्वातीन के ज़रिए हमारा माशरा महज़ब और बाअख्लाक और बासलीका होता है, इसलिए मर्दों के साथ साथ औरतों की तालीम पर बहुत जोर दिया गया है। उसके बरक्स अगर वो तालीम याफ्ता न हो तो बेबसी उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि औरत पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर या पायलट ही बने। औरत की अवलिन जिम्मेदारी उसका घर है। वो पढ़ी लिखी माँ बहन बेटी और बीवी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा सकती है। मर्द की तालीम तो सिर्फ मर्द को फ़ायदा पहुंचाती है मगर औरत की तालीम उसके साथ साथ उसकी नस्लों तक को संवार देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की तालीम को यकीनी बनाएं, उन्हें आला से आला तालीम दिलाएं, उनकी सरगर्मियों के लिए कोशा रहें। 19वीं सदी के शुरू तक औरतें और बच्चियां सिर्फ घरेलू दरसी तालीम तक ही महदूद थीं मगर अब माशरा गवाह है कि आज वालदैन अपनी बच्चियों को बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं।

0: और यही बच्चियां कल को यूपीएससी, बीपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, तिजारत, बुनकारी और सहाफत नीज हर शोबे में अपने कमाल दिखाती और मुल्क व कौम का सर फख्र से बुलंद करती नजर आती हैं। औरतों को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को तालीम की अहमियत व अफादियत से आगाह करें, उसके फ़वाद बताएं और उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करें, ताकि उनकी बेटियां भी माशरे में अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ सकें और उनसे इस्तेफादा कर सकें और माशरे में अपने वक़ार, मर्तबा और अपनी अजमत को बरकरार रख सकें, क्योंकि तालीम याफ्ता खातीन ही अपने ख़ानदान और माशरे में खुशहाली और मुस्बत तब्दीली ला सकती हैं और एक जदीद माशरा तश्कील दे सकती हैं।
1: आप समाअत फरमा रहे थे बातें जिनसे ज़िंदगी संवरती है के तहत ख़वातीन और तालीम के मौजू पर ये मकाला पेश कर रहे थे मोहम्मद यहिया फ़हीम। सामईन, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली के बारे में, जिसकी थीम है ख़ानदान, अदम मसावात और बच्चों का बहबूद। अदम मसावात का मतलब है वसाइल, मौक़े, हकूक़ और सहूलियात तक नाहमवार रसाई। ये मसावात कई शक्लों में होती हैं, जैसे मुआशी अदम मसावात, जिसके तहत गुरबत और दौलत का फ़र्क होता है, तालीमी अदम मसावात, जैसे मियारी तालीम तक रसाई में तकाफत, समाजी अदम मसावात, जैसे ज़ात, मज़हब, जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज़ और सेहत की अदम मसावात, यानी सेहत की सहूलियात तक रसाई में फ़र्क। जब ख़ानदान इनमें से किसी भी किस्म की अदम मसावात का शिकार होता है, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे होते हैं। ऐसे ख़ानदान जहाँ मुआशी अदम मसावात हो, बच्चे को भूख, नाकिस सेहत और तालीम से महरूमी का सामना करना पड़ता है। एक तहकीक के मुताबिक शरी गरीब ख़ानदानों के बच्चों के अमीर ख़ानदानों के बच्चों के मुकाबले में स्कूल छोड़ने के इम्कान 4 गुना ज़्यादा होते हैं। तो सामईन, बातें और भी करेंगे। आइए, पेश खिदमत है कलाम शायर, आज अपने नातिया कलाम के साथ हैं शकील अख्तर।
2: नात पाक के चंद अशआर समाअत फरमाएं।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम डसमंजरी।

0: encontré y llegas hoy tan de repente.
1: कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से फरहान अख्तर और साथियों की आवाज़ों में।

आवाज़ें सुनते हैं ए आर रहमान और चिन्मई की आवाज़ों में गुरु फिल्म का ये गाना, बोल है गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

मिस इन कश्मीर। इस फिल्म का गाना सुनिए शंकर महादेवन, जसविंदर नरूला और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में।

है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

0: कार्यक्रम का अगला गाना इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम का अगला गाना खिलौना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खिलौना फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के तहत सुनिए बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज़ में कुछ भजन। सबसे पहले सुनिए भजो मन नंदन धन गिरधारी।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गाना शान और श्रेय घोषाल की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है यहाँ, बोल हैं गुलजार के और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

0: कुछ ना कहो, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। शंकर महादेवन और रंजीता भट्टाचार्य की आवाज़ों में बोल थे जावेद अख्तर के, और धुन बनाई थी शंकर ईशान लॉय ने।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना, मोहित चौहान और ए.आर. रहमान की आवाजों में। फिल्म का नाम है रॉक स्टार। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है ए.आर. रहमान ने।

ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे हर्षदीप और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के और धुन बनाई थी प्रीतम चक्रवर्ती ने।

लेकिन फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। अब लीजिए सुनिए, सिंग इज़ किंग फिल्म का ये गाना राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

0: श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत। इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:02 हुए हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज सुनिए संस्कार गीत की तीसरी कड़ी।
6: केवल कुल देवता

और परिजनों को निमंत्रण देना ही विवाह समारोह में पर्याप्त नहीं होता। इस समय पितरों का भी आवाहन किया जाता है ताकि वे अपने आशीर्वाद से इस यज्ञ में सहायक हो सकें। पितर नेवतन नाम के इस गीत में राजा जनक ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी कन्या के विवाह में निमंत्रित करते हैं। गया से गजाधर को, प्रयाग से वेणी माधव, उड़ीसा से जगन्नाथ को भी वे इस यज्ञ में सम्मिलित करना चाहते हैं। तीनों लोक से नाग, किन्नर, गंधर्व, गणेश और गंगा को भी इस समारोह में अनुकूल भाव से उपस्थित होने के लिए वे प्रार्थना करते हैं।

विवाह के अवसर पर कुछ दिन पूर्व मिट्टी कोड़कर लाने की रस्म होती है। जो स्त्रियां मिट्टी कोड़ने जाती हैं, उनके साथ मानर बजाने वाला भी होता है। मानर को पूजा जाता है, उस पर पैसे तथा अन्य द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। इसी समय घर की स्त्रियां अपने कुटुंबियों को एकत्र करके मानर परिचती हैं। मानर बजाने वाले को भी कुछ दिया जाता है। मानर की पूजा दरवाजे पर ही होती है और इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में मंगल कामना ही व्यक्त होती है। प्रस्तुत है मानर पुजारी का एक गीत।

मटकोर की विधि के लिए घर तथा बाहर से बुलाई गई स्त्रियां गीत गाती हुई घर के पास की नदी, तालाब, कुएं या खेत में जाकर वहां से शुद्ध मिट्टी कोड़ कर लाती हैं। उसी शुद्ध मिट्टी के ऊपर कलश रखा जाता है तथा उसमें और मिट्टी मिलाकर लग्न का चूल्हा तैयार किया जाता है, जिसे बियोहते चूल्हा भी कहा जाता है। ये रस्म वर कन्या दोनों के यहाँ अदा की जाती है। इस अवसर पर गाली देने की भी प्रथा है। एक मटकोर गीत का भाव है, किस चीज की मिट्टी उपजी है, कौन देवी ये सुहाग की मिट्टी कोड़ने जा रही है, सोने के समान मटकोर में मिट्टी उपजी है, ये सुहाग की मिट्टी दादी कोड़ने जा रही है, ओ पीली मिट्टी तू जल्दी उखड़ जा, तुम्हारे बिना विवाह का ये यज्ञ पूरा नहीं होगा।

विवाह के समय वर और कन्या दोनों को उपटन लगाने की प्रथा है। संभवतः सौंदर्य निखारना ही इस विधि का लक्ष्य है। वर पक्ष की ओर राम आदि चारों भाइयों का उपटन हो रहा है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या में ये आयोजन हो रहा है। दो भाई गोरे हैं, दो सांवले। चारों के मस्तक पर चंदन सुशोभित है। रानी कौशल्या आनंद से फूली नहीं समाती। वे घर घर न्योता भेज रही हैं। पहला न्योता सुमित्रा को भेजती हैं कि वे कैकई के साथ चली आवे। नए अंगोछे से चारों भाई सूखे हुए उपटन को झाड़कर दर्पण में मुख देखते हैं। उपटन के इस गीत के साथ हंसी ठिठोली भी होती है।

हल्दी सुख सौभाग्य का प्रतीक है, इसीलिए विवाह के अवसर पर वर और कन्या दोनों को हल्दी चढ़ाई जाती है। रघुनाथ कुंवर को हल्दी चढ़ाई जा रही है, उनकी शोभा का बखान करने को शब्द नहीं मिलते। घर घर में बधावे बज रहे हैं, वेद मंत्रों के साथ हल्दी पिसी गई है और कुल देवता से मन्नत मांगी गई है। कुल की रीति के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने पहली हल्दी श्री राम को चढ़ाई, दूसरे में घर के लोगों ने हल्दी चढ़ाई। सबके मन में हर्ष है। इस हल्दी गीत में ऐसा ही वर्णन है।

विवाह के 2-3 दिन पूर्व मंडपा छादन होता है। इस अवसर पर मड़वा गीत या मंडप गीत गाने का प्रचलन है। कोई बेटी कहती है, हे बाबा, हरे हरे बांस कटवाकर सुंदर मंडप छवाना और अपने रूठे हुए परिजनों को राजी करके ही बेटी का ब्याह करना। पिता कहते हैं, ऐसा ही होगा। फिर बेटी कहती है, हे पिता, उत्तम मंडप में मड़ी युक्त खंभा गड़ाइएगा, जिसमें सोने का रतन जड़ा कलश रखिएगा। पिता कहते हैं, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। मिट्टी के हाथी में हम चौमुख दीप जलाएंगे, जिससे प्रकाशित मंडप चंद्रमा को भी ढक लेगा। प्रस्तुत है एक मड़वा गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: अंतराल से पूर्व आपने सुना संस्कार गीत की तीसरी कड़ी, कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत में। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोता सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
7: हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है बच्चों में कटे होठ, नाक और तालू की समस्या और समाधान। और आपके फोन कॉल्स का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रियंकर सिंह साहब, जो IGIMS में सहायक प्राध्यापक हैं क्लेफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल सर्जरी के।
8: नमस्कार
7: डॉक्टर साहब। ये जो बच्चों में कटे होठ, नाक और तालू की समस्या होती है, ये जन्मजात होती है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि किसी अंधविश्वास की वजह से, किसी प्रकोप की वजह से, किसी दैवी शक्ति के प्रकोप की वजह से ऐसा हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
8: ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आमतौर पे जब भी इस प्रकार का एक बच्चा जन्म लेता है तो

0: माँ बाप के लिए एक बहुत पीड़ा की अनुभूति होती है। समाज उसमें अपनी 10 तरह की भ्रांतियां जोड़ने लग जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिस शक्ल के साथ पैदा होते हैं वो एक कुरूपता का प्रतीक होता है। इसको लेके बरसों से हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि जब माँ या जब महिला गर्भवती होती है, खासकर अपने बिहार में मैं बता रहा हूं कि जब महिला गर्भवती होती है, अगर वो सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में घर से बाहर निकल जाए तो कटे होंठ कटे तालू वाले बच्चे पैदा होते हैं। या मैंने कई बार इतने बच्चों के ऑपरेशन के बाद देखा है कि उनकी माएं बताती हैं कि जब वो गर्भवती थी उन्होंने कभी खरगोश को देख लिया था गर्भ अवस्था के दौरान, इसलिए कटे होंठ कटे तालू के बच्चा पैदा हुए। लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं, ये सब पूर्णतः एक अंधविश्वास है। इसके कई वैज्ञानिक कारण हैं
1: तो
0: जिसपे
1: वैज्ञानिक
0: लोग।
1: कारणों पर थोड़ा हम आगे बात कर लेंगे डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल ले
0: जी
1: लेते हैं
0: प्लीज,
1: जी।
0: बिल्कुल
1: हेलो
0: हेलो सर
1: जी, बताइए
0: जी, नमस्कार, बताइए अपने बारे में।
2: जी। सर मैं गया जिला के मोहनपुर थाना अंतर्गत जागेश्वर प्रसाद बोल रहा हूँ,
0: जी जागेश्वर जी, बताइए
2: लखीमपुर से जी।
0: जी जागेश्वर जी।
2: जन्म से ही बच्चे और कटे ओठ और नाक क्यों पैदा होते हैं?
0: इसके बहुत
2: और
0: सारे कारण हैं जागेश्वर जी। जैसे मैं अभी बता रहा था कि समाज में कुछ भ्रांतियां फैली रहती हैं कि अगर ऐसी गर्भ अवस्था में महिलाएं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में निकल जाएं तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, ये बिल्कुल एक अंधविश्वास है। अगर गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को सही खुराक ना मिली हो भोजन की, या जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, और खासकर हमने देखा है कि फोलिक एसिड एक तत्व होता है, उस फोलिक एसिड तत्व की कमी अगर पहले 3 महीने में गर्भ अवस्था के दौरान होती है तो उससे कटे होंठ कटे तालू के बच्चे पैदा होते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है अनुवांशिक। आपने सुना होगा जेनेटिक, कि माँ बाप को था तो बच्चे को भी हुआ, है ना? तो जेनेटिक कारण आज के जमाने में एक बहुत बड़ा कारण है कि परिवार दर परिवार ये जेनेटिक्स में फैलता है। और जैसे कभी दादा को था या किसी परिवार में किसी मामा को था और उसके अनुवांशिक कण माँ बाप में आए हों और माँ बाप से फिर बच्चे में गए हों, तो वैसी कारणों की वजह से भी ये बच्चे कटे होंठ कटे तालू से पैदा होते हैं।
2: यानी
0: और
2: वंशानुगत
0: जी
2: वंशानुगत भी हो जाता है।
0: हाँ, इसके यही 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो प्राकृतिक कारण, जैसे कि माँ को सही खुराक नहीं मिली, और या माँ की कोई बुरी आदतें हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर कोई महिला धूम्रपान का सेवन करती है या मदिरा का सेवन करती है तो वैसे में भी कटे होंठ कटे तालू के बच्चे पैदा होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और खासकर हम लोगों ने देखा है कि आपसी रिश्तों में जो शादियां होती हैं, जो बिल्कुल ब्लड रिलेशंस में, वहां पे ये अनुवांशिक कारण और काम करते हैं। जहां जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब जो अनुवांशिक जो लोगों के जीन में जो होता है, अणु में जो होता है, उसमें अगर कुछ खामियां आ जाती हैं तो वो परिवार दर परिवार फिर फैलती है और कटे होंठ कटे तालू वाले बच्चे पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जी जोगेश्वर जी, और कोई सवाल जोगेश्वर जी आपका?
2: अच्छा, माँ को रख रखाव में या रहन सहन में कोई अंतर नहीं ना पाया था?
0: नहीं, कोई रहन सहन में कोई अंतर नहीं, और माँ को बस गर्भावस्था के समय सही खुराक मिले। और ऐसे बच्चे अगर पैदा होते भी हैं तो वो कोई अभिशाप नहीं है, उनका तुरंत ऑपरेशन किया जा सकता है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चों की तरह स्वस्थ हो सकते हैं।
2: ठीक है, नमस्कार
0: जी,
2: सर।
0: नमस्कार जोगेश्वर जी।
1: डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों में ये समस्या होती है जन्मजात होती है,
0: जी
1: तो ये जो उनकी जो सर्जरी आप करते हैं, कितनी आयु तक उन बच्चों को ठीक किया जा सकता है? जब इतने कटे
0: ये
1: हुए होंठ
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: नाक हैं या तालू हैं तो?
0: बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसके बारे में भी एक जागरूकता जानी बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपने देखा, जो इससे पहले हमने कॉल अटेंड किया कि वो बच्चा 6 साल का हो चुका था और अभी तक उसकी सर्जरी नहीं हुई है। कटे होंठ की सर्जरी या ऑपरेशन जब बच्चा 3 से 5 महीने का हो तब तक हो जानी चाहिए। कटे हुए तालू की सर्जरी जब बच्चा 12 से 14 महीने का हो तब हो जानी चाहिए। और आमतौर पे जो होंठ के साथ नाक कटे हुए रहते हैं तो नाक का भी ऑपरेशन हम लोग होंठ के समय ही कर देते हैं जब बच्चा 3 से 5 महीने का रहता है। लेकिन जैसे जैसे चेहरे का विकास होता है 12 साल 14 साल तक, तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि नाक में या होंठ में कोई सेकेंडरी डिफॉर्मिटी, कोई और चेंजेस आते हैं, तो 15 से 16 साल तक हम लोग नाक की भी सर्जरी करते हैं। तो ये एक समय अवधि है कि जिन इस समय अवधि में उन बच्चों का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, ताकि वो बच्चे बिल्कुल एक बाकी समाज के नॉर्मल बच्चों की तरह

0: हो जाए, और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, इस कॉस्मेटिक से कहीं ज्यादा जरूरी है कि सही समय पर सर्जरी होने से वो अपने फंक्शन को अटेन कर सके।
1: जी, तो इसका मतलब है कि अगर बच्चे इस तरह के जन्म होते हैं तो तत्काल ही उनके अभिभावकों को सक्रिय हो जाना चाहिए और उनकी सर्जरी करा के उनके उनका इलाज कर देना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: सही बात कही आपने। जिस दिन भी ये बच्चे पैदा होते हैं उसी दिन से माँ बाप को अपने लोकल पेडिट्रिशियन यानी कि बच्चे के डॉक्टर और वहां पे कटे होंठ कटे तालू के कोई सर्जन से अगर वो मिल लें, जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में है, तो उन पेशेंट्स को उनके माँ बाप को हम लोग एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं कि जब तक बच्चा 3 से 5 महीने का हो तो उस बच्चे की खुराक कैसे मेंटेन करें, उसे क्या दवाइयां चलाएं ताकि वो स्वस्थ रहे। क्योंकि सिर्फ सर्जरी के लिए सोच लेना ही सही नहीं है, सर्जरी के मापदंडों पे उस बच्चे को उस समय खड़ा उतरना भी बहुत जरूरी है। उसकी जब भी खून के जांच होंगे तो खून के जांच सारे सही आए, बच्चे का वजन उस समय पर्याप्त हो ऑपरेशन करने के लिए। तो जन्म के तुरंत बाद ही अगर माँ बाप बच्चे को लेके डॉक्टर से मिल लेते हैं तो उन वैसे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड किया जा सकता है और उन्हें तमाम समय अवधियां बताई जा सकती हैं कि किस समय पे किस चीज की ऑपरेशन कराने के लिए आपको उपस्थित रहना पड़ेगा और उसके पहले किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, बच्चों में जो ये समस्या है, वो अगर भारत की बात करें पूरी दुनिया के अनुपात के हिसाब से तो क्या स्थिति है?
0: इसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कि कोई पैंडेमिक फैल रहा हो, क्योंकि अगर आप पूरे विश्व की बात करें तो खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में और एशियन कंट्रीज में इसका अनुपात बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उसके यही 3 कारण हैं, एनवायरमेंटल यानी कि प्राकृतिक, जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक कारण, और कॉन्सैंग्यूनस मैरिजेस यानी कि आपसी संबंधों में रिश्ते। अगर आप पूरे विश्व की बात करें तो जिसका जो अनुपात है कि हर प्रति 1,000 बच्चे में कोई एक बच्चा कटे होंठ कटे तालू से पैदा हो रहा है। जब आप एशियन कंट्रीज की बात करते हैं जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी आता है, तो वहां 750 बच्चों में एक कोई बच्चा कटे होंठ कटे तालू से पैदा हो रहा है। लेकिन अगर आप पूर्णतः अपने भारत अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हम और ज्यादा तीव्र गति से इसमें बढ़ रहे हैं और 600 या 650 बच्चों में कोई एक बच्चा अब कटे होंठ कटे तालू में पैदा हो रहा है। और अगर आप इस अनुपात को देखें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के एक सर्वे के अकॉर्डिंग भी सिर्फ अपने बिहार में कम से कम 30,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है और वो बिना ऑपरेशन के घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं है, वो आज भी एक अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो ऐसे में समाज को ये जागरूक करना बहुत जरूरी है कि ये सभी लोग सही समय पे डॉक्टर को कंसल्ट करें और सही समय अवधि में अपना ऑपरेशन करा लें।
1: तो इस तरह के बच्चों के इलाज के लिए तो सरकार भी या स्वयंसेवी संगठन भी बहुत तेजी से आगे आ रहे
0: बिल्कुल
1: हैं, जिससे कि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बहुत पैसे उनके खर्च ना हो।
0: बिल्कुल।
1: तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
0: इस बारे में मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में पहले कटे होंठ कटे तालू के सर्जरी के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में विश्व की बहुत सारी समाज सेवी संगठन इसमें खुल के सामने आए हैं और ऐसे बच्चों का बिल्कुल निशुल्क ऑपरेशन करने का काम शुरू किया गया। ये देखते हुए भारत सरकार ने भी एक बहुत ठोस कदम उठाया और भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके तहत इन बच्चों का पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में कटे होंठ कटे तालू वाले बच्चों का बिल्कुल निशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। इस निशुल्क के पूरे पैकेज में बच्चे के अस्पताल के आने तक उनको एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है, उनके सारे ऑपरेशन के पहले जितनी खून की जांच की सुविधा होती है वो सब निशुल्क है, ऑपरेशन निशुल्क है, ऑपरेशन के बाद आने वाले इस्तेमाल में दवाइयां निशुल्क हैं और वापस घर तक छोड़ने की व्यवस्था निशुल्क है। तो जब भारत सरकार ने इतना ठोस कदम उठाया है तो अब किसी भी मरीज को पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन बिल्कुल निशुल्क हो रहा है और हर वो मरीज जो कटे होंठ कटे तालू से पैदा हुआ है उसको इस योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। जैसे हमारे आयुर्विज्ञान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS पटना में हम लोग भी RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कटे होंठ कटे तालू के बच्चों का ऑपरेशन बिल्कुल निशुल्क कर रहे हैं।
1: जी, एक कॉल ले लेते हैं।
0: जी
1: हाँ, बताइए। हाँ, तो आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
2: समस्तीपुर जिला से धमौन ग्राम बोलते हैं।
1: अच्छा, तो हेलो डॉक्टर, में जो आपने फोन किया है, आप अपनी
2: जी
1: समस्या बताएंगे?
2: जी जी
1: क्या समस्या है बताइए।
2: एक बच्चा है, तालु और नाथ जन्म जन्म सिंह कट गया।

0: कितने उम्र के का बच्चा है वो?
1: ना, वो 6 साल का बच्चा था।
0: अच्छा, तो डॉक्टर प्रियंकर सिंह साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में, आप उनसे अपनी समस्या बताइए।
2: जी नमस्कार रमन जी,
1: नमस्कार
2: ये जो छोटा बच्चा है ये, इसकी उम्र कितनी है? 6 साल।
1: जी।
2: अच्छा, ये जो कटे तालू वाले बच्चे पैदा होते हैं या कटे नाक वाले, इनके ऑपरेशन का एक निर्धारित समय है। जो तालू का ऑपरेशन, उस बच्चे का 1 साल की उम्र में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी भी आप उसका ऑपरेशन करवा सकते हैं जिससे उसकी आवाज भी साफ हो जाएगी, और अभी वो कुछ भी खाना खाता होगा तो वो नाक से निकलता होगा।
1: जी
2: जी, तो इसको बंद करने के लिए तुरंत उसका एक ऑपरेशन करना जरूरी है। बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, उसमें कहीं कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं होती है। ये सारे ऑपरेशन अब बिल्कुल मुफ्त में हो रहे हैं, बिल्कुल निशुल्क हो रहे हैं।
1: जी ऑपरेशन सर के पास कहाँ कहना होगा?
2: पटना में राजा बाजार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है, IGIMS।
1: जी।
2: IGIMS में आपको आना है, वहां इस बच्चे का एक निशुल्क कार्ड बनेगा, और उसके बाद उसके ऑपरेशन से लेके उसकी दवाइयों से लेके उसके रहने तक जितना भी खर्च होगा वो सरकार और संस्थान वहन करेगा। ठीक है, इसलिए ऑलरेडी आप बहुत लेट हो चुके हैं उस बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए, तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप जल्दी से उस बच्चे का ऑपरेशन करा लें, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी उसके लिए और दिक्कत बढ़ती चली जाएगी।
1: तो सर ओठ जो है ताली जो है ज्यादा ना,
2: जी
1: ओठ जो कटा हुआ है नाक वाला है
2: जी
1: ठीक
2: जी
1: हो ना?
2: जी होंठ और नाक का एक बार में ऑपरेशन हो जाएगा,
1: जी
2: और तालू का उस ऑपरेशन के बाद में ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है
1: जी
2: जी, और ये सारे ऑपरेशन 2 महीने के अंतराल में ही हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन हैं, और इससे वो बच्चा बिल्कुल एक जैसे सामान्य बच्चा रहता है वैसा हो जाएगा। ठीक है, और निःशुल्क में ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए आप बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए IGIMS पटना में आ जाइए, वहां हम लोग उसका बिल्कुल निशुल्क ऑपरेशन कर देंगे।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कटे होठ, कटी नाक और तालू वाले बच्चे हैं,
2: जी
0: वो केवल उनके चेहरे की माने जो सौंदर्य है वही प्रभावित होता है या जीवन जीने में भी उनको कुछ कठिनाई होती है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, उनको जीवन जीने में भी बहुत कठिनाइयां होती हैं। जब भी कोई बच्चा कटे होंठ से पैदा होता है तो स्वाभाविक है वो सामने दिख जाता है। जो बच्चा कटे तालू से पैदा होता है तो तालू अंदर छुपा रहता है मुंह के, तो वो दिख ही नहीं पाता। तो बहुत सारे लोग पहले फेशियल वैल्यूज यानी कि कॉस्मेटिक वैल्यूज को देख के ही ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन यहां सिर्फ कॉस्मेटिक्स की बात नहीं है कि फेशियल वैल्यू ठीक हो जाए या उस बच्चे का चेहरा ठीक हो जाए, उसके साथ साथ कई फंक्शन जुड़े रहते हैं। ईश्वर ने हमारा होंठ सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बनाया है, होंठ के बहुत सारे और काम भी हैं। जैसे महज आप ये देखें तो 3 या 4 महीने के बच्चे में हम ऑपरेशन करके इतनी जल्दी इसलिए भी ऑपरेशन करना चाहते हैं ताकि वो अपने माँ के दूध को पीने की क्षमता रखे, क्योंकि दूध पीने के लिए दोनों होठों का ही इस्तेमाल करना है। वो जो सक्शन प्रक्रिया ईश्वर ने बनाई है उसके लिए दोनों होठों का ही इस्तेमाल होगा, तभी जाके वो नेगेटिव सक्शन क्रिएट होगा और वो दूध निकलेगा। इसके लिए होठ का ऑपरेशन सही समय पे हो जाए। तालू का ऑपरेशन सही समय पे इसलिए जरूरी है क्योंकि तालू मुंह के अंदर छुपा हुआ है, बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए बच्चे काफी उम्र तक बड़े हो जाते हैं और वो ऑपरेशन नहीं करा पाते। तालू का ऑपरेशन 12 से 14 महीने में इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि बच्चे की जो बोलने की ग्रंथि हमारे दिमाग में है, जिसे हम ब्रोका स्पीच एरिया कहते हैं, वो 1.5 से 2 साल में इतनी डेवलप हो जाती है कि बच्चा उसी से गेन करने लग जाता है अपनी स्पीच को। तो अगर हम एक सही समय पे बच्चे के तालू का ऑपरेशन कर दें तो हम उससे सिर्फ नाक और मुंह के कनेक्शन को नहीं बंद कर रहे, बल्कि उस बच्चे के आजीवन आने वाली आवाज को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम बच्चों में चूंकि तालू कटा रहता है या होंठ कटे रहते हैं तो उनके सारे दांत भी टेढ़े मेढ़े आते हैं, और दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह से उनके मुंह की जितनी बीमारियां होती हैं उसकी भी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऐसे बच्चों को एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव से मेरा मतलब है संपूर्ण इलाज, मात्र उनकी सर्जरी कर देना ही संपूर्ण इलाज नहीं है, उससे जुड़ी जो जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण सही समय पर होते रहना चाहिए।
0: जी, और जो कटी हुई नाक है उससे बच्चों को क्या दिक्कतें आती हैं?
2: जी, कटी हुई नाक से बच्चों को सबसे पहले दिक्कत यह आती है कि उनसे नाक से मुंह का कनेक्शन बना रहता है, तो बच्चे जो भी खाते हैं वो नाक से बार बार निकलता रहता है। ये भी नाक में और मुंह के बीच में जो फंसा हुआ खाना रह जाता है उस पर बैक्टीरियल लॉजमेंट होती है, बैक्टीरिया लगता है, तो वो भी एक इन्फेक्शन

0: का कारण बनता है। सबसे बड़ा जो एक कारण होता है कि ऐसे बच्चों का जो बच्चों की जो आवाज निकलती है वो नाक से निकलती है, तो उसको बंद करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए ऑपरेशन करके, क्योंकि फिर वो समाज में उपहास का कारण बनते हैं। कटे होंठ की वजह से वैसे ही ये बच्चे एक मानसिक विकृति के दौर से गुजर रहे होते हैं। अगर उनकी आवाज भी नाक से निकलने लग जाती है तो वैसी अवस्था में ये बच्चे और मानसिक तनाव से गुजरते हैं। इसीलिए एक सही समय पर अगर इनको ऑपरेशन कर दिया जाए तो सिर्फ चेहरे की सुंदरता या तालू की सुंदरता से कहीं ज्यादा अधिक उन बच्चों को वो फंक्शन मिल जाता है जो ईश्वर ने खूबसूरती से बनाया है।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तीन तरह की समस्याएं, कटे होंठ, कटे नाक या कटे हुए तालू की
0: जी
1: समस्या, इन तीनों की सर्जरी अलग अलग, अगर मान लिया किसी बच्चे में तीनों समस्या
0: तीनों
1: है,
0: समस्याएं।
1: तो आप उसका कैसे प्रबंधन करते हैं, कैसे उनकी सर्जरी करते हैं, बारी बारी से करते हैं, एक
0: जी
1: साथ करते हैं?
0: जी आमतौर पे सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो कटे होंठ की जो समस्या है, कटे होंठ की समस्या दो तरह की होती है, या तो होंठ आधा कटा रहता है या पूरा कटा रहता है। होंठ आधा कटा रहे तो वो सिर्फ होंठ तक ही सीमित रहता है, लेकिन होंठ अगर पूरा कटा रहे तो उसका मतलब है कि तालू भी पूरा कटा हुआ है और नाक भी पूरी कटी हुई है। देखिए, एक साथ इन सबकी सर्जरी करना कंबरसम भी रहता है, मतलब कठिन भी रहता है, और जैसा मैंने बताया कि हर एक जगह की सर्जरी का एक समय निर्धारित है। जैसे कटे होंठ के साथ अगर कटा तालू भी है और कटा नाक भी है, तो जैसे कटे तालू के अवधि 12 से 14 महीने है तो उसकी सर्जरी हम पहले नहीं कर सकते हैं। इसलिए कटे होंठ और कटे नाक की सर्जरी हम 3 से 5 महीने में कर देते हैं। उसके बाद हम जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको गाइड करते हैं कि कैसे बच्चे की खुराक और ये सब मेंटेन करें, ताकि जब तक बच्चा 12 से 14 महीने का हो वो अपनी तालू की सर्जरी करवाने के लिए पूर्णतः स्वस्थ हो। और जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि इसके बाद भी अगर कोई त्रुटियां रह जाती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज कहते हैं, तो वो आराम से हम लोग 12 से 14 साल, 15 साल तक में वापस एक ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं।
1: अच्छा, ये सर्जरी कर देना ही पर्याप्त होता है डॉक्टर साहब, या इसके बाद भी कुछ पोस्ट ऑपरेटिव केयर आप करते हैं जिससे बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाएं, जैसे बोलने की उनकी क्षमता का विकास करना, इन चीज़ों के बारे में भी कुछ काम होता है?
0: मैं समझता हूं कि हमारे इस हेलो डॉक्टर प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने यही पूछा है, क्योंकि मात्र सर्जरी कर देना, मात्र उस बच्चे की एक एनाटॉमिक डिफॉर्मिटी को ठीक कर देना ही पर्याप्त नहीं है, मात्र उसके फंक्शन को रीगेन करा देना ही पर्याप्त नहीं है। ये जो भी इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, आप उनके माँ बाप की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए, तब तक जब तक वो बच्चा अपने होशो हवास में नहीं आ जाता है, और फिर जब वो बच्चा अपने होशो हवास में आ जाता है तब उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए कि उसके स्कूल में, उसके दोस्तों के बीच में उसका कितना उपहास उड़ाया जाता है, और ऐसे बच्चों को समाज से एक दरकिनार कर दिया जाता है। तो मात्र मैं समझता हूं कि जैसे अब तक मैंने शायद हजारों बच्चों को ऑपरेशन किया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मात्र ऑपरेशन कर देने से और उनके फंक्शन को रीगेन करा देना ही पर्याप्त नहीं है। हमें जरूरी है कि हम इन तमाम बच्चों को समाज में उनकी वो जगह दें जो एक नॉर्मल बच्चे की जगह होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारे संगठन हैं जो इसके लिए काम भी कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों का मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो, ऐसे बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उन्हें भी उसी तरह से स्कूल में पढ़ाई मिलनी चाहिए, उसी तरह का सामाजिक संरक्षण मिलना चाहिए जो बाकी बच्चों को मिलता है। क्योंकि ये एक इतना बड़ा मानसिक तनाव है कि मैंने देखा है कि आज से 10 साल पहले मैंने जिस बच्चे का 3 या 4 महीने में ऑपरेशन किया था, और वो बच्चा आज कई सारी मानसिक विषमतियां लेके कभी कभी मेरे पास आता है, तो मैं बहुत कुंठित और व्यथित होता हूं कि मैंने इसकी एनाटॉमी तो ठीक कर दी थी, फंक्शन भी ठीक हो गया था, लेकिन शायद इसके समाज ने इसको वो जगह नहीं दी जिसकी वजह से आज तक ये उस मानसिक तनाव से गुजर रहा है। तो बहुत जरूरी है, सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं, उस बच्चे के माँ बाप के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए, कि ऐसे बच्चों को उनकी सही जगह उनके समाज में मिले, क्योंकि ये एक ऐसी विकृति है जो बच्चे के अपने कारणों की वजह से वो ऐसा पैदा नहीं हुआ, ये एक ईश्वर की देन है जिसकी वजह से वो ऐसा पैदा हुआ है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और मात्र एक 40 से 45 मिनट का ऑपरेशन उस बच्चे को ठीक भी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक एनाटॉमिक करेक्शन हुआ या
1: जी,
0: फंक्शनल करेक्शन हुआ।
1: तो हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में कटे होंठ, नाक और तालू की समस्या पर आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर प्रियंकर सिंह, जो IGIMS में सहायक प्राध्यापक हैं क्लेफ्ट एवं क्रेनियो फेशियल सर्जरी के।
0: जी
2: सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो समस्या होती है, इस बहुत सारे, अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ और रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि कोई दैविक डॉक्टर को

0: बिल्कुल
1: इस तरीके की जो भ्रांतियां होती है उसे किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सकता है? एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: एज ए डॉक्टर भी और एज ए समाज सामाजिक कार्यकर्ता भी, समाज में फैली हुई किसी भी भ्रांतियों के निवारण का एक ही इलाज है, जागरूकता। और हम जितनी जागरूकता, जैसे आज हम आपके ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हम ये जागरूकता फैला रहे हैं कि ये किसी भी दैवी शक्ति से नहीं हो रहा है, आपकी दैवी शक्ति से आपको वो उतना सुंदर बालक या बालिका प्राप्त हो रहा है जो मात्र एक छोटी सी विकृति से पैदा हो रहा है। दैवी शक्ति, इसमें कोई भी दैवी शक्ति कभी किसी बच्चे को विकृति से पैदा करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। जैसा कि समाज में भ्रांतियां हैं या अपभ्रंश हैं या अंधविश्वास है कि गर्भ अवस्था में अगर मां सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय घर से बाहर निकलती है तो इस तरह की अवस्था में बच्चे पैदा होते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गर्भ अवस्था में अगर मां को सही खुराक ना मिले, सही न्यूट्रिशन ना मिले, खासकर फोलिक एसिड एक तत्व है, वो अगर सही खुराक में ना मिले, गर्भ अवस्था में अगर कोई महिला धूम्रपान का या मदिरा का सेवन करती है या कोई गलत दवाइयां खाती है, जैसे कुछ महिलाओं को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और मिर्गी के दौरे का इलाज की जो दवाइयां चलती हैं वो भी इसमें मजबूर करती हैं कि ऐसे बच्चों में जेनेटिक चेंजेस आते हैं पहले ही 3 महीने में गर्भावस्था के, और कटे होंठ कटे तालू के बच्चे उसकी वजह से पैदा होते हैं। इसलिए ये मेरी, आपकी और पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की तमाम भ्रांतियों को समाज से जागरूकता के द्वारा खत्म करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, हम क्या जतन करें कि इस तरह के बच्चे कम पैदा हों?
0: हाँ, जतन हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं, बहुत सारे शोध चल रहे हैं कि ऐसे बच्चों की जो डायग्नोसिस है वो गर्भ अवस्था में ही हो जाए। और बहुत सारे जगह पे अभी विज्ञान इतना आगे निकल गया है कि गर्भ अवस्था में ही ऐसे बच्चों के ऑपरेशन की कर दी जा रही है। हमारे भारत में अभी तक वो सुविधा नहीं आई है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी है जेनेटिक काउंसलिंग। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, जैसे हमारे शरीर में ही हमारी उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स को देख के और लिप प्रिंट्स को देख के आप बता सकते हैं कि ये इन माँ बाप को कटे होंठ कटे तालू से बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे। और अगर किसी माँ बाप को ऐसा एक बच्चा पैदा हुआ है तो उनको अपनी जेनेटिक काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी वैसे बच्चों के पैदा होने की संभावना 50% बनी रहती है। तो सबसे पहले तो ऐसे माँ बाप जिन्हें, जिनके परिवार में, पूरे खानदान में कभी ना कभी कोई कटे होंठ या कटे तालू से पैदा हुआ है, तो उनको अपनी जेनेटिक काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए, या बच्चा प्लान करने से पहले अपने जेनेटिक काउंसलर से या अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि आपसी संबंधों में विवाह होने की वजह से अनुवांशिक म्यूटेशंस या अनुवांशिक खामियां जो अब आ रही हैं, जैसे इवोल्यूशन दर पदर होता ही जा रहा है, हम लोग बंदर से इंसान बने, उसी तरह से कटे होंठ कटे तालू का जो जेनेटिक्स है, जो अनुवांशिक कारण है, उसमें भी बहुत तीव्र गति से चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपसी संबंधों में विवाह होते जा रहे हैं और उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें जेनेटिक म्यूटेशंस बहुत आ रहे हैं, तो हम अगर कॉन्सैंग्विनस मैरिजेस को रोक दें तो हम इस पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं, लेकिन इसे पूर्णतः रोक नहीं सकते। लेकिन जब इस तरह के बच्चे पैदा हो जा रहे हैं तो हम उन्हें वो सब कुछ संपूर्ण दे के उन्हें नॉर्मल बच्चा जरूर बना सकते हैं।
2: जी, तो डॉक्टर साहब, आपने हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आकर हमारे सुनने वालों को और हमारे फोन करने वाले श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया रेडियो का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
3: अरे, हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: कहाँ चलती है, इधर तो
8: इधर आइए, इधर
9: इधर।
8: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी।

0: पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा।
6: अंतराल से पूर्व श्रोता सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के इस समय स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात UAE पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी

0: ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम पराग में सुनिए कहानी रेंगता सच। कहानीकार हैं पूनम सिन्हा श्रेयसी।
3: रेंगता सच। उसने स्वयं को देखा। उसका शरीर छिपकली में तब्दील हो चुका था। वह हैरानी के साथ दीवार पर रेंगते हुए ऊपर चढ़ने लगा। वह समझ नहीं सका कि आखिर उसका इंसानी शरीर छिपकली में कैसे बदल गया। खैर कोई बात नहीं, उसका मस्तिष्क तो अब भी इंसान की तरह काम कर रहा है ना। छिपकली बनने से पहले वह पंकज के नाम से जाना जाता था। पंकज यानी कीचड़ में खिला कमल। अपने नाम के अर्थ को सिद्ध करता कमाऊ विभाग का किरानी होने के बावजूद उसके सहकर्मी उसके नाम को लेकर उसकी ईमानदारी की कस्में खाया करते थे। वह कुछ दिन पहले ही अपने इस एक छोटे

फ्लॉट के अधभने मकान में अपनी पत्नी संतुष्टि और बेटे संस्कार के साथ रहने आया था। उसी मोहल्ले के 10 घर आगे एक शानदार मकान प्रेम निवास है। इस आलीशान मकान पर सबकी नजरें अनायास ही ठहर जाती थीं। वह इस मोहल्ले का सबसे सुंदर मकान जो था। ऐसा नहीं था कि पंकज को अपनी लहू में बहती ईमानदारी हमेशा भाती ही हो। कभी कभी उसके भीतर की बेईमानी के कीड़े कुलबुलाने लगते थे, लेकिन ईमानदारी के

इस झंझट को मोल लेता। ईमानदार बने रहने में ही भलाई है, घर में शांति तो कायम है। बस इसी तरह उसकी गृहस्थी की गाड़ी ठुकुर ठुकुर चल रही थी। उसे अपने इकलौते मेधावी बेटे पर पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन बड़ा अधिकारी बनकर वह इस अधवने मकान को प्रेम निवास की तरह आलिशान बना लेगा। इस मोहल्ले में उसका परिवार पहली बार होली का त्योहार मना रहा था। मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ रंग खेलने वह भी प्रेम निवास में दाखिल हुआ। प्रेम निवास के अहाते में किनारे तरह तरह के फूल खिले हुए थे। एक खुला बरामदा जिसमें गमलों की कतारों में रंग बिरंगे गुलाब और क्रोटन के कई वैरायटी के पौधे लगे हुए थे। खुरदरी खूबसूरत टाइल्स जमीन पर बिछी हुई थी, जिसके अंत में गाड़ियों को रखने के लिए दो गैराज बने हुए थे और एक कमरा बना हुआ था। शायद इसे ड्राइवर के रहने के लिए बनाया गया था। उसके कमरे के सामने थोड़ी सी जमीन को किचन गार्डन का रूप दिया गया था। मकान में दाखिल होने के लिए एक लोहे का बना खूबसूरत दरवाजा था। घंटी बजाने पर थोड़ी देर बाद नौकर ने दरवाजा खोला। गृह स्वामी मिस्टर रमेश सक्सेना को भी बाहर आने में थोड़ा वक्त लगा। सबने सोचा बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी की बड़ी बात होती है, ऐसे ही तुरंत कैसे किसी से मिलने के लिए भागे चले आएंगे। ऊपर से सीढ़ियां तय करते हुए वे नीचे आए और सबको होली की शुभकामनाएं दी। बाहर ही सबने एक दूसरे को रंग लगाया। थोड़ी देर बाद वे लोग उन लोगों को अपने मकान के नीचे फ्लोर पर बने ड्राइंग रूम में बिठाकर चले गए। वे लोग सकुचाते हुए कमरे में बेत से बने सुंदर सोफा सेट पर बैठ गए। बेत के अंडाकार टेबल जिस पर शीशा लगा था, घर का नौकर पुआ दही बड़ा गुजिया नमकीन और ठंडई रख गया। नौकर ने कहा, आप लोग नाश्ता करें, साहब जी आ रहे हैं। वे लोग जब खा पी चुके तो गिरी स्वामी ने अपना दर्शन देकर सबको विदा किया। पंकज का मन उसी होली के दिन से प्रेम निवास के इर्द गिर्द भटकने लगा था। कौन कौन इसमें रहते हैं, वे क्या कर रहे हैं, उसकी नजरें अक्सर उन्हें टटोलती रहती थीं। दिनों दिन उसकी इच्छा बलवती होती जा रही थी कि वह उस मकान के अंदरूनी हिस्से के चप्पे चप्पे को देखे, उस घर की गृह स्वामिनी को नजदीक से देखे। वह चाहता था कि उसकी पत्नी संतुष्टि उससे मेलजोल रखे। कितनी बार उसे इशारों इशारों में कहा भी था, लेकिन उसके कानों में जू तक नहीं रहगी थी। उसे तो घर के काम धाम से फुर्सत नहीं मिलती थी। इतने दिनों से प्रेम निवास में रहने वाले परिवार के बारे में केवल इतना जान पाया था कि इस मकान में एक नवयुवक जो शायद उनका बेटा हो, नवयुवती शायद बेटी, और पति पत्नी के अलावा एक बूढ़े बीमार व्यक्ति रहा करते हैं, शायद वो उनके पिता हों। एक नर्स सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बूढ़े पिता की देखभाल के लिए रखी गई थी। उस परिवार के घर के काम करने के लिए एक नौकर सौ परिवार वहीं रहता है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जान पाया था। आज पंकज एक घर की दीवार पर छिपकली बनकर रेंग रहा है। ये किसका घर है? घर तो जाना पहचाना लग रहा है, कहीं प्रेम। उसने रेंगते हुए घर के बाहर गेट के पिलर पर लिखे नाम को पढ़ा, प्रेम निवास। उसका अनुमान सही निकला। उस घर के अंदर जाने के लिए उसे छिपकली बनना भी मंजूर है। उसे इसकी खुशी हुई। वह सीढ़ी के रेलिंग के सहारे ऊपरी मंजिल पर जा पहुंचा। वहां एक बड़ा सा हॉल था। उसके दोनों किनारे पर एक एक सोफा बिछा था। उसके आगे एक 8-सीटर डाइनिंग टेबल का सेट था। उसके पास एक बड़ा सा ओपन किचन था। उसकी दाईं ओर एक बड़ा सा बेहद खूबसूरत ड्राइंग रूम था। दीवार पर चिपका हुआ बड़े मनोयोग से सब कुछ देख रहा था। हॉल के सबसे अंत में एक कमरा, बाथरूम और बालकनी नौकर के परिवार के लिए था। हॉल के सामने एक कमरा था जो कसरत के लिए था। हॉल के दूसरी तरफ दूसरा कमरा, मास्टर बेडरूम, गृह स्वामी का था। और हाँ, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते ही बूढ़े पिता का कमरा था। गेस्ट रूम नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में एक और ड्राइंग रूम के साथ लगा हुआ था। घर की साज सज्जा देखते बनती थी। महंगे शोपीस तांबे की बनी एक सिपाही की बड़ी सी भारी मूर्ति खड़ी थी। एक एक चीज को बहुत करीने से सजाया गया था। उसने गृह स्वामिनी को बहुत करीब से देखा। वह जवान बच्चों की माँ नहीं, बहन लग रही थी। माँ बेटी के पहनावे में भी कोई फर्क न था। काश वह उससे कुछ बातें कर पाता। गृह स्वामिनी का नाम सपना है। सपना उसकी स्वप्न परी। कंधे तक लहराते हुए काले घने सिल्की बाल, गेहुआ रंग, बेदाग चेहरे पर दुधिया हंसी, उसकी शरबती आंखें और शहद घुली उसकी जुबां,

क्या कहने, उसे देखकर लगा उसके तप्त हृदय पर सावन की पहली फुहार पड़ रही हो। उससे निकला सोंधापन उसके तन मन को तृप्त कर रहा है। प्रेम निवास की दीवार पर छिपकली बनकर रेंगने के सुखद एहसास से वह रोमांचित हो उठा। वह रेंगते रेंगते उसके बेडरूम में पहुंच गया। इसी कमरे में वह अपने रहने की तलाश में इधर उधर देखने लगा। इस कमरे का कोना कोना साफ सुथरा था। ताजे फूलों के गुच्छे गुलदस्ते में सजे थे। उसकी भीनी भीनी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। यहाँ उसे छुपकर रहना पड़ेगा, यदि किसी की नजर पड़ गई तो उसकी शामत नहीं। बेडरूम की एक दीवार पर एक बड़ी फैमिली फोटो टंगी थी। वह उसी के पीछे दीवार से चिपक गया। वह जानना चाहता था कि प्रेम निवास में वाकई प्रेम का निवास है या नहीं। स्वप्न कक्ष में सपना की रस भरी मधुर वाणी और उसके अंग प्रत्यंग की सुंदर भंगिमाओं को वह करीब से देखने का मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। वह मदहोशी के आलम में ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसे अपना छिपकली बनना अखर गया। काश अभी वह इंसानी रूप में होता। उसने देखा रात के इस पहर में सपना नींद से बोझिल अपने कमरे में आकर नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट गई। उसके मनमरी बदन की झिलमिलाहट से उसका तन बदन झंकृत हो उठा। थोड़ी ही देर में गृहस्वामी भी सपना के पास आकर लेट गया था। उसने बेड के पास लगा स्विच ऑफ कर दिया। कमरे में खूब अंधेरा छा गया। सुबह सपना मुंह धोने और नहाने के लिए वॉशरूम गई। रमेश भी मॉर्निंग वॉकिंग के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। वह सपना के वॉशरूम से निकलने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसके भीगे बदन और भीगे बाल, उफ यह था। वह एक तक उसी को देख रहा था, तभी सपना का मोबाइल बज उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ हो डियर? आज दोपहर इन्हें 10 दिनों के लिए बिजनेस के काम से शहर से बाहर जाना है। मैं? नहीं नहीं, वे अकेले ही जा रहे हैं। नहीं, आज संभव नहीं, कल मिलती हूँ। हाँ भाई, हाँ, वही जहाँ हम अक्सर मिला करते हैं। ठीक है, मैं समय पे पहुँच जाऊंगी। हाँ, मैं जानती हूँ, वही तुम्हारी पसंद की नीली ड्रेस जिसे तुमने मुझे प्रेजेंट किया था। अच्छा बाबा, उसी को पहन कर आऊंगी। अच्छा चलो, बहुत काम है अभी। ओके बाय। पंकज समझ गया कि प्रेम निवास का प्रेम किसी और की झील में तैर रहा है। बेचारा रमेश, अब उसे कमरे में सपना की गुनगुनाहट से चिढ़ सी होने लगी थी। बेवफा सपना, उसे अपनी संतुष्टि की याद आ गई। उससे मिलने के लिए वह तड़प उठा। यदि अभी इस हाल में उसे देख भी ले तो क्या वो उसे पहचान पाएगी? नहीं ना, वह मन महसूस कर रह गया। सपना तैयार होकर बेडरूम से बाहर आ गई। मेट का परिवार साफ सफाई में लगा हुआ था। मेट किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसने मेट से कहा, कमली आज 11 बजे मैं पार्लर जाऊंगी, शाम तक वापस आऊंगी। नाश्ता करके सपना पार्लर के लिए निकल गई। वह रेंगते रेंगते हॉल में आ गया। एक बड़े फूलदान को पकड़े वहीं से सब नजारा देख रहा था। मेड एक ग्लास दूध चुपके से अपने पति को थमा आई थी। दूध के बड़े डेगची में थोड़ा पानी मिला दिया था। वाह जी वाह, तो यहाँ यह सब चल रहा है। नाश्ता करके सब अपने अपने कमरे में टीवी या लैपटॉप या मोबाइल में व्यस्त हो गए। इन्हें कौन देखने वाला था? पूरे परिवार में मेट का परिवार का राज था। पंकज की इच्छा हुई, चलो देखें इस घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या हाल है। वह रेंगते रेंगते उस वृद्ध के कमरे में पहुंच गया। यहाँ उसकी दिवंगत पत्नी के बड़े से फोटो के पीछे दीवार से चिपक गया। नर्स आ चुकी थी। वह न जाने क्या क्या किसी से हंस हंस कर लगातार बातें कर रही थी। उस बूढ़े ने कितनी बार उससे कुछ कहना चाहा, मगर वह तो अपनी ही धुन में बतियाने में लगी हुई थी। शायद उनको वॉशरूम जाना था। नर्स की इस अनदेखी से उसे बहुत गुस्सा आया। एक छिपकली के रूप में वह कर भी क्या सकता था। थोड़ी देर बाद जब नर्स उसके सामने आई तो उसने देखा कि बिस्तर गीला हो चुका था। नर्स गुस्से में बड़बड़ा रही थी, तंग आ चुकी हूँ इस बूढ़े से, वॉशरूम जाना था तो बता नहीं सकता था। दिन भर में एक बार भी इस घर का कोई भी सदस्य उनको देखने के लिए कमरे में नहीं आया। हाय रे बुढ़ापा, सोने की छड़ी भी सहारा नहीं देती। कमरे में दुर्गंध फैलती जा रही थी। नर्स कमरे से लगे बालकनी में हवा खाते हुए फिर से मोबाइल पर बातें करने में व्यस्त हो गई। अब हेलेना की प्रकाष्ठा देखकर वह विचलित हो उठा। उसे याद आया जब उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर से गिरने पर कमर की हड्डी टूट गई थी तो उसकी संतुष्टि ने कितने प्रेम भाव से माँ की सेवा की थी। उन्हें नहलाना, कपड़े पहनाना, बाल झाड़ना और तो और उनके दैनिक क्रियाकर्म को भी स्वयं बिना घृणा किए निपटाती थी। संस्कार बेटा भी अपनी दादी को कितना सम्मान और स्नेह दिया करता है।
स्नेहिल वातावरण में वह जल्दी स्वस्थ हो गई थी। डॉक्टर ने भी उनके लिए हैरानी

0: जताई थी। वाह, आपकी माँ तो बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो गई। इस मकान के सभी कमरे ताजे गुलाब से महक रहे थे, बस यही एक कमरा था जिसमें बदबू का वास था। यूरिन से पैन भर चुका था, लेकिन उसे उठाकर साफ करके रखने की फुर्सत किसे थी? जब अपनों को अपनों की चिंता नहीं, तो पराये को कैसे दोष दिया जा सकता है? उसे उस कमरे में रुकना असह्य लग रहा था। वह सबसे छुपता हुआ गृह स्वामी के बेटे के कमरे की दीवार पर रेंगने लगा। कमरे में जीरो पावर के बल्ब जल रहे थे। दिन निकलने के बावजूद सभी खिड़कियां बंद थी और एसी चालू था। इस मौसम में एसी, उसे हैरानी हुई। कंफर्टर ओढ़े लड़का मोबाइल पर नजरे गराया हुआ था। क्या वह पढ़ाई कर रहा था? उसने स्वयं से प्रश्न किया। थोड़ी देर में लड़के ने उठकर कमरे का टीवी ऑन कर दिया। कागज की पुड़िए में रखे किसी चीज को नाक से सूंघते हुए, ये क्या देख रहा है? तो ये बात है, उसे लगा उसे तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। तो साहब जादे इतनी कम उम्र में ये सब शौक पाल बैठे हैं? सच ही तो है, इनके माता पिता को इनके लिए वक्त कहाँ है? इनकी सुख सुविधाओं के लिए एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन्हें दे दिया गया है। जब चाहे, जो चाहे, जितना चाहे इससे खरीद सकते हैं। उसे अपने बेटे संस्कार का ख्याल आया। उसने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की थी। कितना संतोषी स्वभाव का है। वह तो पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना चाहता है। इसके लिए रात दिन जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। उसे अपने बेटे पे गर्व हुआ। पंकज को उत्सुकता हुई कि चलो देखे इस घर की बेटी के कैसे लक्षण है। वह रेंगते रेंगते उसके कमरे में पहुंच गया। वह मोबाइल के सामने अपना रील बनाने में मशगूल थी। उसकी भंगिमाएं कहीं से भी शोभनीय नहीं लगी। वह सोचने लगा, यह कैसी पीढ़ी है? क्या है इनका भविष्य? देश के इन कर्णधारों से किसी का कोई भला हो सकता है क्या? अमीरी के नशे में धुत इन गुमराह युवाओं को कौन राह दिखलाएगा? यहाँ तो चाहे जैसे भी हो, गृह स्वामी पैसे कमाने में व्यस्त है और उनका परिवार उसे उड़ाने में व्यस्त है। प्रेम निवास में प्रेम के घोर अभाव को देखकर दीवार से उसकी पकड़ अनायास ही छूट गई। वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसकी पूछ कटकर बगल में छटपटा रही थी। उसके इंसानी शरीर के गले से अजीब सी आवाज निकल रही थी। पापा, पापा, क्या हुआ आपको? संस्कार ने घबरा के पूछा। उसने नजरे दौड़ाई। संतुष्टि सामने चाय का प्याला लिए खड़ी थी।
1: रेंगता सच, अभी आप सुन रहे थे ये कहानी। कहानीकार थी पूनम सिन्हा श्रेयसी। कार्यक्रम पराग संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है और अब लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in।

0: नया भारत नया आकाशवाणी।
1: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभवाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत नया आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: अंतराल से पूर्व श्रोता सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है और अब आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे।
8: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ, बचपन हो

फिल्म अधिकार से ये नगमा था, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आपने सुना। रमेश पंत के बोलों को आर डी बर्मन ने संगीत से संवारा और अब आशा भोसले और आनंद कुमार को सुनवा रहे हैं। फिल्म कस्मे वादे में गुलशन बाबरा के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत।

कस्मे वादे फिल्म में भी आपने आशा भोसले और आनंद कुमार को सुना। गुलशन बाबरा के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में अगला नगमा हम सुन रहे हैं, जिसे लिया है फिल्म सनी से। आनंद बख्शी की बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत और आवाज दी है आनंद कुमार, सुरेश वाडिकर और साथियों ने।

फिल्म सनी का ये नगमा आनंद कुमार और सुरेश वाडेकर के स्वर में था, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत, और अब मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले के युगल स्वर में ये नगमा हम सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म हम किसी से कम नहीं से। मजरू के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे प्रादेशिक एकांश समाचार प्रसारित होंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 3.14 रुपये जबकि डीजल की कीमतों में 3.11 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब पेट्रोल की कीमत पटना में 108.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 94.65 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ सीएनजी के दामों में भी 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण की अपील का बिहार में असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने सरकारी आवास से सचिवालय तक

0: पैदल पहुंचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल अपने कार्यालय पहुंचे। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा की सवारी कर अपने कार्यालय पहुंचे। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों ने भी कार्यालय पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया। इधर खगड़िया के जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। गयाजी स्टेशन परिसर में आरपीएफ के जवानों ने गाड़ियों की जगह साइकिल से गश्ती की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, वैशाली और समस्तीपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र और जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए आज से सिलेक्शन ट्रायल्स शुरू हो गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि ट्रायल 22 मई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में दाखिले के लिए 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के, जबकि जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। गोपालगंज की एमपी एमएलए अदालत ने जदयू विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की है। एग्री स्टैक योजना के तहत फार्मर आईडी बनाने में सुस्ती बरतने के आरोप में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने फेनहारा, पिपरा, कोठी और बनकटवा के प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। सुपौल जिले के चदिया थाना से पुलिस ने 1 किलो 440 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले में रसोई गैस वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में 4 गैस एजेंसियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सहरसा जिले के कासनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। भोजपुर जिले के महुली गंगा घाट पर धार्मिक अनुष्ठान के दौरान गंगा जी में 2 सगे भाई डूब गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। एक लापता की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے آج نئی دہلی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ امتحان میں شامل ہونے والے طلباء کو 14 جون تک ایڈمٹ کارڈ فراہم کرا دیے جائیں گے۔ جناب پردھان نے کہا کہ فی الحال او ایم آر موڈ میں منعقد ہونے والا نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے کمپیوٹر پر مبنی یعنی سی بی ٹی کے توسط سے ہوگا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ این ٹی اے میں ٹھوس اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی طرح کی بےضابطگیوں کو روکنے کے لیے امتحان کے نظام کو بہتر کرنے سے متعلق اقدامات کیے جائیں گے۔ ایندھن کے عالمی بحران کے بیچ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پورے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں فی لیٹر 3.14 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں 3.11 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔

नई शरहें आज से नाफिज हो गई हैं। अब पेट्रोल की कीमत पटना में 108 रुपये 67 पैसे फी लीटर हो गई है, वहीं डीजल की कीमत 94 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपये फी किलो का इजाफा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तवानाई तहफ्फुज़ की अपील का बिहार में असर नज़र आने लगा है। वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी आज अपनी सरकारी रहायशगाह से सेक्रेटेरिएट तक पैदल पहुंचे। पंचायती राज के वजीर दीपक प्रकाश

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब रोजगार सूचना सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुल 1230 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 31 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpsc.bihar.gov.in।

0: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता अपराध बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जून 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpsc.bihar.gov.in। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेडमैन के 9,175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि है 19 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता है www.crpf.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
4: मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
5: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए।

0: हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
0: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते हैं NTA ने थोड़ी टेक्निक

0: पति क्या है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
0: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान

0: नवजीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत। नमस्कार, राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पड़ जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें,

0: तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए?
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
0: जी, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियां जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो बिमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
0: जी, देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
0: जैसे पंचतंत्र की कहानियां या कुछ और कहानियां, कहानियां भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ, श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
0: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें, तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें।
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
0: जैसे प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी, विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: जैसे कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो

0: बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
1: धातु और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां धातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं धातु का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर धातु अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। धातु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। धातु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं।
0: अब सो जाओ।
1: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने धातु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम धातु और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे।

0: जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
0: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहार।
5: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
7: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल
3: सत्रे का।
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
4: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
6: वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। although he wasn't very big, he was strong. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
3: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
6: On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands, they raced hand in hand. But nobody took Hari's hand. Nobody went near him.
3: Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him.
7: Good morning. I am so pleased to meet a boy like you.
3: Hari turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled.
7: Ah, here is my good cousin,
3: said the crab pleasantly. And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool.

लड़कियों भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना?

0: अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक भरा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3 अगस्त बच्चे हैं वो अपने चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, आने को आप अकेले पड़ जाओगे, तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल। मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा सब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: बताइए, कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी, मेरा नाम वर्षा धगट है। जी, मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और सच
1: ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खास तौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
0: जी, बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करें।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़
0: से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउस वाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर तुझे संग प्रीत लगाई
0: करें। बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी,
1: उन्हीं के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी,
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी, बहुत।
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती।
0: मेस चलाती हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो है उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते कभी कम ज्यादा हो जाता है।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने को तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत से फल मिलता ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश,
1: गाने सुनते हो? तो रहता रेडियो है, दिन भर
0: रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई। राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करें अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
1: अच्छा लगे, देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, क्या
1: नमस्ते। मेरा
0: नाम है आपका?
1: नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत से आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसे लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती है आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम खाली।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती है आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने।

0: वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है, घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप कभी, खुद की खुशी का काम करती है आप, यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चों का करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है,
1: खेत में जाना पड़ता
0: है। खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हैप्पी से बोल रहे हैं।
1: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
0: हम हाउसवाइफ है और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो साहिल है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं, हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है
1: जी। बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: हम चाहे सिलाई उलाई भी करते हैं।
1: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
0: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं कि ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
0: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
1: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
0: खुशी मिलते हैं हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
0: विविध भारती सुनते हैं जी?
1: जी। और आपने पसंद
0: से छटपटा रहे थे जी, कम 2 महीना पूरा होगा।
1: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए,
1: हाँ।
0: अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, पास तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: अनकराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ। मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ। मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ।

0: चार महीने बाद मेरा फोन लगा है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें।
0: जी,
1: और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती है, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
0: जी, मेरा 57 एज है दीदी।
1: अच्छा,
0: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते में 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
1: क्या बात,
0: सारी सेंटर में, सिटी सारी सेंटर में।
1: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
0: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल खोया है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
1: जी।
0: 11:30 तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अरे आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं।
0: हाँ,
1: प्यारे प्यारे गीत सुन,
0: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकिया का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
1: क्या बात,
0: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
0: जरूरी है, बराबर है
1: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
0: दीदी, बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का लाना।

0: अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867028 2867028 2867028 2। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तो गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश

के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थीं आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका। सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे

से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंठ यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो

खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब

तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा UPI पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज गए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। अभी आपके साथ मैं हूं जया। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हम आपके साथ रहेंगे। अपनी सभा में हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कार्यक्रम का आगाज करेंगे युववाणी से। आज इस कार्यक्रम में सुनिए मेरी पसंद। यह कार्यक्रम आपकी पसंद पर आधारित है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो फ्रेंड समरीन के साथ अपना फेवरेट शो युववाणी। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी जगह है, मजा आता है, लेकिन आज भी मैं अपना स्कूल मिस करती हूँ। स्कूल की बात ही कुछ और होती है। मैंने अपने स्कूल में बहुत मजे किए हैं, कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ खाना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कैरम जैसे खेल में पार्टिसिपेट करना और स्कूल की तरफ से सारे कॉम्पिटिशन्स में जाना। वैसे स्कूल में सभी की अपनी एक फेवरेट जगह होती है, मेरे और मेरे दोस्तों की थी लाइब्रेरी के पास की सीढ़ियाँ। खैर जो भी है, मुझे और आपको अपने स्कूल का हर कोना याद आता है। जब मैं स्कूल में थी तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स और टीचर्स थे जो मुझे नहीं पसंद, तो हम उनके क्लास में बहुत बदमाशियां करते थे। मैं बैक बेंचर थी, हमें डांट पड़ती थी और फिर क्लास से निकाल दिया जाता था। हम सब क्लास के बाहर आके खूब हंसते थे और चॉकलेट खाते थे जो हम छुपा के लाते थे। वैसे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स और टीचर्स भी थे जिनकी क्लास में हम बिल्कुल शांत रह के पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ। वैसे मेरे बैक बेंचर होने का किस्सा भी बहुत फनी है। जब स्कूल का नया साल स्टार्ट होता था तो मैं फर्स्ट बेंच पर बैठती थी कुछ महीनों तक। टीचर्स को दिखा दिया कि मैं पढ़ाकू हूँ, फिर धीरे धीरे लास्ट बेंच पर चली जाती थी। घर पे पढ़ाई करके नंबर भी ठीक ठाक ले आई, तो घर पे और स्कूल में कभी दिक्कत नहीं आई। स्कूल की पूरी लाइफ ऐसे ही कटी। आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए सुनते हैं हिंदी मीडियम फिल्म से ये गाना, एक जिंदड़ी, तनिषा सांघवी की आवाज में।

tum ta, ta dum da tum da ta tum ta. Ta dum da tum da ta tum ta.

वैसे क्या आप मानते हैं कि स्कूल में दिन का सबसे ज्यादा अच्छा टाइम होता था लंच ब्रेक? जब छोटे थे तो लंच ब्रेक का मतलब था खेलना कूदना, फिर थोड़े बड़े हुए तो लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ लंच शेयर करके खाने लगे और बातचीत करते थे। फिर कैंटीन से प्यार हो गया, कैंटीन में बहुत सारी चीजें मिलती थी लेकिन मेरे फेवरेट थे समोसे। मैं और मेरे दोस्त वो रोज खाते थे। मुझे घर से लंच ले जाना पसंद नहीं था लेकिन मम्मी जबरदस्ती दे दिया करती थी। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे दोस्तों को मेरा लंच अच्छा लगता था। मम्मी को कभी पता नहीं चला कि वो रोज लंच मेरे दोस्तों के लिए दिया करती थी। स्कूल में हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बदमाश, कुछ शरीफ, कुछ रोतलू, कुछ पढ़ाकू, कुछ नखरीले। आई एम श्योर इन सभी कैटेगरीज में आपको एक ना एक नाम जरूर याद आया होगा।

और मेरा मानना है कि अगर इनमें से कोई एक भी ना होता तो स्कूल अधूरा लगता। इन सबको मिलाकर बनता था एक परफेक्ट क्लास। आइए अगला गाना सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज में, तारे जमी पर फिल्म से।

स्कूल की बेस्ट बात पता है क्या होती थी? कि उस टाइम हम सिर्फ मजे पे फोकस करते थे, कोई टेंशन और प्रेशर ही नहीं। हाँ, एग्जाम से पहले पढ़ लो, लेकिन अदरवाइज सबसे मुश्किल चॉइस तो यही होती थी कि आज क्या खेलें, आज क्या खाएं, आज कौन सा झूला झूलें या आज कौन से ग्राउंड में लंच करें। स्कूल के दोस्त हमें बहुत प्यारे होते हैं, वो आज भी कहीं दिख जाएं तो उनके साथ बिताए आपको वो सारे दिन याद आ जाते हैं। स्कूल में दोस्त बनाते वक्त हम उनकी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, दोस्ती सब चीजों के ऊपर हुआ करती थी। इन्हीं सारी बातों की वजह से हम आज भी अपना स्कूल भूल नहीं सकते, चाहे हम किसी भी उम्र के क्यों ना हो जाएं। स्कूल के कुछ स्पेशल दिन हम कभी नहीं भूल सकते, जैसे कि टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, उसमें आइसक्रीम और लड्डू मिलना, टीचर्स डे पे सारे बच्चों का पैसा मिलाकर केक लाना। वैसे सोचा जाए तो स्कूल के हर दिन स्पेशल थे और हर स्कूल में कुछ चीजें मस्ट थीं। इंग्लिश मैम का सुंदर होना, पीटी सर का उनको पसंद करना, साइंस टीचर का हुस्वर होना और कुछ टीचर्स का फ्रेंडली होना। वैसे स्कूल की कुछ चीजों को मैं आज भी नहीं समझ पाई कि क्यों हम कंप्यूटर लैब में जूते उतार कर जाते थे, क्यों हमारे फ्री पीरियड में मैथ्स और साइंस के टीचर आके हम बच्चों पर अत्याचार करने लगते थे, क्यों लंच ब्रेक इतना छोटा हुआ करता था, क्यों क्लास खत्म होने के बाद भी कुछ टीचर्स पढ़ाते रहते थे। शायद इन सवालों का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। खैर, आइए सुनते हैं अगला गाना, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से उदित नारायण की आवाज में, यहाँ के हम सिकंदर।

खत्म हो गया है तो महसूस हो रहा है कि जिंदगी का असली प्रेशर स्कूल से निकलने के बाद का है। अब हम करियर को लेकर टेंशन लेंगे। अच्छा, वैसे अभी कोविड के दौरान हमने अपने घर के छोटों को देखा वीडियो कॉल पर पढ़ाई करते। मैंने अपने कुछ कजिन्स को देखा क्लास 1 और 2 घर पर बिताते। उन्होंने स्कूल का मजा ही नहीं चखा। उन्होंने पढ़ना तो सीख लिया लेकिन स्कूल जाकर पढ़ना और दोस्तों के साथ मजा करना क्या होता है उनको नहीं पता। मैंने उनको समझाने की काफी कोशिश की कि स्कूल आकर कैसा होता है, लेकिन वो अब आकर समझे हैं कि स्कूल कितना अमेजिंग होता है। खैर, चलिए अब वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे आपके फेवरेट शो में। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। और आइए शो को खत्म करते हैं जागृति फिल्म के प्यारे से गाने से, मोहम्मद।

को कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने सींचा, रखा है ये

कार्यक्रम युवाणी हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अब आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती सुनने वाला हमारे सभन सुननिहार लोगिन की राहुल विनीता के प्रेम भरा नमस्कार। आज एक बार फिर से हम आगिल बनी राहुल यह अपन मन पसंद कार्यक्रम आरती के लेके और आज के कार्यक्रम में नीवन जानकारी भरल बात के जोर ही सुनवाई रोवा सभी के एगो नीक कविता पाठ जनमेजय ओझा जी से। आ इस सभन के बीच में आज शुक्रवार के विशेष दिन में सुनम सभी फिल्मी संगीत। तो चलिए अब आपन यह कार्यक्रम के आगे बढ़ाई आ बात करी आज के विशेष दिवस पर। देखिए आज तारीख है 15 मई और आजू के दिन पूरा दुनिया अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहा है। परिवार ये खाली एगो शब्द ना है बल्लुक यू छाम है जेकरा नीचे कितनो घाम होके देह जुड़ा जाला। जब हमने के थाकल हारल घर लौटिला तब माई के हाथ के वो रोटी या बाबूजी के डांट में छुपल सने भाई बहिन के वो नोक झोंक आह सारा थकान मिट जाला। साच कहीं तो परिवार हमनी के ताकत है हमनी के पहचान है। लेकिन विचारे के बात ई बा कि आजकल के ई भाग दौड़ वाला जिंदगी में मोबाइल और इंटरनेट के हवा ऐसन चलल बा कि हमनी के अपन परिवारे से दूर हो चल जाता नहीं। एक कहीं घर में चार गो लोग चार कोना में बैठ के मोबाइल पर अपन अंगुरी फेरावे में लागल बा। एकर परिणाम हमने सभे देखते बनी कि कौना तरह से कमे उम्र में लोग इन तनाव अवसाद ग्रस्त हो चल जाता रे। इतने ना यहाँ तक कि वो अपना आप के नुकसान तक पहुंचा देता रे। इहे सब के देखते हुए हर बरिस ए दिवस के मनावल जाला जेकर खास उद्देश्य इहे हा कि लोग अपन परिवार के महात्म के समझ सकस, परिवार के सुख दुख में साथ रह सकस, अपन मन के बात कह सकस। आ अब की बरिस संयुक्त राष्ट्र यह दिवस के थीम परिवार असमानता आ लयिका के कल्याण रखले बा। जेकर मतलब साफ बा जब तक परिवार मजबूत ना होई तब तक हमने इनके लयिके के भविष्य आ समाज सुंदर ना बन पाई। तो हमार रुआ सभी से दसो नोह जोड़ के इन्हें हो रहा बा कि आपन घर गईला के बाद मोबाइल फोन में समय मत गवाई। बलुक बाबूजी के गोड़ दवाई आ माई के पास बैठ के दुगो बात सुनी काहे कि दुनिया में सभी चीज भेट आ जाए बाकी परिवार आ ओकर प्यार दोबारा ना भेटाए। तो चली बात के साथे साथे राउर मन लगावे खातिर एगो फिल्मी संगीत भी हम सुना दी रुआ सभी के। तो आई सुनल जाओ इस संगीत फिल्म भौजी से।

बहुत निमन मोहम्मद रफी जी के आवाज में ये संगीत लागल है। आगे भी हम जरूर रवा सभी के ऐसने निमन संगीत सुनवाए। लेकिन यही के साथ ही गो और बात कहल चाहम कि आज के हड़बड़ी वाला जिंदगी में हमने सभे फ्लैट वाला दुनिया में सिमट के रह गई बनी रहा। मियाँ बीवी या बच्चा, बाकी जे मजा दादा दादी चाचा चाची भाई भतीजा के जौरे एक ही छत के नीचे एक ही चूल्हा के बनल रोटी खाए में भेंटात रहे, वो बंद फ्लैट में कहा। आज एकल परिवार के जुग चलता, लेकिन संयुक्त परिवार के बहुते फायदा रहे। लड़का बच्चन के संस्कार, दुख सुख के बंटवारा, काम के बोझ ना, बड़ बुजुर्ग के साया, इस सभे भेटा जात रहे। ओह घरी ये बुझाते ना रहे कि आपन माई के है आ चाची के है, सभे के उसे एक ही ऐसा दुलार मिलत रहे। बाट सूट के सभी केहू काम कर लेते रहे, कतनो आदमी के भीड़ पड़ल रहो लेकिन काम ना बुझात रहे। काहे कि आपस में एक तरीका से काम के बंटवारा होते रहे कि लागते ना रहे कि के बेसी काम कैलका के कम, आ केहू के से तकलीफ भी ना होत रहे। कोनो दुख होके सुख होके बाहर वाला के जरूरत भी ना पड़त रहे, घर ही में लोग अपन दुख सुख बांट लेत रहे। बड़ बुजुर्ग से कोनो तरह के राय मशवरा करे के होके तो उनकर तजुर्बा के लोग ज्ञान ले लेते रहे, उनका भीरी जात रहे, उनका भीरी बैठत रहे, कोनो समस्या के बोलत रहे, पट से ओकर समाधान दे देत रहे। लेकिन आज खाली अंगने में दीवार ना बल्कि रिश्तों में दरार आ जाता, जेकर नतीजा साफ दिखाई देता कि मुसीबत के घड़ी में कोनो तरह से लोग अकेले कमजोर पड़ जाते रहे। ऐसे अबहुओं से चेती सभी आपन लैकन के संयुक्त परिवार के महात्म के समझाएं, कौना तरह से दादा दादी भी घर में कौन तरीके के रौनक बढ़ावले, कैसे दादा दादी भी बैठ के लैकन कुछ नीक नीक बात सीख सकेला। जरूरी नहीं है कि किताबीय ज्ञान से सभी कुछ आदमी के समझ में आ जाओ, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान आ ई ज्ञान हमेशा से तजुर्बाकार आदमी ही दे सकेला। आओ खाती बहुत जरूरी बा कि अपन बड़ के पास बैठल जाओ, अपन बुजुर्ग के पास बैठल जाओ, उनकर आशीर्वाद के तौर पे उनकर बात के सुनल जाओ।

0: ओकर बात के समझल जाओ और बात पे चले के कोशिश कइल जाओ। तो ऐसे जरूरी बा कि एकल परिवार में रहते हुए भी संयुक्त परिवार के महात्म के समझल जाओ और संयुक्त परिवार के खाली महात्म के समझ ले ना जाओ बलुक ओकरा के अहमियत भी दे जाओ। तो चली अब यही के लगले हम रवा लोगिन के एगो कविता पाठ सुनवा दही जन्मजय ओझा जी से। तो सुनी सभे ई कविता पाठ।
1: जेठ के लोक कविता के मथेला बा। जेठ के लोक धूप दुपहरिया चलियो।

कभी दुआरा पोया कबो नाव में भोजपुरी बसे मोर गाँव में भोजपुरी बसे मोर गाँव में घूंघट।

हर हर वाही बैल गड़ियो पगावे पूर्वी के तान पो भैंसिया चरावे हर हर वाही बैल गड़ियो

सदियों से बोलिया हमो रे हवाती फगुआ भचैता या साझा पराती। सदियों से बोलिया मोरे हवाती फगुआ भचैता या साझा पराती। देख लोग बदनाम करे खुद सरयाम, देख लोग बदनाम करे खुद सरयाम।

घर के घर भइल मुखालिफ, मंजर ईरखा के मातल, मंजर ईरखा के मातल, अब परिवार।

जोही जोही अगे आज पहिले मंगावे भोजपुरी हो। भृगु जी के धरा धाम भक्ति हो निष्काम क्रांति के समहुता तमाम भोजपुरी हो। तपसी के फूलवारी घाघ के हो खेती बारी

0: नीच ना हनी अति प्रकृति प्रीति धूरी हो मंजर जो फहरत लंगोट कही लौकी तो बुझी हाउ वीर के बथानी भोजपुरी हो।
1: वाह, बहुत नीक इनकरी पूरा कविता संग्रह रहल ह। असभन कविता के अर्थ इतना सुघर लागल ह कि साच पूछी तो अगर ध्यान से सुनल जाओ तो सब एक एक शब्द इनकर एकदम आज के समय से मेल खात रहे। बहुत नीमन आए इतना नीक कविता संग्रह खातिर जन्म जय ओझा जी के बहुत बहुत धन्यवाद बा। आ देखी एही के साथ ही गौरी खास दिन है हमने इनके हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक आज के दिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जयंती है। भोजपुरिया के मिठास घुले आज दिन ऐसन बा कि साहित्य के उस सूरज उगल रहे जो पूरा देश के खड़ी बोली या साहित्य के उज्जर कैले रहे। आधुनिक हिंदी के विधाता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साल 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दौलतपुर गांव में एगो साधारण परिवार में इनकर जन्म भइल। बाकी काम ऐसन कैले कि पूरा एगो काल के नाम द्विवेदी युग रखा गई। आज हमने इन सभी जे हिंदी के अखबार पढ़ी लानु वो द्विवेदी जी के ही देन है। वो खाली अपना ही ना बलुक लिखे के काम सिर्फ खुद तो कैले ही साथे साथे बढ़न बढ़न दिग्गज लेखकन के भी अंगुरी पकड़ के लिखे के सिखवले। द्विवेदी जी हमेशा कहत रहन कि अपन भाषा के सेवा ही देश के असली सेवा। आज उनकर जयंती पर हमने इनके भी अपन मातृभाषा चाहे वो हिंदी हो के चाहे भोजपुरी ओकरा पूरा मान सम्मान देवे के क्रिया खाए के चाहे। उनकर संपादन कैल सरस्वती पत्रिका उ जमाना में हिंदी के कल्प वृक्ष रहे। वो हमेशा कहत रहे कि कौनो महल में ना साहित्य जन्मे बल्कि गाँव के झोपड़ी या खेत खरिहान में भी रहेला। उनकर ई बात हमने इनके भोजपुरी अंचल पर भी एकदम सटीक बैठेला। हमने इनके भोजपुरी साहित्य भी तक खेत खरिहान रोपनी सोहनी या जतसार के गीत से जन्मल बा। तो देखी कुल मिला के कहे के मतलब ये है कि उनकर ई कहनाम के अपन मातृभाषा के सेवा जौन है पूरा मान सम्मान देवे के चाहे। तो हमनियों सभी के आज उनकर जयंती के दिन उनका नमन करते हुए यह बात के कोशिश करे के चाहे कि हमनियों अपन भाषा के मान सम्मान देते हुए आगे बढ़म वह भाषा के आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ देखिए जैसन कि अपन ने कार्यक्रम के दौरान हम कुछ ऐसा बात लेके आईला जैसे भोजपुरिया जनजीवन से जुड़ल उ शब्द चाहे उ बात जे आज के समय में लोग धीरे धीरे भुलाइल चल जाता रहे। आजकल के जो हमने इनके लैकन बारे वो धीरे धीरे भुलाइल चल जाता रहे तो उनका खातिर हम कहल चाहम कि एगो शब्द है भोजपुरी के कोरा। तो कोरा शब्द जौन बा कोरा शब्द जौन बा उस शब्द दो तरह से लेल जाला। एगो गोद आ दूसर कोनो चीज जब आखर होला नु साड़ी उड़ी सुन ले हुकम रुआ सबे कि कोरा साड़ी निकाल के पहने के बा मतलब जे पहले कभी इस्तेमाल में नहीं खाए। तो ये शब्द ऐसने इसने छोट छोट शब्द जो उनके भोजपुरी के लोग धीरे धीरे भुलाइल चल जाता रहे तो हम ऐसने छोट छोट शब्द ऐसने शब्द जेकर महात्म आज भी होते बा हम रोवा सभी गाती आगे भी लेके आए। तो अभी सुनी सभी यह संगीत के

0: बसे मोरा तो हरे में प्राण मोरी रानी हो, तुहे मोरा जिंदगी जहान मोरी रानी हो। बसे मोरा तो हरे में प्राण मोरी रानी हो।
1: बहुत निमन ये फिल्म संगीत रहल हा। आवाज रहे मोहम्मद रफी जी के, असंगीत रहे फिल्म कब हुई है गवनवा हमार से। तो बहुत नीक संगीत, और आज शुक्रवार के दिन ही दो फिल्म संगीत के साथ रोवा सबन के मन मन सावन कहीं नहीं, लेकिन साथ ही साथ जानकारी भरल बात भी बहुत जरूरी हो जाला। तो देखिए गर्मी के मौसम चल रहा बा, जेठ शुरू भ गई बा, आ इस मौसम में जब धूप चल चलाला नो आदमी के काम पड़ेला तो घर से बाहर निकल ही पड़ेला। ओह घड़ी समय कैसनो रहे लेकिन काम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाला। तो देखी काम जरूरी बा, जरूर करी, लेकिन एक साथ ही साथ रुआ अपन ख्याल भी राखी। आ ए घाम में जब भी कभी निकली तो जरूरी बा कि ए बात के ध्यान राखी कि कौना तरह से कौन काम कइल जाओ जेकरा से अपना आप के स्वस्थ और दुरुस्त राखल जाओ। तो सबसे पहले तो हम कहम कि ए खाती जरूरी बा कि पानी के कमी शरीर में मत होके दी, भरपूर पानी पी। प्यास नहीं हो लागल रहे तो दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पी लेवे के चाहिए। बात करनी अगर तरल पदार्थ के तो नारियल पानी बा, छाछ बा, नींबू पानी बा, आज आम के समय बा आम पन्ना बा, सत्तू के सेवन करें। इस सभन से रोवा सभर अपन शरीर में पानी के मात्रा बनल रही। और साथे साथे पेय पदार्थ जोन होला जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, ये सब तरीका के चीज से तनी कम एकरा से परहेज करी, काहे कि ई जोन होला वो शरीर में पानी के कमी के बढ़ा देवेला। खान पान में बदलाव लाई, खाली जीभ के स्वाद पे मत जाई सभे। जीभ के स्वाद कहला कि खूब तलल पाकल चीज खाल जाओ, चटक मटक, जेकरा से मन एकदम हरियर हो जाए। लेकिन यह मन हरियर करे वाला चीज कभी कभी इतना नुकसान दे देला, खासकर ये मौसम में तो बहुत नुकसान पहुंचावेला। ऐसे जरूरी बा कि खान पान में बदलाव लाई, और सबसे बढ़िया जोन पानी वाला फल होला नो वा, ओ जैसे तरबूजा आइल बा भी, खरबूजा के सीजन, खीरा हो गई, ककड़ी हो गई, ए तरह के चीज के खाएं। सुबह सुबह पपीता खाएं।

सबन में पानी की मात्रा ज्यादा होला। हल्का भोजन ली, मिर्च मसालेदार तला हुआ भोजन, इस सबसे पेट के गर्मी बढ़ेला। ऐसे यह सबन चीज के ना ली या ठंडा तासीर की चीज जो होला, दही पुदीना सौंफ के पानी, इस सब पेट के ठंडक प्रदान करेला। सबसे नीमन चीज हम कहम कि बेल के शरबत जरूर पी ही सबे। आ इतना बात बतावत बतावत घड़ी के इशारा देखत नहीं कर रहा बा अब जाए के, तो देखा देखा तो हमारे जाए के बेरा हो गई। तो यह मंगल कामना के साथ है कि रउआ सबन स्वस्थ तंदुरुस्त रही अपन अपन घर परिवार में। हमार मन राउर विनीता के नहीं हो रहा बा कि हमरा के जाए देवल जा। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। खेती गृहस्थी का वक्त होगा 7 बजे और 7:52 पर सुनेंगे सुगम संगीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी @90। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे खेल के प्रचार प्रसार और आकाशवाणी।

शब्द शिल्प यह कार्यक्रम सुनेंगे रात्रि 9:30 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक।

0: श्रोताओं, ये संक्षिप्त जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। इसके अलावा भी आप बहुत सारे कार्यक्रम हमारे साथ सुनेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, ढेर सारे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर उपस्थित हो रहे हैं।
1: हर घर की वाणी, आकाशवाणी, हर दिल की वाणी।

0: आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। श्रोता, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए हम ढेर सारा कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, तो अभी जो वक्त है वो है फिल्म संगीत सुनने का। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सबसे पहले मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म पत्थर के सनम।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौड़वाल की आवाज में फिल्म बड़े घर की बेटी से ये गीत। संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

सुनी जो तेरी पायल, गुवारे मैं तो घायल, जाऊं तो जाऊं कहां।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से मेरे यानी जया के साथ। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और इस गीत के बाद

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखाणां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्। औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानाम् आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों के नाम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस तरह

0: राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन सम्बोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखा ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 28,000 ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतृणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल।

0: नमस्कार चंपा बहन।
1: हाँ नमस्कार अर्चना जी, कहू की हाल चाल।
0: हाँ देखिए कि निम्ने बात सब कुछ और एक घड़ी तो गर्मी जेहन पड़त रहे।
1: हाँ हाँ गर्मी
0: तो अबरी तो बहुत राहत बा।
1: हाँ खत कनी के राहत है मुदा तैयो दिन में एकदम झड़को ले रौदा हो। अच्छा देखो आई 15 मई है। 15 मई के दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाओल जाते है।
0: अच्छा
1: आई दिनक उद्देश्य है परिवार से जुड़ल व्यवस्था प्रति जागरूक बढ़ाए आ समाज में अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या से जुड़ल वही बदलाव के बुझब जे परिवारक जीवन के प्रभावित करते है। हरेक वर्ष 15 मई के संपूर्ण दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनावे की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 1993 में कयने छले थे। एकर उद्देश्य परिवार से जुड़ल समस्या आ समाधानक प्रति लोक के जागरूक करब है। आ जे परिवार के प्रति परिवारक जीवन के प्रभावित करते है, परिवार कोनो समाज के सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानल जाते है। क्या यह बच्चा के पालन पोषण संस्कार आ सामाजिक विकास के पहिन नींव होइत अछि।
0: अब देखी कि परिवार जे कहल गेल बा तो रउआ बतैनी जैसन कि ई समाज के एगो संस्था है और ई ऐसन संस्था बा जे कि परिवार विवाह और रक्त संबंध चाहे गोद लेवे के बंधन से जुड़ल व्यक्ति के एगो समूह बा जे कि एक ही घर बनावे ले और आपन आपन सामाजिक पद के अनुसार एक दूसरा से बातचीत करे ले। आमतौर पर परिवार में माता पिता भाई बहन लेकिन पति पत्नी होखेले। और चंपा बहन हमनी का तो घर परिवार में रही ला जा, सामाजिक प्राणी है जा तो रहबे करी ला जा और समाज के जे भी नियम बा जे भी विरासत बा वो हमनी के परिवार में सीखे के भेटेला। अब परिवार में लैकन अपन विरासत संस्कृति के सीखे ले समाज में कैसे रहे के बा ई कुल हमनी का परिवार से ही सीखी ला जा। अब परिवार के देखी कि पहला पाठशाला केकरो जीवन में पहला पाठशाला जे कहल गेल बा वो परिवार के कहल।
1: देखिए लोग कहै छै जो घर में एको गो बच्चा है छै आ जो पैग लोग होई परिवार के सदस्य ओई बच्चा के समक्ष झगड़े कैलन या कोनो एहन विवादित बात बाज देलन ओई बच्चा पर बहुत बुरा असर पड़े छै।
0: असर के बात कहतनी कि ओ बच्चा
1: ओहि समय शब्द सीख लै छै भले ही ओहि शब्द के अर्थ बुझो अथवा नै बुझो पैग भेला पर ओ वातावरण ओकरा स्मरण रहै छै
0: एकदम। और देखी कि रुआ ई एकदम सही कहनी कि परिवार में हमनी के रही ला जा तो हमनी के जे आचरण कर रहल वानी जा दूसरा के संगे अपना बड़ा बूढ़ के संगे चाहे जे समाज में जे दोस्त महीम बा रिश्तेदारी बा उ कुल लोग के संगे हमनी के जैसन अपन व्यवहार राखब जा उ लैकन उहे व्यवहार सीखे ले। और एमे एकदम मतलब कहे में कोनो एथी नहीं के कि अरवा अगर अपना माय बाप के इज्जत कर रहल वानी तो लैकन भी उहे सीखे ले उहे करे ले। अगर देखिए घर में कि झगड़ा लड़ाई हो रहा बा तो

0: कौन यही व्यवहार
1: वो सब बच्चे से अपना संग दुनिया में लड़ा झगड़ा के प्रवृत्ति उनका में आबि जाए छे।
2: अब
1: देखियो प्रत्येक वर्ष ई दिवस मनावे के कोनो न कोनो थीम होइत छे। अही तरहे अहू बेर यानी कि 2026 के थीम अछि असमानता आ बच्चा के कल्याण राखल गेल अछि।
2: अब देखी सबसे पहले तो हमनी के जे भी बाप माता पिता जे भी बाड़े तो सोचेलन कि हमार लेकिन हमरो से आगे बढ़स, हमरो से बेसी कमाबस, आगे जीवन में उन्नति करस, तो ये सब माय बाप के इच्छा
1: है। लेकिन ओकरा ले बहुत से हन कठोर निर्णय लेबो पड़ै छे परिवार के सदस्य के, ताकि हमार अगला पीढ़ी हमरा से बेसी शिक्षित, हमरा से बेसी अर्निंग व्यक्ति, हमरा से बेसी खुशी आ सुखी ओ रहे। तो अकरा लेल ई नहीं कि एक बेर ओकरा पर वर्षा बरस जेते, ई संस्कार ई मनोवृत्ति ओकरा बच्चे से देल जाय के चाही।
2: अब देखी कि परिवार में कहीं सुख दुख हर चीज परिवार में बांटल जाला, दुखो बात हमनी के मिलजुल के बांटीला जा, तो बुझा लाना कि दुख कैसे पार हो गए। और देखी कि आज जे हमनी के दिवस मना रहल बानी जा, तो ई दिवस मनावे के भी उद्देश्य यही बा कि परिवार रूपी जे संस्था बा ई वैसे ही बनल रहे, एकर जे विरासत हमनी के बा ई बनल रहो, लैकन होको चाहे हमनी के बानी जा जे भी बा, तो ई परिवार के आगे वही तरह से बढ़ावे। और अपना समाज के मूलभूत इकाई परिवार होखेला, अब परिवार के महत्व उजागर करत जा सके यही खातिर ई दिवस मनावल जा रहल बा। माइकल जे फॉक्स कहले बारे कि परिवार कोई मामूली चीज नहीं है, परिवार ही सब कुछ है।
1: सब कुछ परिवार तो, समाज के गठन में अपना योगदान दे सकते
2: हैं। तो हर घर में देखी कि वो जगह होखेला जहाँ आत्मा एक दूसरा से प्यार देखभाल करके सुख दुख संतोष खुश आ ताकत साझा करेला, उहे परिवार होखेला। और परिवार जीवन के आधार स्तंभ ई जिए के प्रेरणा देवेला, परिवार से दुख सुख सब में ताकत भेटेला कि कतनो दुख बा परिवार के साथ बा तो दुख आसानी से कट और परिवार के देखी कि चार गो बुनियादी सामाजिक कार्य बा, जे कि पहला हमने के जे कहब तो इस सामाजिक कार्य है परिवार के बुनियादी सामाजिक कार्य बा, जे कि लैकन के समाज में नैतिक मूल्य आ संस्कार सिखावेला ताकि वो आदर्श नागरिक बन सकस। दोसर जे बा मानव प्रजाति के निरंतरता बनावे खातिर बच्चा के जन्म देवे और उनकर पालन पोषण करेगे। परिवार के सदस्य खातिर भोजन वस्त्र आवास जैसे बुनियादी जरूरत के पूर्ति और धन के प्रबंधन करे के। और अब लैकन बूढ़ बारे के बूढ़ जे बारे उनका बारे में अपन बुनियादी जरूरत देखी परिवार से पूरा होके ला, लैका भी जन्म लेवेला तो वो अपना माय बाप पर आश्रित रहेला और परिवार से ही ओकर हर जरूरत के पूरा कई जाला। माता पिता भी बूढ़ हो गए तो वो अपन जरूरत खातिर लेखन पर आश्रित हो जाले, ओ घड़ी परिवार के साथ रहला, शरीर बुझी की बूढ़ भैला पर आदमी के लाचार हो जाला।
1: वो बहुत एकटा दुखदाई समय हुई छे। एकटा बच्चा ने ना वो अपने माय बाप के देखे छी कि वो अपना बुजुर्ग के कतेक सेवा कर रहल छे, तो हमहू करब, आ जो माय बाप बुजुर्ग के सेवा नहीं करे छे तो बच्चा के आजीवन मन में बनल रहे छे कहाँ हमर माँ दादी के करने रही।
2: हाँ, तो बल्कि कहीं कहीं देखे में ई भी आवेला कि लेकिन तुरंत कह देवे ले रुआ, अगर कहब कि हाँ ऐसे कर हमरा खातिर तो सीधे पूछ देवे लन कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया
1: क्या किया। हाँ।
2: तो एक तरह के कोई बात ना होके अपना आचरण से हमने के लेकिन के ऐसी ही सिखाई जा कि वो भी एक आदर्श नागरिक बनस, एक अच्छा इंसान बनस। तो ये कुल हमने के परिवार में सीखी ला जा। और अब इतना हमने के बतियाईनी जा तो एगो गीत तो सुनल बना था।
1: हाँ हाँ।
2: तो चलिए हमने के सुनी जा कमलेश पासवान जी से ही गीत।

पुछौना कैला दान पुना पुछौना कैला देह भैल कमजोरी रे मन इहे अरजे बा मोरी पीला राम ना

0: तोरा साधोरी रे मन इहे अरजेबा मोरी।
1: बा देखिए हमनी के लोक भजन अभी सुननी जा कमलेश पासवान जी से।
2: हाँ,
1: और ई गीत खातिर इनका के धन्यवाद, और आगे भी इनका से गीत सुनल जाए।
2: हाँ।
1: और अब चंपा बहन देखी कि सब जगह सुने में आ रहल बा ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण बदल रहल,
2: पर्यावरण से संबंधित बहुत एहन समस्या आबि रहल अछि, सब लोग एकरा स्वीकार नहीं कर रहल।

0: लोग अच्छा मने अच्छा कहते हैं ये क्यों ना भगले इतने गर्मी को ना भगले
1: लेकिन एकरा खातिर कहीं ना कहीं तो हमने के जिम्मेदार बन
0: जाए।
1: अब देखिए कि 10 तरह के कचरा निकल रहा बा घरे के बुझी कि हमने के अपन घरे के कितना कचरा हो जाला तकारी बात जे रोज के सामान हमने के इस्तेमाल कर रहा बनी जा उहो में जे जे मतलब बेकार वाला चीज बा तो वो तो सब कचरे हो गए। अस्पताल के कचरा बा कल कारखाना के कचरा बा तो हर तरह के कचरा जे बा वातावरण के तो दूषित कर रहा बा। और हमनी का आज यही विषय पर एगो वार्ता सुनती जा अस्पतालों से उत्पन्न कचरा एवं उनका निष्पादन वार्ताकार बाड़े अरविंद कुमार तो सुन ली जा वार्ता।
2: अस्पताल हमारे जीवन स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए जरूरी है। इसके दूसरी तरफ अस्पताल के लिए चिकित्सा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कचरा हम अपनी रोग संचरण की उच्च क्षमता के कारण खतरनाक विषैले तथा घातक भी हो सकते हैं। अस्पतालों से उत्पन्न होने वाले कचरा आधुनिक युग की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल से अच्छा उत्पन्न कचरा के खतरनाक और विषैले भाग जिसमें संक्रमण रेडियो एक्टिव सामग्री के साथ साथ नुकीले चीजें भी शामिल होती है। अस्पतालों से उत्पन्न होने वाले कचरे आधुनिक युग की सबसे गंभीर और जटिल पर्यावरण स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा करती है जबकि अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं में जीवन रक्षा के लिए कार्य करते हैं। अस्पताल से उत्पन्न कचरा को सही ढंग से प्रबंध न करने पर यह रोग चोट और पर्यावरण दूषित करने का कारक बन सकते हैं। अस्पतालों से उत्पन्न कचरा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं सामान्य कचरा और हानिकारक कचरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों से उत्पन्न लगभग 85% कचरा गैर हानिकारक होता है जिसमें कागज पैकेजिंग प्लास्टिक एवं अन्य घरेलू कचरे जैसा होता है। शेष 15 को खतरनाक अंश माना जाता है जिसे कड़े नियंत्रण और विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। इस 15% हिस्से को इससे खतरे की प्रकृति के आधार पर विभाजित किया जाता है जैसे रक्त शरीर से निकलने वाले संक्रमित तरल पदार्थ एवं इसके रोकथाम में शल्य सामग्री सुई इंजेक्शन ब्लेड टूटे हुए कांच उच्च जोखिम वाले होते हैं जिससे कटने या चुभने के कारण हेपेटाइटिस HIV हेपेटाइटिस सी जैसे रक्त जनित रोगाणु के संचरण का खतरा रहता है। सर्जरी बायोप्सी या पोस्टमार्टम से प्राप्त मानव अंग उत्तक अंग तंत्र और खून से सना शारीरिक तरल पदार्थ प्रयोगशाला और निदान से निकली हुई रासायनिक वस्तुएं सफाई करने वाले कीटाणुनाशक और प्रयोगशाला के रिएजेंट ये विषैले क्षारीय या जलनशील हो सकते हैं। ये रासायनिक जलन विषैले और पर्यावरण को प्रदूषण देते हैं। समाप्त रसायन अब्लिक दवा या दूषित फार्मास्यूटिकल उत्पाद जिसमें कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवा या अन्य भी शामिल है जो जेनेटिक और अत्यंत ही खतरनाक है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोथेरेपी उपचार से प्राप्त रेडियोधर्मी पदार्थ से दूषित सामग्री प्रदान करता है। अस्पतालों से उत्पन्न कचरा ऐसे अपशिष्ट जो मनुष्य के रोग निदान उपचार अथवा टीकाकरण के दौरान या इससे संबंधित अनुसंधान कार्य एवं जैविक जांच आदि से उत्पन्न होता है। भारत सरकार ने 20 जुलाई 1998 को जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियंत्रण नियमावली 1998 को अधिसूचित किया है। अस्पतालों से सामग्री विशेष रूप से उपचार हेतु सामग्री अन्य रासायनिक सामग्री को उपचार उपरांत फेंक दिया जाता है। यह समुदाय के लिए जोखिम बढ़ा देता है। अस्पतालों से उत्पन्न कचरा पर्यावरण खराब निष्पान प्रथा के कारण हवा पानी और मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनती है। बिना उपचार के कचरे को लैंडफील्ड में फेंकने से भूजल पर्यावरण दूषित हो सकता है। प्रचलित गलत तरीके से चलने वाले दहनागार हवा को प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक भारी वस्तुएँ और हेलोजेनेट पदार्थ वाला कचरा धुआं जलने से डाइऑक्सिन और फ्यूरिन जैसे विषैली हवा वातावरण में छोड़ते हैं जो अस्थाई कार्बनिक प्रदूषण और मानव कैंसर जनित के रूप में जाने जाते हैं। ये 20 तत्व खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं।

0: और दीर्घकालिक व्यापक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी हानि पैदा करते हैं। अस्पताल से उत्पन्न कचरे का प्रबंधन कोई एकल प्रक्रिया नहीं है, इसे प्रभावी बनाने के लिए एक समग्र प्रणाली पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें कचरा घटाना, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण रिसाइकिलिंग शामिल है। इसके उपरांत विशेष उपचार के द्वारा अन्य कचरा को सुरक्षित अंतिम रूप से निपटाया जाता है। अस्पताल प्रबंधन अस्पताल कचरा को प्रभावी रणनीति के बल पर अपशिष्ट उत्पाद को कम करता है। उत्पादन स्थल पर ही कचरों को अलग अलग कर देना, सही छटाई खतरनाक कचरों की मात्रा को न्यूनतम कर देता है, जिससे उपचार लागत और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों घटते हैं। अस्पतालों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के कचरा संग्रहण, भंडारण तथा निपटान हेतु चार प्रकार के रंगीन कचरा थैलियों का निर्धारण है। पहला, पीला थैली। इसमें मानव रक्त, शरीर के भाग, कॉटन ड्रेसिंग, बैंडेज, खून सहित प्रयोगशाला में व्यर्थ सामग्री आदि। लाल थैली, सिरिंज, कैथेटर, सुई, ब्लेड, सीसा या अन्य डिस्पोजल सामान। सफेद थैली, सुई, सिरिंज, ब्लेड, सीसा जो चुभ सकती है, इसी प्रकार के अन्य सामग्री। काली थैली, सामान्य अपशिष्ट तथा सभी प्रकार के जैविक कचरा, रासायनिक कचरा तथा अन्य। इन्हीं चारों थैलियों में सभी प्रकार के अस्पताल के कचरे को रखकर निष्पादन करना चाहिए। अस्पताल से उत्पन्न कचरे को विशेष परिवहन वाहन से ऐसे मार्गों से किया जाना चाहिए जिसमें समुदाय का संपर्क कम से कम हो। अस्पताल के खतरनाक कचरे को अंतिम निपटान के लिए निपटान से पहले रोगजनकों को निष्क्रिय या नष्ट करने के उपचार किया जाता है। ऑटोक्लेविंग, यह एक गैर दहन तकनीक है और उच्च दबाव पर संतृप्त भाप का उपयोग करके संक्रमण को नष्ट किया जाता है। दहन, इस प्रक्रिया में उच्च तापमान पर तापीय प्रक्रिया कचरे की मात्रा और द्रव्यमान को कम कर देती है। अस्पतालों में कचरे के प्रबंधन में उसके शुरुआत से ही कचरे को अलग अलग रंग के कंटेनरों में संग्रह किया जाना चाहिए और यह अस्पतालों में किया भी जाता है। अस्पतालों से उत्पन्न कचरे को विशेष गाड़ी का उपयोग करके भंडारण क्षेत्रों में लाया जाता है। अस्पतालों से उत्पन्न कचरे को एक निश्चित भंडारण क्षेत्र में अस्थायी भंडारण और उपचार, जिसमें ऑटोक्लेविंग या भस्मीकरण के माध्यम से सुरक्षित निपटान शामिल होना चाहिए। दहन के राख और रासायनिक रूप से उपचारित अपशिष्टों को सुरक्षित सैनिटरी लैंडफिल्ड में निपटाए जाते हैं, जो पर्यावरणीय रिसाव को रोकने के लिए बनाए गए होते हैं। अस्पतालों में कचरा प्रबंधन के बारे में सभी स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यक है। कचरा कम करने के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ साथ पैकेजिंग वाले उत्पादों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के बीच खुला संचार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अस्पताल प्रबंधन में अस्पताल के प्रतिबद्धता के ऊपर टिका होना चाहिए, जिसमें अस्पताल में उत्पन्न कचरा पदानुक्रम के सिद्धांत का पालन करते हुए हर स्तर पर जिम्मेदार कचरा पृथकीकरण की संस्कृति को विकसित किया जाना चाहिए। अस्पताल से उत्पन्न कचरे में सामान्य कचरे से लेकर खतरनाक बायोमेडिकल कचरा भी शामिल होता है। इसका सही प्रबंधन पदाधिकारियों, कर्मचारियों, रोगियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है।
1: अभी हमने का सुनत रहनी जा वार्ता अस्पतालों से उत्पन्न कचरा एवं उनका निष्पादन, वार्ताकार रहले अरविंद कुमार। तो इनका के धन्यवाद देवल बना था,
2: धन्यवाद दियो, लेकिन इनका वार्ता में जो रहस्य छुपल चल ताई पर कनी गौर करो। यानी कि कचरा प्रबंधन ओहिना जे ओपन में फेकल रहे भूजल में, तकरा प्रबंधन क खद्दा खान क या डस्टबिन में डालू आ फिर ओकरा जे कचरा नगर निगम
1: ओकरा अलग से ओकर निष्पादन करी ताकि बीमारी भी लोग में ना फैले। और
2: घृणा हो नहीं हुए आ ककरो पता नहीं चले निक बजे आखिर सब शरीर के अवशेष छे, मुदा तैयो ओकरा जना अस्वस्थ अवशेष है तो ओकरा ढक के राखी, ओकरा नहीं हो तो माटी में गाड़ दी, जरा दी। अइ तरह से कतेको प्रबंधन कैल जा सकैत अछि।
1: आ देखी बहुत फरिया के बतौलन भी
2: बहुत निक जगह बतौलन। अर्चना जी हिनका धन्यवाद तो देले गेलनि।

0: वाह, देखिए तो कितना निमन गीत रहे। हम देखत रही रहो, बड़ा दम ध्यान से सुनत रही, मन लागत रहे गीत सुने।
1: इतना तो माहौल के बदल दे छे, कतबो सीरियस अहाँ गप करते रहो, केहनो वातावरण गमगीन रहो, लेकिन ओहि में कोनो

0: पारंपरिक गीत चल जाए तो फिर मन आह्लादित हो जाए छे।
1: और
0: यही गीतक संग
1: चौपाल के समय भी ओरिया गई बा तो हमनी का खेती गृहस्थी में फेन बती आई।
0: हाँ
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: चंपा बहन,
0: हाँ,
1: मछली भात तो हमरा खाए में बहुत निमन लागेला।
0: एमे कह के बात छे।
1: हाँ, लेकिन मछली तो देखी कि स्वास्थ्य खातिर निमन बा। तो कहेला कि कोनो कोनो मछली तो कहेला कि ओकरा से खून बनेला तो खाए के चाहिए,
0: खास
1: और पोषक तत्व से भी भरल
0: भुन्ना मछली। भुन्ना माछ के विषय में कहबी छे कि सरलो भुन्ना तरो
1: दुन्ना। सही कहानी,
0: अतेक पौष्टिक वाला मछली।
1: लेकिन मछली खाए खातिर तो मछली होके के चाहिए, रही तब न खाई। तो मछली पाले खातिर कौन कौन किस्म आदमी पालो कि जेकरा से कि फायदा भी होखो बेसी। और देखी कि मछली पालन के तो दो उद्देश्य बा, व्यावसायिक आ घर पे कुछ लोग शौकिया भी पाले ला।
0: हाँ।
1: तो हमने का व्यावसायिक तौर पर पाले के बात करब जा। तो व्यावसायिक तौर पर पाले वाला मछली के किस्म के बारे में आज हमने के जानब जा। और ए में देखी कि कई ऐसा मछली के किस्म बा जे कि आसानी से ओकरा के पाल सकता नहीं, आ ओकर बढ़ती भी तेजी से होखेला, जैसे कि पैसा भी अच्छा भेटेला, मुनाफा के बहुत ज्यादा फायदा रहेला ओकरा में। तो रोहू मछली जेबा ये भारत के सबसे लोकप्रिय और मीठा पानी के मछली है। ये तालाब के बीच के ही
0: स्थित होइ छ।
1: हाँ,
0: जो गहीर तालाब में एकरा पालल जाए। हम सब के कई एक बेर के बात कहै छी, दरभंगा तरफ हमर गाम भेल, जे स्पेशली एकटा पोखर छे। तो ओहि पोखर के माछ अबै छल, तो हम पहिने ही घर में कहै छली कि जे कोनो पावन तिहार दिन ओहि पोखर के माछ नहीं आवे। और अखनो एत कहियो कहियो के शौक से हम ओत से मंगबै छी माछ खा के।
1: वाह, तो ई जे रोहू मछली है ई मीठा पानी के तो मछली है ये है, आ तालाब के बीच के हिस्सा में रह के भोजन अपन लेवे ले।
0: हाँ।
1: अब बाजार में भी ई मछली के भारी मांग बा, तो इस वजह से ई मछली के लोग पालेला तालाब में ताकि बिक्री भी होई, और बिक्री होई तो मुनाफा होखबे करी। वही तरह देखिए
0: रोहू में कांट बड होई छे। मुझा वो कांट उकर स्वादों के बढ़वे छे। और स्वास्थ्य के लिए से हो लाभकारी।
1: और वही तरह देखी कि एगो कतला मछली भी हो खेला, इहो तेजी से बहुत तेजी से बढ़े वाला मछली है, जे कि तालाब के ऊपरी सतह पर ही रहेला। साल में एक के साल में 1.5 किलो तक के वजन एकर हो जाला
0: कतला के।
1: तो बुझी कि तालाब के ऊपरी सतह में रहेला, आ रोहू बुझी कि निचला सतह में बा। वही तरह से एगो मृगल भी मछली होखेला, और ई तालाब के तौर में आपन भोजन प्राप्त करेला। तो अक्सर किसान भाई जे भी मछली पारे के व्यवसाय करेले, उ कतला रोहू आ मृगल एक के जोड़े पोसेले, ताकि तालाब के हर स्तर के भोजन के सही उपयोग हो सके। आप देखिए कि एगो मछली ऊपर सतह पे बा, एगो एकदम बीच में बा, एगो और भी जे कह जाला कि तालाब के सतह नीचे सतह में बा। तो ए तरह से तालाब के तो हर सतह पे भोजन की व्यवस्था बा। और उ अगर मछली ओकरा के उपयोग कर रहल बा तो मुनाफा होखबे ना करी। और कम लागत में तेजी से बढ़े अधिक मुनाफा देवे वाली मछली है, तो आसानी से एकरा के पोसल जा सकेला, आ कम रख रखाव भी में भी ई मछली बढ़िया से जी जाले। तो ओही तरह एगो और मछली बा पंगास। ई कम जगह आ कम पानी में तेजी से बढ़े वाला

0: मछली, हाँ, ये मुख्य रूप से व्यावसायिक तालाब या बायोप्लोक तकनीक में पालल जाला। ग्रास कार्प अ कॉमन कार्प भी मछली के किस्म बा, जे की तेजी से बढ़े ले अ मुनाफा देवे ले। तेजी से तैयारी होखे वाला मछली पाले से कम समय में अधिक मुनाफा होखेला। अब बाजार में ये कुल मछली के मांग जेबा बहुत ज्यादे बा और पोसे में कम खर्चा भी लागेला। तो एह तरह से ई कुल जे किस्म बा तो सब कोई जे मछली पालक बाड़े वो चाहेलन कि यही किस्म के हम अपना तालाब में रखी ताकि
1: आमदनी
0: मुनाफा बढ़िया हो। और अब का विचार हुआ?
1: हाँ, बातचीत भेला के बीच में गीत ना चलत रहे छे।
0: हाँ, तो तनी मन लागे
1: तो निक लगे छे।
0: हाँ, तब एगो गीत सुन लेती
1: जा। स्वादिष्ट भ जात।
0: हाँ, तो चलिए एगो गीत सुन लेते नहीं जा कमलेश पासवान जी से।
1: हाँ।

वाह, कितना निमन गीत लागल सुने में, और समय रही तिनका से आगे भी और गीत सुना जाए। और अब एगो जरूरी वार्ता हमनी के सुन लेती जा, स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक, वार्ताकार बारे डॉक्टर राकेश कुमार।

0: गीत सुना जाए। और अब एगो जरूरी वार्ता हमनी के सुन लेती जा। स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक, वार्ताकार बारे डॉक्टर राकेश कुमार।
1: आज का हमारा विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक। दूध का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और दूध को मानव आहार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संतुलित घटक माना जाता है। इसमें उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन, आवश्यक वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स तथा अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि दूध को संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि दूध एक अत्यंत संवेदनशील जैविक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए अनुकूल माध्यम प्रदान करता है। यदि दूध का उत्पादन, संग्रहण और परिवहन स्वच्छ परिस्थितियों में न किया जाए तो यह शीघ्र ही दूषित होकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन सकता है। दूषित दूध के सेवन से टाइफाइड, टीबी, डायरिया, ब्रुसेलोसिस, सैल्मोनेलोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसलिए स्वच्छ दुग्ध उत्पादन केवल गुणवत्ता का विषय नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इसका तात्पर्य ऐसे दूध के उत्पादन से है जो पूर्णतः स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्ता वाला हो। इस प्रकार का दूध वह होता है जिनमें किसी भी प्रकार की भौतिक अशुद्धियां जैसे धूल, बाल, गोबर आदि उपस्थित न हो, जिससे उनकी शुद्धता बनी रहे। साथ ही उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए ताकि वह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त स्वच्छ दूध में किसी प्रकार के रासायनिक अवशेष जैसे एंटीबायोटिक या कीटनाशक नहीं होने चाहिए क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा दूध उपभोक्ताओं के लिए न केवल सुरक्षित होता है बल्कि पौष्टिक एवं उच्च गुणवत्ता का भी होता है जिससे उसके पोषण संबंधी लाभ सुनिश्चित होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से स्वच्छ दूध वही माना जाता है जिसमें बैक्टीरियल लोड अर्थात टोटल प्लेट काउंट कम हो तथा जो निर्धारित मानक गुणवत्ता परीक्षणों पे खरा उतरता हो। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहला है जन स्वास्थ्य की सुरक्षा। दूषित दूध रोगजनक सूक्ष्म जीवों का वाहक बन सकता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां दूध का उबालना या प्रसंस्करण सही तरीके से नहीं होता, वहां संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। इसके बाद दूध की गुणवत्ता एवं सेल्फ लाइफ में वृद्धि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्वच्छ दूध में जीवाणुओं की संख्या कम होने के कारण यह अधिक समय तक खराब नहीं होता, इससे सेल्फ लाइफ बढ़ती है और प्रसंस्करण उद्योग को बेहतर उत्पाद बनाने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा किसानों को ज्यादा मुनाफा और आर्थिक लाभ मिलता है। स्वच्छ दूध को डेयरी उद्योग में उच्च मूल्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता आधारित भुगतान प्रणाली में किसानों को अधिक लाभ मिलता है तथा विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए गुणवत्ता मानक का पालन अनिवार्य होता है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के निर्यात के अवसर भी बढ़ जाते हैं। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को समझने के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि दूध किन किन कारणों से दूषित हो सकता है। सामान्यतः दूध के दूषित होने के कई प्रमुख स्रोत होते हैं। सबसे पहले पशु के शरीर से, विशेषकर थन और त्वचा से सूक्ष्म जीव दूध में प्रवेश कर सकते हैं। यदि पशु की साफ सफाई का उचित ध्यान नहीं रखा जाता है तो यह दूषण का एक प्रमुख कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त गौशाला का वातावरण भी दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जहां धूल, गोबर तथा कीट आदि के संपर्क में आने से दूध आसानी से अशुद्ध हो सकता है। दूध दुहने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि दुहने वाला व्यक्ति साफ सुथरा नहीं है या हाथों की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो इससे भी दूध दूषित हो सकता है। साथ ही दूध को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन एवं उपकरण यदि साफ और स्वच्छ नहीं है तो भी वे संक्रमण का प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। जल की अशुद्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि दूध से संबंधित कार्यों में उपयोग किए जाने वाला पानी यदि दूषित है तो वह दूध की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। अंततः परिवहन के दौरान यदि उचित स्वच्छता और तापमान नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो भी दूध के दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इन सभी स्रोतों पर विशेष ध्यान देकर ही स्वच्छ दूध उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम विस्तार से उन प्रमुख चरणों पर चर्चा करेंगे जो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम हमें पशुओं की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रबंधन का ध्यान देना होता है, क्योंकि स्वस्थ पशु ही स्वस्थ दूध का आधार है। पशु

0: वो का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक होता है तथा हमें टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम अपनाना चाहिए। पशु के शरीर विशेषकर थनों को भी प्रतिदिन साफ करना चाहिए तथा दूहने के पहले थनों को साफ पानी से धोकर सुखाना चाहिए, क्योंकि थनों के सतह पर भी उपस्थित जीवाणु दूध में मिलकर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। गौशाला की स्वच्छता एवं प्रबंधन भी स्वच्छ दूध उत्पादन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गौशाला का फर्श सूखा एवं साफ होना चाहिए। इसके अलावा उचित वेंटिलेशन एवं हवा का प्रवाह आवश्यक है। गोबर एवं अपशिष्ट का नियमित निष्कासन सही समय पर होना चाहिए तथा मक्खियों एवं कीटों का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह सर्वविदित है कि गंदे वातावरण में रोगजनक सूक्ष्मजीव तेजी से बढ़ते हैं जो दूध को दूषित कर सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए दुग्ध दुहने वाले व्यक्ति की स्वच्छता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है एवं इसके लिए हमें अपने हाथों को धोने से पहले साबुन से धोना अनिवार्य है। हमारे नाखून छोटे और साफ होने चाहिए। दूध दुहने के समय हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही साथ यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि बीमार व्यक्ति को दूध दुहने से बचना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर भी कई रोगजनक का स्रोत हो सकता है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए दूध दुहने की विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए पूर्ण हाथ विधि अपनानी चाहिए। साथ ही साथ पशु को शांत वातावरण में दुहना चाहिए। दूध का पहला धार को अलग निकाल लेना चाहिए एवं दुहने का समय नियमित होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि पहली धार में जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है, जिसे हटाने से दूध की गुणवत्ता सुधरती है। बर्तनों एवं उपकरणों की स्वच्छता स्वच्छ दूध उत्पादन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये साफ करने में आसान होते हैं और इसमें जंग नहीं लगता। बर्तनों को प्रत्येक उपयोग के बाद और इसे गर्म पानी एवं डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के जीवाणु या गंदगी को हटाया जा सके। धोने के बाद बर्तनों को उल्टा करके स्वच्छ स्थान पर सुखाना चाहिए, जिससे उनकी नमी न रहे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्ध है कि गंदे और नम बर्तनों में जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं, जो दूध को तुरंत दूषित कर सकते हैं। दूध दुहने के बाद उसका शीघ्र शीतलीकरण भी अत्यंत आवश्यक होता है। दूध का तापमान दुहने के तुरंत बाद लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देना चाहिए, जिससे उसमें उपस्थित जीवाणुओं की वृद्धि दर धीमी हो जाती है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत है कि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की गतिविधि घट जाती है, जिससे दूध अधिक समय तक सुरक्षित और ताजा बना रहता है। दूध का सुरक्षित परिवहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमेशा ढके हुए और स्वच्छ कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए, ताकि बाहरी धूल कीट या अन्य अशुद्धियां दूध में प्रवेश न कर सके। साथ ही परिवहन के दौरान तापमान नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और अनावश्यक विलंब से बचना चाहिए, जिससे दूध की गुणवत्ता बनी रहे। वर्तमान समय में स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। मिल्किंग मशीन का उपयोग मानव संपर्क कम करता है, जिससे संक्रमण का खतरा घटता है। बल्क मिल्क कूलर दूध को तुरंत ठंडा करने में सहायक होता है और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखता है। इसी प्रकार क्लीनिंग इन प्लेस प्रणाली एक स्वचालित सफाई प्रणाली है, जो उपकरणों को बिना अलग किए हुए प्रभावी ढंग से साफ करती है। इसके अलावा गुणवत्ता परीक्षण के लिए लैक्टोमीटर, पीएच मीटर और माइक्रोबियल टेस्टिंग किट जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे दूध की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन संभव हो पाता है। अतः स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसानों को चाहिए कि वे नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें, वैज्ञानिक सलाह का पालन करें, आधुनिक तकनीकों को अपनाएं एवं गुणवत्ता आधारित उत्पादन पर विशेष ध्यान दें। अंत में यह कहा जा सकता है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन केवल एक तकनीकी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। यदि हम पशुओं के स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, सही दुहने की विधि और आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग करेंगे, तो न केवल उच्च गुणवत्ता का दूध उत्पादन संभव है, बल्कि देश के दुग्ध उद्योग को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
1: अभी हमने का सुनत रनिजा वार्ता, स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक। वार्ताकार रहले डॉक्टर राकेश कुमार। तो इतना उपयोगी जानकारी खातिर इनका
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब चले से पहले एक और गीत सुन लेती जाते। हाँ, हाँ, हाँ। तो चली सुन ली जा कमलेश पासवान जी से ये गीत।

से चलना तौगी जाई घामा डाठावा झुराई जाई

0: बा हमने कई गीत सुनने जा चंपा बहन सब इतना निमन निमन गीत सुनौलन कमलेश पासवान जी ते इनका सब गीतन खातिर धन्यवाद। और अब चले के बेरा हो रहा बा।
1: हाँ।
0: तो नमस्कार चंपा बहन।
1: नमस्कार अर्चना जी।

0: सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीट यूजी की रद्द परीक्षा का 21 जून को होगा आयोजन, अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का दिखने लगा असर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री पैदल अपने कार्यालय पहुंचे। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया को बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन दल का मुख्य सचेतक

0: मनोनीत किया गया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्रिकेटर ईशान किशन को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
1: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 3.14 रूपये जबकि डीजल की कीमतों में 3.11 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई है। अब पेट्रोल की कीमत पटना में 108.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 94.65 रूपये प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी 2 रूपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अस्थायी है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थितियां सामान्य होने पर पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में कमी आ जाएगी।
2: इस कदम को सरकार ने अत्यंत मजबूरी के हालात में उठाया। ये टेम्पररी और अस्थायी स्थिति है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खारे युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाए।
0: खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक से अधिक घरों तक सीएनजी कनेक्शन पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।
3: अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये जो गैस का इश्यूज है उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी रिव्यू हुआ है उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचेंगे पर मंथ कनेक्शन देने। ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं उसी समय हम लोग गैस कनेक्शन की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें।
0: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सरकार को मजबूरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है।
4: आड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई जाकर के लगातार युद्ध हो रहे हैं उसका असर दुनिया पर हो रहा है, उसका असर डीजल पर हो रहा है, पेट्रोल पर हो रहा है। इसीलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है होम टू वर्क, सोना न लोग खरीदे जाकर और कम से कम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करें, खेतों में खादों का प्रयोग कम करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें। संकट घड़ी में हम सबको मिल करके देश के माननीय प्रधानमंत्री खड़ा होना जाकर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का बिहार में असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने सरकारी आवास से सचिवालय तक पैदल पहुंचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल ही अपने कार्यालय पहुंचे। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से जबकि गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार मोटरसाइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों ने भी कार्यालय पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया। इधर खगड़िया के जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। गया स्टेशन परिसर में आरपीएफ के

0: जवानों ने गाड़ियों की जगह साइकिल से गश्ती की। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया को बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन दल का मुख्य सचेतक मनोनीत किया गया है। वहीं बरौली से जदयू के विधायक मंजीत कुमार सिंह उप मुख्य सचेतक होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को पत्र भेजा है। परिहार विधायक गायत्री देवी, गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी और पिपरा विधायक राम विलास कामत समेत 9 विधायकों को सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। इधर विधान परिषद में जदयू के संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी मुख्य सचेतक मनोनीत किए गए हैं। जनक राम को उप मुख्य सचेतक और नीरज कुमार तथा रीना देवी को सचेतक बनाया गया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2021 बैच के आईएएस टॉपर शुभम कुमार को पटना का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। विनोद सिंह गुंजियाल को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के सेंथिल कुमार को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश कुमार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव जबकि पंकज कुमार पाल पथ निर्माण विभाग के सचिव होंगे। अभय कुमार सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। दीपक आनंद को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेम सिंह मीणा मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त के साथ भागलपुर प्रमंडल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। हिमांशु कुमार राय को दरभंगा प्रमंडल के साथ कोसी प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_patna को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य ईशान किशन को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने ईशान किशन को उनके सफल क्रिकेट करियर के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरण, खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. पी राजेंद्र सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र और जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए आज से सिलेक्शन ट्रायल शुरू हो गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि ट्रायल 22 मई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में दाखिले के लिए 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के, जबकि जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं।
2: 15 मई से लेकर 22 मई तक एकलव्य आवासीय केंद्र एवं डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए ट्रायल्स का आयोजन किया जा रहा है। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के लिए वॉलीबॉल एवं वाटर स्पोर्ट्स का ट्रायल्स होगा और डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्वांडो, कबड्डी एवं बैडमिंटन विधाओं में ट्रायल्स होगा। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के लिए आयु वर्ग 12 से 14 साल तक का है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए आयु वर्ग 16 से 18 साल तक है।
0: राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए युवा किसानों को प्रोत्साहित करेगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि जैविक खेती में बेहतर काम करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 5700 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। योजना से जुड़े किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। मौसम विभाग ने

0: कल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है।
1: दिनांक 16 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर आज औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, कैमूर, नालंदा, नवादा और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सीतामढ़ी के पुपरी नगर परिषद कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंता विजय कुमार शर्मा को 1,45,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी एक संवेदक से रिश्वत ले रहा था। गोपालगंज की एमपी एमएलए अदालत ने जदयू विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की है। अब एक महत्वपूर्ण सूचना। एग्री स्टैक योजना के तहत फार्मर आईडी बनाने में सुस्ती बरतने के आरोप में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने फेनहारा, पिपरा, कोठी और वन कटवा के प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। सुपौल जिले के जदिया थाना से पुलिस ने 1 किलो 440 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 1 युवक को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले में रसोई गैस वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में 4 गैस एजेंसियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। सहरसा जिले के कासनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। भोजपुर जिले के महुली गंगा घाट पर धार्मिक अनुष्ठान के दौरान गंगा जी में 2 सगे भाई डूब गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। एक लापता की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए रोहतास के चिनारी प्रखंड के सेमरी गांव निवासी सीआरपीएफ जवान दिलीप कुमार पासवान के आश्रितों को राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। वरीय उप समाहर्ता ओम प्रकाश लाल और अंचलाधिकारी ने शहीद जवान की पत्नी अनिता देवी को राशि सौंपी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट यूजी की रद्द परीक्षा का 21 जून को होगा आयोजन। अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का दिखने लगा असर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री पैदल अपने कार्यालय पहुंचे। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया को बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन दल का मुख्य सचेतक मनोनीत किया गया। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्रिकेटर ईशान किशन को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
2: मधुबनी जिले में भारतीय जनगणना 2027 की तैयारी में लापरवाही के आरोप में जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिले के 118 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से लंबित कर दिया। लंबित पंचायत सचिवों पर बिना अनुमति के लंबे समय तक गैर हाजिर रहने का आरोप है। इधर जिला अधिकारी ने जिले भर की सरकारी और सार्वजनिक की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिलावासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जमीन आम लोगों की धरोहर है और इसका अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
3: सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करा वाला अतिक्रमणकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कैल जाए।
4: अतिक्रमण मुक्त वातावरण केवल प्रशासन जिम्मेवारी नहीं अपितु समाजक सामूहिक जिम्मेदारी से वो आई।
2: मुख्यमंत्री समाज चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में जिले के 3 विधायकों को जगह मिली है। जदयू नेता और फुलपाज विधानसभा क्षेत्र से विधायक शीला कुमारी को विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जबकि खजौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। जिले के इन 3 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने से जिलावासियों में खुशी की लहर है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को डिजिटल पहचान देने के उद्देश्य से मधुबनी जिले में फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिजिटल फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि 30 जून तक चलने वाले फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। ऊर्जा संकट के बीच जिले में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में हो रही अनियमितताओं और लापरवाही में रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई। टीम ने जांच के बाद 4 गैस गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर उनके संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर जिलाधिकारी घरेलू गैस उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिले में घरेलू गैस भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, उपभोक्ता घबराहट में बुकिंग न करें। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के 2 प्रमुख स्थानों हलाकी प्रखंड स्थित विश्वामित्र स्थान और कल्याणेश्वरी महादेव मंदिर के विकास कार्य के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। इससे मधुबनी जिले के पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। जिला अधिकारी ने कहा कि दोनों स्थानों के सुंदरीकरण और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास से न केवल मधुबनी जिले में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा बल्कि पूरे बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी व्यापक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिले में मानसून से पहले संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जल संसाधन विभाग के आदेश पर बेनी पट्टी के मेघवन पंचायत भवन के समीप बाढ़ के कटाव स्थल की मरम्मती कराई जा रही है। उक्त स्थल को मजबूत करने के लिए करीब 44 लाख रुपए की लागत से 60 मीटर क्षेत्र में कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा है। गौरतलब है कि विगत वर्ष इसी स्थल पर देर रात बाढ़ टूट जाने से मेघवन और नजरा सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इधर जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने की तैयारी में जुट गई है। 19 मई से जिले की विभिन्न

0: पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। जिला अधिकारी ने जिला वासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में शिविर में भाग लेकर अपनी समस्याओं संबंधी अधिकारियों के समक्ष रखें। गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना ने मधुबनी जिले में दर वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से जिले के विभिन्न अंचल अधिकारियों को पत्र जारी कर वक्फ भूमि की स्थिति, अतिक्रमण, खरीद बिक्री, अवैध जमाबंदी संबंधी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जारी पटन में रहिका, पंडौर, खजौली, कलवाही, जयनगर, बासोपट्टी, बेनीपट्टी, बिस्पी, हरलाखी, मधवापुर, घोगड़िया और मधेपुर के अंचल अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जिला औकाफ कमेटी मधुबनी के सदस्य अधिवक्ता महताब आलम द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें जिले की विभिन्न वक्फ भूमि पर अवैध जमाबंदी किए जाने की शिकायत की गई है।
1: अभी आप सुन रहे थे मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
2: ये आकाशवाणी पटना है, आइए अब सुनिए सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज गए हैं। फिल्म संगीत के साथ हम उपस्थित हैं। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपके साथ

मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं आशा भोसले और एस पी बाला सुब्रमण्यम के गाए फिल्म एक ही भूल के इस गीत के साथ।

अब सुनिए फिल्म अनजाना का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

चलो ले जा चल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा चल्ला निशानी, मेरी मोहब्बत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम शागिर्द। सुनिए ये गीत।

इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार कर।

नगीना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज की आवाज में। अब आइए सुनिए गीता दत्त को फिल्म साहबीबी और गुलाम।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से मेरे यानी जया के साथ। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। अब सुनिए आकाशवाणी @90 विषय है आज का खेल के प्रचार प्रसार और आकाशवाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री धर्मेंद्र कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का आकाशवाणी @90 के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा विषय है खेल के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका। इतने वर्षों में आकाशवाणी ने सिर्फ समाचार या मनोरंजन ही नहीं दिया है हमें, बल्कि खेलों की रोमांचक दुनिया को भी घर घर तक पहुंचाया है। जब टीवी हर घर में नहीं हुआ करता था, तब रेडियो की आवाज़ ही मैदान का दृश्य बन जाती थी और कमेंटेटर की आवाज़ सुनकर लोग मैच का हर पल महसूस किया करते थे। आज इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ ने रेडियो को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि हम सबको महसूस कराया है। आज के हमारे खास बातचीत में जुड़े हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक होने के साथ साथ खेल कमेंटेटर होते हुए खुद भी एक फुटबॉल खिलाड़ी होने के नाते मैदान पर परचम लहराया है। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं बद्री जी का और शुरू करते हैं हमारी आज की ये खास बातचीत। बद्री जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहें

0: देखेंगे कि एक फुटबॉल खिलाड़ी से लेकर आकाशवाणी के स्पोर्ट्स कमेंटेटर तक का सफर आपका कैसे शुरू हुआ और इतने वर्षों की कार्यरत अनुभव आपकी कैसे रही है।
1: श्रोताओं के साथ साथ शिवांगी जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आपका प्रश्न बहुत ही मजेदार है। दरअसल मैं आकाशवाणी पटना का बचपन से ही बाल कलाकार के रूप में अपनी उपस्थिति बनाता रहा हूँ। खैर जहाँ तक स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनने का प्रश्न है तो आकाशवाणी पटना से 70 और 80 के दशक में खेल गतिविधियों पर आधारित एक से एक कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे। खेलकूद के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ करता था और ये हमारा सौभाग्य है कि मेरा चयन आकाशवाणी में एक उद्घोषक के रूप में हुआ। इसे आप इत्तफाकी कहिए कि महान हिंदी कमेंटेटर, अगर सच कहा जाए तो हिंदी स्पोर्ट्स कमेंट्री के जन्मदाता जसदेव सिंह जी थे, वरना खेल विशेषज्ञों ने हिंदी में कमेंट्री करने को बिल्कुल दुर्लभ समझा था। लेकिन स्वर्गीय जसदेव सिंह जी ने और उनके खनक भरी आवाज ने हिंदी कमेंट्री को एक नई दिशा दी और ये हमारा सौभाग्य था कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके साथ काम करने का मौका मिला, जिसके वजह से कमेंट्री के फाइनल पॉइंट से हम वाकिफ हुए। सच कहा जाए तो फुटबॉल से हमारा एक कमेंटेटर बनना और कमेंटेटर बनने का जो सफर रहा मेरी जिंदगी का, वो शानदार सफर रहा। खेल जगत के महान विभूतियों से हमारी मुलाकात हुई और सच पूछे तो हमारा जीवन धन्य हो गया।
0: बिल्कुल सर, आज के तकनीकी युग में भी हिंदी कमेंट्रेटरी श्रोताओं को खेल से भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। लेकिन रेडियो कमेंट्री का वह दौर जब लोग सिर्फ आवाज सुनकर पूरे मैच का रोमांच महसूस करते थे, मैं चाहूंगी बतौर कमेंटेटर आप अपनी कुछ खास यादें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए और ऐसे में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में आकाशवाणी की भूमिका क्या रही है, ये भी हमें जरूर बताइए।
1: शिवांगी जी, एक कमेंटेटर दर्शक की आंखें होता है। अपनी आवाज से मैदान में होने वाली घटनाओं का चित्रण करना बहुत मुश्किल कार्य है। आवाज को दर्शकों, खेल के मैदान का ब्यौरा पेश करना, मौसम, दर्शक दीर्घाया या फिर मैच के दौरान अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को आवाज के माध्यम से सही ढंग से प्लेस करना एक अच्छे कमेंटेटर की पहचान होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, लोग जमाए लेते नजर आते हैं, तो ऐसी घड़ी में अपने आवाज के माध्यम से श्रोताओं को बांधे रखना एक अच्छे कमेंटेटर की निशानी होती है। अब देखिए, कमेंट्री में होमवर्क, शब्दों का भंडार और मैच से जुड़ी हुई घटनाएं सोने में सुहागे का काम करती हैं। जहां तक खेल संस्कृति की सवाल है तो खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में रेडियो की सकारात्मक सोच की प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। रेडियो पर खेल कार्यक्रमों का प्रसारण करना, खेलों पर आधारित मासिक तथा साप्ताहिक कार्यक्रमों के प्रसारण करने के अलावा खास खास खेलों का आंखों देखा हाल सुनाना इत्यादि इसके मुख्य हैं।
0: बिल्कुल सर, खेलों के प्रचार में आकाशवाणी अपनी अहम भूमिका निभा रही है और साथ ही दोस्तों, हिंदी कमेंट्री केवल खेल का वर्णन करना ही नहीं बल्कि उस भावनाओं को हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने की वो अद्भुत कला है। बद्री जी, आपके अनुसार बदलते समय में आकाशवाणी ने खुद को किस तरह विश्वसनीय और प्रासंगिक बनाए रखा है?
1: शिवांगी जी, सच्चाई को आपने सही मायने में श्रोताओं के सम्मुख रखा है। आज भले रेडियो कम नजर आता हो किंतु उसकी गरिमा में कोई कमी नहीं हुई है। गरिमा अभी भी कायम है। मोबाइल, कार, कंप्यूटर तथा लैपटॉप के माध्यम से रेडियो अपनी गरिमा बनाए हुए है। आज सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री का रेडियो प्रसारण हर महीने के आखिरी रविवार 30 मिनट का होता है। इस प्रोग्राम को श्रोतागण बड़े चाव से सुनते हैं। इतना ही नहीं, रेडियो के अपने खास श्रोता हैं जो रेडियो से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल।

0: चौधरी जी, और अब तो रेडियो फोन पर भी आ गया है, हमारा ऐप है न्यूज ऑन एयर ऐप, जहां पे श्रोतागण अपना मनपसंद कार्यक्रम सुन सकते हैं और साथ ही वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जाकर वो सुन सकते हैं। सर, पहले लोग खेल के प्रति सकारात्मक नजरिया नहीं रखते थे, कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे बेकार, लेकिन आज इस सोच को बदलने में मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई है। आपका इस पर क्या नजरिया है?
1: पहले अभिभावकों की यही धारणा थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, किंतु आज वही अभिभावक अपने वार्ड्स को खेलने को प्रेरित करते हैं। बड़ी तेजी से पुराने सोच में बदलाव आया है। मीडिया ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर तुम एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी बनते हो तो उसमें क्या नहीं है, मान है, सम्मान है, यश है, पैसा है, देश विदेशों का भ्रमण है, इत्यादि इत्यादि। तो हम कह सकते हैं कि इस सकारात्मक सोच को लाने में मीडिया की भूमिका अहम है।
0: बिल्कुल सर, और खेल सिर्फ जीतने का नाम नहीं है बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने का हौसला है। तो श्रोताओं, अगर आपके अंदर जुनून, अनुशासन और मेहनत की आग है तो मैदान से लेकर माइक्रोफोन तक का हर सफर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। बद्री जी, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा और आज आपकी पसंदीदा फरमाइश हम सुनना चाहेंगे।
1: शिवांगी जी, संक्षेप में हम यही कहेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर एक कार्य एक तपस्या है और जो व्यक्ति सच्ची लगन और निष्ठा के साथ उस काम को करता है तो एक न एक दिन उसे सफलता अवश्य हाथ लगती है। तो अब समय खत्म होने को है, लेकिन चलते चलते शिवांगी जी, एक आपसे आरजू है, एक विनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बद्री जी, बताइए।
1: एक पसंदीदा गाना सुना देंगे?
0: अवश्य।
1: तो फिल्म का नाम है किनारा, गायिका है लता मंगेशकर, तो प्लीज ये गाना सुना दीजिए ना। गाने के बोल हैं, नाम गुम जाएगा।
0: बद्री जी, हम जरूर ये सुनेंगे। आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये पेश।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी @90। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियन

0: चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए

0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यत्तिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद

0: को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: युद्ध जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा

0: की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent.

0: category Border Security Force athlete Shivani defeated a Russian opponent to clinch the gold medal. Aparna also produced a brilliant performance in the 52-kilogram category to secure India's second gold medal. In the 48-kilogram category, Indian Air Force athlete Kushal Kumar claimed silver medal. At the Asian Under-17 Boxing Championships, Indian young boxers concluded their historic campaign today by winning 2 golds and 7 silver medals in Tashkent, Uzbekistan. India also bagged 8 bronze medals in the Under-17 category. With this, the total number of medals won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian Under-15 Boxing Championships, India won a total of 27 medals including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian Weightlifting Championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69-kilogram category snatch event by lifting 96-kilogram in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121-kilogram in the clean and jerk event and finished 4th overall with a total lift of 217-kilogram. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153-5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Pipravav relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 IPS अफसरों को मौतल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुर्मुज की अहमियत को उजागर किया है। अबूजाबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की।
2: हुर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति।

भारतीय महकमा मौसमियात ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में कल गर्म और मरतूब मौसमी हालात की भी पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जजायर में कल इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। इसके अलावा केरलम, माहे, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरकी खित्ते के कुछ हिस्सों में भी अगले दो दिन के दौरान इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरकी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, लक्षद्वीप, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी की भी पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख को केरलम पहुंचने का इम्कान है। इसमें 4 दिन की कमी बेशी हो सकती है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान के समंदर और अंडमान निकोबार जजायर के बाद हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय वुशु टीम ने मुकाऊ में 11वें सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स के 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे जीत लिए हैं। खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिर कुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपनी रूसी हरीफ को हराकर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून भारतीय खिलाड़ी अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम जुमरे में मुतासिर कुन कारकर्दगी की बदौलत भारत के लिए 2 सोने का तमगा जीता है। इधर 48 किलोग्राम जुमरे में भारतीय फिजाइया के खिलाड़ी कुशल कुमार ने चीनी हरीफ को शिकस्त देकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तई भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसी रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी का आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Good evening, listeners. Welcome to our program.
1: ये आकाशवाणी पटना है, आइए सुनिए साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प।

रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को साहित्यिक साथी सुरभि का नमस्कार। श्रोताओं, आज शब्द शिल्प के इस साहित्यिक यात्रा में हम सबसे पहले सुनेंगे संपादकीय। इसके बाद हम जरा सोचिए, इस खंड में चर्चा करेंगे एक खास विषय पर। इसके बाद हम राजेंद्र प्रसाद जी की कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है बहुरिया, और फिर हम आनंद लेंगे सुमन कुमार मिश्रा जी के कविता पाठ का। तो आइए इस साहित्यिक यात्रा का शुभारंभ करते हैं संपादकीय से। श्रोताओं, अगर इस दुनिया में साहित्य ना होता तो हमारा जीवन कितना सूना और भावनाहीन होता। ना कविताएं होती, ना कहानियां, ना रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथ, और ना ही प्रेम, त्याग, साहस और मानवता की सीख देने वाली रचनाएं। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की भावनाओं का दर्पण है। जब हम दुखी होते हैं तो कोई कविता हमें सहारा देती है, जब हम भ्रमित होते हैं तो किसी लेखक के विचार हमें सही रास्ता दिखाते हैं। साहित्य हमें सोचने,

0: समझने और संवेदनशील बनने की शक्ति देता है। यदि साहित्य न होता तो इतिहास की अनेक घटनाएं हम तक पहुंच ही नहीं पाती। महापुरुषों के विचार, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और समाज सुधारकों के संदेश समय के साथ खो जाते। साहित्य ही वो माध्यम है जो पीढ़ियों को जोड़ कर रखता है। साहित्य के बिना भाषा भी अधूरी होती। हम अपने भावों को सुंदर तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। दुनिया केवल मशीनों की तरह चलती, जहां भावनाओं की जगह केवल स्वार्थ और कठोरता होती। साहित्य हमें इंसान बनना सिखाता है। ये हमें दूसरों के दर्द को महसूस करना और प्रेम, करुणा और संस्कारों का महत्व समझाता है। जिस समाज में साहित्य जीवित रहता है, वहां संस्कृति, संवेदना और मानवता भी जीवित रहती है। साहित्य वो प्रकाश है जो अज्ञान और कठोरता के अंधकार को दूर करता है। साहित्य के बिना दुनिया शब्दों से नहीं, केवल शोर से भरी होती। और ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कलम की ताकत तलवार से बड़ी इसलिए है क्योंकि वो दिल और सोच दोनों बदल सकती है। तो श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ अब बढ़ते हैं इस साहित्यिक यात्रा में आगे, अगले खंड जरा सोचिए की ओर। श्रोताओं, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है और हमारी पहचान भी, और वो है परिवार। परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला होता है, जहां हम बोलना, चलना और संस्कार सीखते हैं, जहां हमें सही गलत के बीच का अंतर समझाया जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर परिवार साथ हो तो हर परेशानी छोटी लगने लगती है। जिस तरह परिवार हमारे जीवन की दशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वैसे ही साहित्य हमारे विचारों को दिशा देता है। किताबें, कहानियां, कविताएं हमें न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि हमें संवेदनशील और समझदार भी बनाते हैं। साहित्य हमें दूसरों के दुख दर्द को समझने की क्षमता देता है और हमारे भीतर मानवता के भाव को जागृत करता है। परिवार और साहित्य का संबंध बहुत गहरा है। यदि परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, तो साहित्य हमें उस जीवन को बेहतर और अर्थपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। एक अच्छा परिवार बच्चों में पढ़ने की आदत डालता है, जिससे वे साहित्य से जुड़ते हैं और उनका मानसिक विकास होता है। आज के इस आधुनिक युग में जहां लोग मोबाइल और इंटरनेट में व्यस्त हो गए हैं, वहां परिवार के साथ समय बिताना और साहित्य पढ़ना और भी आवश्यक हो गया है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारे जीवन को संतुलित बनाता है। इसलिए हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो हमें परिवार के मूल्यों को अपनाना होगा और साहित्य से जुड़कर अपने विचारों को समृद्ध बनाना होगा, क्योंकि परिवार के संस्कार ही साहित्य की पहली पाठशाला होते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और राजेंद्र प्रसाद जी से सुनते हैं उनकी कहानी, जिसका शीर्षक है बहुरिया।
1: मेरी कहानी का शीर्षक है बहुरिया। कमाओ बेटा को कमाने के लिए कलकत्ता भेजते हुए बसंती ने कहा, बेटा वाल्मीकि, वहां जाकर ठीक से कमाना। बाबूजी की बीमारी में ढेर कर्ज हो गया है, सूद बढ़ते ही जा रहा है, खेत रेहन पर है, तेरी कमाई से ही बाबूजी के बचने की उम्मीद है। कलकत्ता जाते वक्त जब वाल्मीकि ने बाबूजी के पैर छुए तो उनकी आंखों में आंसू डबडबा आए। अंगोछा से आंसू पोंछते हुए बूढ़े विरजा ने बेटा को विदा किया था। बेटा के चले जाने पर बसंती को बेटे की याद परेशान करती। पहली बार कलेजा का टुकड़ा मां से बिलग हुआ है। विवस्ता के पहाड़ के नीचे दबी बसंती पति की बीमारी से विकल है। अनपढ़ होते हुए भी वह जीवन समर में संघर्षरत है। पहर भर रात जाने तक उसे नींद नहीं आती और पहर भर रात रहते वह जाग जाती है, क्योंकि महाजन के तगादे से वह परेशान रहती है। जवान होती बेटी रूपा की शादी की चिंता उसे और भी परेशान करती है। गांव के आवारा छोकरों की बुरी नजर से वह बेटी को कब तक बचाए रख सकती है।

वाल्मीकि को कलकत्ता गए, माह भर बीत गए, पर वे भी पत्र नहीं आया। काम मिला कि नहीं, बसंती को चिंता सताती। उधर वाल्मीकि को कलकत्ता में अच्छी मासिक पगार की नौकरी मिल गई। वह किराए का एक कमरा लेकर रहने लगा। उसी की कमाई पर पिता की बीमारी, बहन का ब्याह, महाजन का कर्ज, रहन रहे खेत सब प्रतीक्षा में है। कमा कर जब वह गांव लौटेगा तो घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। माता बसंती ने बड़ी आशा से बेटे को भेजा है कमाने के लिए। वाल्मीकि के कमरे के पास रोज एक लड़की पानी लेने के बहाने आती है। उसके नहीं चाहने पर भी वह उससे बातें करने लगती है। एक दिन उसने उससे पूछा, आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। माता पिता हैं? हाँ, गांव में रहते हैं। कितने भाई बहन हैं? एक भाई और एक बहन। प्रश्न पूछते हुए उसने निगाहों से वाल्मीकि पर प्रहार किया। वाल्मीकि ने सुन रखा था कलकत्ता के काले जादू की चर्चा। क्या यह भी जादूगरनी है? उसके मन में प्रश्न उठने लगे। एक दिन कुछ मांगने के बहाने वह उसके कमरे में आ पहुंची। अब कोई न कोई बहाना बनाकर वह वाल्मीकि के कमरे में हमेशा दाखिल हो जाती। उसकी सुंदरता और हाव भाव से वाल्मीकि प्रभावित होने लगा। उसने वाल्मीकि से कहा, खाना बनाने में परेशानी है तो मैं आकर बना दूंगी, पर तेरी माँ नहीं आने देगी। क्यों नहीं आने देगी? उसी ने तो भेजा है मुझे शादी के बारे में पूछने के लिए। क्या तुम उससे शादी करोगे? युवती ने पूछा। नहीं नहीं, मेरे गांव में तुम जैसी मेरी बहन कुमारी है। पिताजी बीमार हैं, माता परेशान रहती है, इसलिए कमाने यहाँ आया हूँ। मुझे भी अपनी कंपनी में काम लगा दोगे? उसने पूछा। चल सकती हो, कंपनी के बाबू से मिलो, शायद काम मिल जाए। आज रत्ना वाल्मीकि के साथ कंपनी गई तो उसे भी खासी मासिक पगार पर काम मिल गया। वह वाल्मीकि के साथ रोज काम पर जाने लगी। रत्ना और वाल्मीकि के बीच का प्रेम गन्ने के रस की तरह बढ़ता गया। वाल्मीकि रत्ना के प्रेम में घर की समस्याएं भूल सा गया। वह कई माह तक घर में कोई संदेश नहीं भेज पाया। पति की बीमारी, बेटी का ब्याह, महाजन के बढ़ते कर्ज से बसंती बेहाल थी। वह जंग लगे लोहे की तरह गल रही थी। वह पंछी होती तो उड़कर बेटे का हाल ले आती, पर वह तो पंख विहीन समस्याओं से लदी माँ थी। बहुत दिनों के बाद वाल्मीकि का एक पत्र आया। पत्र पढ़वाकर सुनने पर बसंती की चिंता और बढ़ गई। पत्र में लिखा था, माँ को मालूम कि हम कलकत्ता आकर पैसा कमा रहे हैं, पर एक जादूगरनी के फेरे में पड़ गए हैं। हम कुछ दिनों में पैसा कमाकर घर लौट आएंगे। बाबूजी को रूपा की शादी तय करने कहना। बाबूजी की बीमारी पर ध्यान देना। महाजन का कर्ज जुड़वा कर रखना। हम लौटेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। समस्या दूर क्या होगी कि बसंती की समस्या और बढ़ गई। उसने वाल्मीकि को शीघ्र लौट आने के लिए पत्र लिखवा भेजी। बेटा वाल्मीकि, तुमको मालूम कि बाबूजी की बीमारी और बढ़ गई है। रूपा के शादी की बात तय हो गई है, दहेज की मांग है। महाजन का तगादे पर तगादा आ रहा है। जितना जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। हम हर दिन तुम्हारी राह निहारते हैं। जहां तक जादूगरनी की बात है, उसके फेरे में मत आना। उसका जादू बड़ा छूतहर होता है। जो मर्द उसके फेरे में आता है, घर का सुध बुध सब भूल जाता है। तुम अपने घर की हालत से अवगत हो सके तो जितना जल्दी घर वापस लौट जाओ। माँ का पत्र पढ़कर वाल्मीकि बहुत रोया। उसने आंखों में आंसुओं के तूफान आ गए। उसका अंगोछा आंसुओं से भींगने लगा। वह सोचने लगा, वह कहां आकर फंस गया। उसने दूसरे ही दिन कंपनी के मालिक से अपने पगार का हिसाब किया। एक मोटी रकम लेकर वह डेरा लौटा। रत्ना को बिना कुछ बताए वह घर लौट जाना चाहता था, किंतु उसका दिल रत्ना में बस चुका था। उसने अपने घर की सारी बातें रत्ना को बता दी। रत्ना भी उसके साथ चलने के लिए अड़ गई। उसने भी कंपनी के मालिक से अपने पगार का हिसाब किया। विवश होकर वाल्मीकि ने रत्ना को साथ चलने की स्वीकृति दे दी, किंतु उसने सोचा, माता पिता और गांव वालों को वह रत्ना के बारे में क्या बताएगा। इस बिंदु पर उसने रत्ना से राय ली।

0: रत्ना ने कहा कि बता देना सबको कि मैं तेरी पत्नी हूँ, हम दोनों एक साथ कंपनी में काम करते हैं। रत्ना ने पूरे साल कमाए रुपए अपने साथ लिए, यह रकम वाल्मीकि के बहन की शादी और पिता के उपचार में काम आएगा। वाल्मीकि के गांव पहुंचते ही बसंती बहुत खुश हुई। वह वाल्मीकि के साथ एक जवान लड़की को देखकर पूछ बैठी, यह लड़की कौन है? यह वही जादूगरनी है माँ, जो तुम्हें भी बस में कर लेगी। माँ को बेटे की बात पर आश्चर्य हुआ। रत्ना ने वाल्मीकि के माता पिता को पैर छूकर प्रणाम किया और पिता की बीमारी व रूपा की शादी के बारे में जानकारी ली। कुछ देर के बाद रत्ना ने बसंती के आंचल में इतने रुपए दिए कि बसंती उतना पैसा कभी नहीं देख पाई थी और बोली, माताजी पहले बाबूजी का ठीक से उपचार करवाइए, महाजन का सूद सहित कर्ज वापस कीजिए, रेहन रहे खेत को छुड़ा लीजिए और शेष रकम रूपा की शादी के लिए जमा रखिए, घटेगा तो हम और पैसा लाएंगे। रत्ना के प्रेम और व्यवहार ने वाल्मीकि के माता पिता का दिल जीत लिया। सच में इस जादूगरनी के जादू ने गहरा असर दिखाया। रत्ना ने अपने व्यवहार, प्रेम और सेवा से सबको मोहित कर लिया। गांव के पड़ोसियों ने सवाल उठाया, वाल्मीकि के घर में यह जवान लड़की कौन है? रामावतार भगत ने कहा, कलकत्ते की लड़की है। अवध की पत्नी बोली, छोकरी फंसा कर लाया है। रत्ना की चर्चा सबके जुबान पर थी। गांव में पंचायत बैठी, पंचों ने वाल्मीकि को जात बिरादरी और समाज से विलग करने का सवाल उठाया। आरोप था लड़की भगाकर ले आना। डर था कि रत्ना के देखा देखी गांव की लड़कियां ना भाग जाए। वाल्मीकि ने बिना चिंता किए पंचों के सामने सवाल उठाया, उसके पिता टीबी के रोगी हैं, पंचों में से किसी ने कोई मदद नहीं की, उसके सारे खेत रहन हैं, बहन रूपा कुमारी है, आप में से कौन ऐसा है जो मदद कर सकता है? पंचों में सन्नाटा छा गया, कोई जवाब पंचों से नहीं बना। यदि आप लोग गूंगा हैं तो अब रत्ना की बात सुनिए। रत्ना ने पंचों को नमस्कार करते हुए अपनी बात रखी, पंचों मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, मैं वाल्मीकि की पत्नी हूँ, मैं अपनी माँ के आदेश से यहाँ आई हूँ। आप लोग गाँव के होने के नाते वाल्मीकि के बुरे दिनों में कोई मदद नहीं कर सके, इनकी गरीबी और मजबूरियों ने आपको प्रभावित नहीं किया, आज तक घर में जवान बहन कुमारी बैठी है, सारे खेत रिहन हैं, रहने के लिए मात्र एक झोपड़ी है, आप इन्हें जात समाज से काटने के लिए तैयार हैं। वाल्मीकि एक लड़की को पत्नी बनाकर ले आए तो जात से काट दो, और इसकी बहन कुमारेपन के कारण कहीं चली जाए तब भी जात से काट दो, पिता की मृत्यु पर गरीबी के कारण श्राद्ध न करें तब भी जात से काट दो, ये बंधन ये पाबंदी मानवीय संवेदना से विलक है। हमने गलत क्या किया है? यही ना कि इनके बीमार पिता का उपचार कराया, रेहन खेत छुड़वाया, महाजन के कर्ज से मुक्ति दिलवा दी, बहन की शादी के लिए रकम की व्यवस्था कर दी। यदि यह सब अपराध है तो हम अपराधी हैं और आप लोगों की सजा और फैसला का कोई प्रवाह नहीं है। मैं समाज की संवेदना को समझना चाहती हूँ, यह है या समाप्त हो गई है? रत्ना की बातों से पंचों के बीच सन्नाटा छा गया, कोई जवाब नहीं मिल पाया पंचों से। रत्ना की बातों ने पंचों की संवेदना को झकझोर कर रख दी। रत्ना की बातों से पंचों को इतना प्रभावित किया कि पंचों के साथ बसंती और बिरजा ने भी रत्ना को बहू के रूप में स्वीकृति दे दी। रत्ना एक विधवा माँ की परित्यक्ता बेटी थी, आज रत्ना वाल्मीकि की बहुरिया के नाम से चर्चित है, एक ऐसी बहुरिया जिसके आगमन से बसंती, बिरजा और वाल्मीकि का जीवन बदल गया।
1: इतनी अच्छी कहानी सुनने के बाद अब इस साहित्यिक यात्रा में आनंद लेते हैं सुमन कुमार मिश्रा जी के कविता पाठ का।
2: शीर्षक है, गम भी छोटा रखते हैं हम, हैं छोटे लोग हम, औकात न आका करते हैं, होती हमारी खुशियां छोटी, गम भी छोटा रखते हैं। कोई घर को रोशन करने में जी जान लगाया करता है, हम मिट्टी के छोटे दीपों से तंदूर भगाया करते हैं। किसकी छत कितनी फैली इसका हमें अंदाज नहीं, किसकी छत कितनी फैली इसका हमें अंदाज नहीं।

संतोष है बारिश से बचने को, हम भी छाता रखते हैं। चलने जिनको आए नहीं, वो मैराथन का हिस्सा बनते। चलने जिनको आए नहीं, वो मैराथन का हिस्सा बनते। सच है कि अभी सीख रहा, पर हम भी हिम्मत रखते हैं। नदिया गहरी हो या माझी, साथ निभाने से कतराए। नदिया गहरी हो या माझी, साथ निभाने से कतराए। मत कहना ये बात किसी से, हम भी हुनर रखते हैं। उनका ओहदा तारीफ उनकी, उनका ओहदा तारीफ उनकी, अपना कोई वजूद नहीं। फिर पूछो क्यों मुझसे अक्सर, बचे बचे ओ रहते हैं। मोल जोल की बात नहीं, सबका भाव अलग अलग है। मैं बिक जाऊं बेमोल भले ही, पर कुछ तो कीमत रखते हैं। मन का भाव मन में लेकर, एक पायदान ही चढ़ते हैं। छोटी छोटी खुशियां हम रोज इकट्ठे करते हैं, रोज इकट्ठे करते हैं। अगली कविता का शीर्षक है, हम सुख से वंचित होते गए। अभाव से दूरियां बढ़ती गई, हम सुख से वंचित होते गए। जितने साधन किए इकट्ठे, मन से बोझिल होते गए। अभाव से दूरियां बढ़ती गई, हम सुख से वंचित होते गए। जितने साधन किए इकट्ठे, मन से बोझिल होते गए। हम बिसरे बचपन की बातें, समय से अक्सर लड़ने में। कभी नापे विरित बतासे का, मन का द्वंद सुलझाने में। गुलगुल्ले तोड़ कर बांटे हम, दोस्ती दुरुस्त बनाने में। समय की उल्टी बयार बही, पराधीन हम होते गए। हम पर हावी होता गया, हम सुख से वंचित होते गए। वे क्षण कितने सुखदाई थे, वे क्षण कितने सुखदाई थे। न मान अपमान की चिंता थी, चाह थी छोटी खुशियों की। नुक्कड़ के खेल तमाशों की, हम हर्षित पुलकित होते थे। मिश्री के छोटे ढेलों से, हम हर्षित पुलकित होते थे। मिश्री के छोटे ढेलों से, चाह हमारी बढ़ती गई। हम स्वाद से वंचित होते गए, हम पर हावी होता गया, हम सुख से वंचित होते गए। जब उड़ने का साहस नहीं था हम में, जब उड़ने का साहस नहीं था हम में। सारा आकाश हमारा था, अब साहस साधन संसाधन है। तो अंबर की भी सीमा है, हम विकसित होने का भ्रम पाले। हम विकसित होने का भ्रम पाले, मन से मूर्छित होते गए। हम पर हावी होता गया, हम सुख से वंचित होते गए। अगली कविता का शीर्षक है, साझा करना बहुत कठिन है। मिले नहीं जो मन आपस में, नजर मिलाना बहुत कठिन है। मिले नहीं जो मन आपस में, नजर मिलाना बहुत कठिन है। मन की बातें मन में रहती, साझा करना बहुत कठिन है। पाले मन में द्वेष बहुत दूर, पाले मन में द्वेष बहुत दूर। सफर नहीं संभव है, गाल फुलाना और मुस्काना संग संग दोनों बहुत कठिन है। मिले नहीं जो मन आपस में, नजर मिलाना बहुत कठिन है। कर न सके जो सबल स्वयं को, दुख पीड़ा से प्रेरित होकर। कर न सके जो सबल स्वयं को, दुख पीड़ा से प्रेरित होकर। सुख की बातें बेईमानी है, खाए बिना निरंतर ठोकर। परजीवी बन जीवन जीना, परजीवी बन जीवन जीना। भाग्य भरोसे बहुत कठिन है, मिले नहीं जो मन आपस में, नजर मिलाना बहुत कठिन है। जीवन का सूरज असमय अस्त हो, जीवन का सूरज असमय अस्त हो। मार्ग अगर न दीप प्रशस्त हो, तम का तंबू तना देखकर। घोर चिंतन में जीव समस्त हो, जुगनू केवल अंधेरों में। कदम बढ़ाना बहुत कठिन है, मिले नहीं जो मन आपस में, नजर मिलाना बहुत कठिन है। अगली कविता का शीर्षक है, उड़ने की बातें बाद में करना। उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। खुली आंख मत देखो सपने, कर्म प्रधान बन पाओ तो। इनकी उनकी बात बहुत, बेमानी मुलाकात बहुत। जाने कितने दोष दिए तुम भी तो कुछ दोषी होगे। जाने कितने दोष दिए तुम भी तो कुछ दोषी

भोगे अगर भरे न खाई परस्पर, आपस का प्रेम बढ़ाओ तो, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। सहज नहीं जीवन सुख मिलता, सहज नहीं जीवन सुख मिलता, कौन भला अब किसकी सुनता। दबेगी जितनी पीड़ हृदय में, उतने ही फिर पुष्प खिलेंगे। दबेगी जितनी पीड़ हृदय में, उतने ही फिर पुष्प खिलेंगे। भटक भटक कर राह न ढूंढो, भटक भटक कर राह न ढूंढो, अपनी राह बनाओ तो। उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। अज्ञान है इतना बढ़ा तुम्हारा, अज्ञान है इतना बढ़ा तुम्हारा, तुलना कर लेते ईश्वर से। सोच संकुचित रखने वालों, क्यों करते भगवान की बातें। बनना हो इंसान मुकम्मल, पहले ठोकर खाओ तो। उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। जब भी होंगे कर्म उपेक्षित, जब भी होंगे कर्म उपेक्षित, ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। कोसोगे किस्मत को अपनी, जीवन भर पछताओगे। मंजिल की बातें बाद में करना, पथ पर चल दिखलाओ तो। उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। अगली कविता का शीर्षक है सर्कस। हारे हुए हर मानव के जीवन में एक आस है सर्कस। हारे हुए हर मानव के जीवन में एक आस है सर्कस। अंधेरों के बीच में जैसे सूरज का प्रकाश है सर्कस। पैसा ले कर्तव दिखलाता, पर महज नहीं रोजगार है सर्कस। पैसा लेकर तब दिखलाता, पर महज नहीं रोजगार है सर्कस। संगठन को परिभाषित कर, परिवारों का परिवार है सर्कस। सबकी अपनी मर्यादा, अनुशासन की मिसाल है सर्कस। एक ही तंबू के नीचे एक अद्भुत संसार है सर्कस। हाथी घोड़ा बंदर भालू, शेर संग गुलजार है सर्कस। हाथी घोड़ा बंदर भालू, शेर संग गुलजार है सर्कस। मौत के आगे खड़ा हमेशा, खुद पर दृढ़ विश्वास है सर्कस। सबकी जाति धर्म अलग, पर संबंधों की मिठास है सर्कस। सुख दुख में सब साथ निरंतर, भावों का एहसास है सर्कस। बच्चे बूढ़े सकल जनों के चेहरे की मुस्कान है सर्कस। कहीं नहीं जो ठहर पाए, बस उसका एक मुकाम है सर्कस। बंजारोसा जीवन में सत का सदा सत्कार है सर्कस। बंजारोसा जीवन में सत का सदा सत्कार है सर्कस। बांटे पर कभी घटे नहीं, बांटे पर कभी घटे नहीं, खुशियों का विस्तार है सर्कस। झूठ नहीं दर्शक के आगे, झूठ नहीं दर्शक के आगे, वास्तविकता का अभ्यास है सर्कस। प्रदर्शन में संतुष्टि का एक अद्भुत प्रयास है सर्कस। प्रदर्शन में संतुष्टि का एक अद्भुत प्रयास है सर्कस। अगली कविता का शीर्षक है अमन चैन का बादल बनकर। बरसों मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। सूरज रोज सुबह में आए, अपने संग में लाली लेकर। धरती पर हरियाली लेकर, गाँव में खुशहाली लेकर। तुम भी आओ हिम शिखर से, निर्मल शीतल वारी लेकर। बरसों मेरे गाँव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। उगते बीजों का राज तुम ही हो, उगते बीजों का राज तुम ही हो, पल पल जीवन का राज तुम ही हो। खिलते फूलों का आस है तुझ पर, कृषकों का विश्वास है तुझ पर। आओ मेरे गाँव में आओ, सागर की लहरों से उठकर। बरसों मेरे गाँव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। जीवन का भूपर स्रोत तुम ही हो, भूतल पर है तेरी प्रतीक्षा। जीवन का भूपर स्रोत तुम ही हो, भूतल पर है तेरी प्रतीक्षा। तुझ पर आश्रित भूमंडल यह, आओ न आओ तेरी इच्छा। पर व्याकुल मन है आस में तेरे, आओ सुखदाई अमृत लेकर। बरसो मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। पपिया बैठा ताक में तेरे, खोले मुख सिप नदी किनारे। पपिया बैठा ताक में तेरे, खोले मुख सिप नदी किनारे। मेढक टटर मल्हार सुनाए, नाचे मोर हो भाव विभोर। उमरत गर्जत आओ घन आओ, उमरत गर्जत आओ घन आओ। पीर हरो पीर पातक बनकर,
बरसो मेरे।

0: आत्माओं में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर, अमन चैन का बादल बनकर।
1: अभी आप सुमन कुमार मिश्रा जी से सुन रहे थे कविता पाठ, और शब्द शिल्प की ये साहित्यिक यात्रा अब यहीं समाप्त होती है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें इस ईमेल आईडी पर feedback@aarpatna.com। आज के अंक की प्रस्तुति आकाशवाणी पटना की थी, और इसी के साथ साहित्यिक साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: शब्द शिल्प हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को है और वक्त है फिल्म संगीत सुनने का। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, आज शुक्रवार है और इस वक्त आप सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन किसी न किसी थीम पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम होता है। आज भी हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं, आपको गीत सुनवाते हैं और आप अंदाजा लगाइए आज क्या थीम है आपके लिए हमारे पास।

श्रोताओं, आपने अंदाजा लगाया क्या आज हमारा थीम क्या है? बिल्कुल आपने सही सोचा है, आज का थीम है बिंदिया। यूं तो बिंदिया या बिंदी सुनने में बड़ी साधारण सी लगती है, कौन गौर करता है बिंदिया पर, लेकिन ये इतना साधारण नहीं है, इसकी अपनी जुबान है। यकीन नहीं हो रहा आपको? सुन लीजिए।

0: सोलह श्रृंगार, ये शब्द आपने अवश्य सुना होगा। महिलाओं के पूर्ण श्रृंगार को सोलह श्रृंगार कहते हैं। अगर बिंदिया ना हो तो यह श्रृंगार अधूरा माना जाता है, और अगर बिंदिया हो तो फिर क्या होता है?
1: सब तिथियन का

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं ये साधारण सी दिखने वाली बिंदिया क्या क्या कर सकती है? नहीं तो सुनिए फिर।

बिंदिया का भी अपना एक रुतबा है। यूं तो रंग बिरंगी बिंदी लगाने का चलन है, लेकिन लाल और चमकदार बिंदी को शुभ माना जाता है। सुहागिनों के लिए ये बिंदी मान है, अभिमान है। इसकी चमक बनी रहे चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का यह कार्यक्रम। फिल्म संगीत का यह विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से मेरे यानी जया के साथ। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो गए हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है फिल्म संगीत सुनने का। कार्यक्रम के साथ हम उपस्थित हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत, आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। आइए आज इस कार्यक्रम में आपको हम लेकर चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में। जी हाँ, आज उसी दौर का कुछ गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आएंगे।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म बैजू बावरा से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज, नौशाद का संगीत, शकील बदायनी के बोल, और ये गीत फिल्माया गया था भरत भूषण और मीना कुमारी पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरैया की आवाज में, फिल्म शमा से।

0: अब सुनिए पतंगा फिल्म का ये गीत शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में। ये गीत हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का है और बहुत पुरानी गीत है श्रोताओं, लेकिन इसका वजूद आज भी कायम है। ये गीत आज भी उतना ही सुना जाता है जितना उस जमाने में सुना जाता था।
1: हेलो, हिंदुस्तान का मेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मल्हार का ये गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, रोशन का संगीत और बोल हैं इंदिवर के।

आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे यानी जया के साथ।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहां। प्रेम धवन के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गूंज उठी शहनाई। लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज, वसंत देसाई का संगीत, बोल भरत व्यास के।

0: मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म शहनाई में। इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री

0: सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा करेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks